आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065।
11: श्रोता लोग, ई प्रातः कालीन बेला में आ गई बारी राव रेडियो दोस्त दीपाली आ करे तारी रवा सभी के प्रणाम, सुप्रभात। रुआ पता चल ही गई होई कि ये कार्यक्रम हो आपन दे आपन देखभाल, जिमे हमने के अपना दे के देखभाल खातिर जाने निसन कुछ असरकारी और अचूक नुस्खा। तो चली आज के नुस्खा जाने खातिर शुरू कर जाओ अपना प्रोग्राम के। आज हम बताएं सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर के घरेलू उपचार। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में चक्कर आवे लागेला, सिर घूमे लागेला, रोगी के कोनो काम में मन ना लागेला। ओइमे शारीरिक काम करे के क्षमता ना रहेला और ई रोगी अनिद्रा के शिकार रहेला। ई रोग के घरेलू उपचार भी संभव है, जरूरत है संयम पूर्वक नियम पालन कइल। मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ ली, एक 15 दिन तक लेवे से लाभ मालूम हुई। ये डायबिटीज में भी लाभकारी है। गेहूं व चना के आटा के बराबर मात्रा में लेके बनावल गई रोटी खूब चबा चबा के खाई, आटा से चोकर ना निकाली। तरबूज के बीज के गिरी और खसखस अलग अलग पीस के बराबर मात्रा में मिला के रख ली आ एक चम्मच मात्रा में प्रतिदिन खाली पेट पानी के साथ ली। छाछ दिन में भोजन के बाद जरूर ली। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज खातिर पपीता भी बहुत लाभ करेला। एके प्रतिदिन खाली पेट चबा चबा के खाई। 21 तुलसी के पत्ता और सिलबट्टा के पीस के एक ग्लास दही में मिला के सेवन करे से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होला। तुलसी के पत्ता और दो नीम के पत्ती के पीस के 20 ग्राम पानी में घोल के खाली पेट सुबह पी। इस सेवन से 15 दिन में लाभ नजर आवे लगी। तुलसी के रस 1 या 2 चम्मच पानी में मिला के खाली पेट सेवन करी। एक घंटा बाद तक कुछ भी ना खाई। पानी से नहाए के वजह गुनगुना पानी से नहाई। साथ ही अधिक नमक व अधिक चीनी के इस्तेमाल हानिकारक है। तो दोस्त लोग ई रहल है हाई ब्लड प्रेशर के घरेलू उपचार। चलिए आप जानल जाओ जुकाम खांसी और फ्लू से बचे खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। काफी उपचारी गुण समाइल होला जौन जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर है। तुलसी के पत्ती चबावे से कोल्ड और फ्लू दूर रहेला। यही तरह तुलसी और बांसा के पत्ती प्रत्येक 5-5 ग्राम पीस के पानी में मिलाई और काढ़ा तैयार कर ली। इसे खांसी दमा में भी काफी फायदा मिलेला। अलसी के बीज भी खांसी के इलाज में काफी कारगर होला, काहे कि ई बलगम बाहर निकाले में मदद करेला। एक एक काढ़ा बना के पी ली या फिर बीज के पीस के चाट ली। इसे जल्द राहत खातिर 10 ग्राम अलसी के पीसल बीज के मुलेठी के चूर्ण में मिलाई। और 200 मिलीलीटर पानी में एक पानी आधा रह जाए तक उबाली। इसमें 20 ग्राम शुद्ध शहद मिलाई और गरम गरम पी। इसे शरीर के बलगम बाहर निकलेला और खांसी में राहत मिलेला। तो दोस्त लोग अब हम बतावे जात बानी बेल के उपयोगी घरेलू नुस्खा। औषधीय विशेषता के कारण खाई जाला। इमें पेक्टिन टैनिन और म्यूसिलेजिनस पदार्थ होला जौन की डायरिया में लाभदायक होला। अधपका फल ना खाई। एके उपयोग ई प्रकार करी कि बेल पेट से संबंधित सब विकार और पीलिया डायबिटीज दांत व आँख से संबंधित बीमारी में फायदा पहुँचावेला। लोग अब जानल जाओ साइट्रस फल के फायदा। ई वर्ग में नींबू मौसमी नारंगी आदि आवेला। ई सबसे प्रमुख रूप से विटामिन सी और कुछ मात्रा में कैरोटीन होला। ई सब में प्रमुख रूप से विटामिन सी और कुछ मात्रा में कैरोटीन होला। विशेषकर बुखार और कमजोर लीवर के रोगी खातिर एक रस बहुत लाभदायक है। सर्दी खांसी जुकाम में नींबू के सीधा प्रयोग ना करे के चाहिए। अधिक मूत्र उत्सर्जन और दस्त की स्थिति में मौसमी ना खाए के चाहिए। अधिक चूसे से दांत खराब होला। सुबह उठते ही और सूते समय संतरा की उपयोग ना करी। पित्त फोड़ा फुंसी दमा श्वास दस्त हैजा पेचिश मिर्गी कब्ज पीलिया मोटापा जैसन रोग में ई लाभदायक है। तो चलिए दोस्त लोग आप अब जानल जाओ सुहागा के असरकारी औषधि के गुण के बारे में। मुंह में छाला होके पर सुहागा के पानी से कुल्ला करे के चाही, इसे तुरंत असर हुई। मुंह और गला के सूजन में एके पानी में औटा के गरारा करे के चाही, तत्काल इसे फायदा हुई। मसूड़ा के घाव में काली मिर्च के साथ पीस के लगावे से घाव शीघ्र भर जाला। भूख ना लगे पर एक से दो माशा फूला सुहागा एक कप गुनगुना जल में दिन में दो या तीन बार लीहल फायदेमंद होला। त्वचा के खुजली पर सुहागा के पानी लगावे के चाही, नींबू के रस में मिला के सुहागा लगावे से एक्जिमा समाप्त होला। लगभग 3 तोला फूला सुहागा 4 तोला शहद में मिला के प्रतिदिन लेवे से दमा रोग मिटेला। तो दोस्तों अब हम बताएं मीठा शक्कर के गुणकारी नुस्खा। बादाम के खराब होके से बचावे खातिर कंटेनर में रखे से पहले उनमें 3-4 चम्मच शक्कर डाल दी, इसे सालों साल बादाम खराब ना हुई। चाहतनी की फूलदान और गमला के पानी जल्दी ना बदले के पड़े तो लगभग 10 से 12 लीटर पानी में 1 औंस हाइड्रोजन सल्फेट मिला के थोड़ा सा चीनी डाल दी। ई घोल से फूल 15-20 दिन तक ताजा बनल रह सकेला। सर्दी में फाटल हाथ पैर के इलाज खातिर चीनी के शरबत से ओके धोए के चाही। कई बीमारी के वाहक है, उसे बचे खातिर 10 ग्राम बोरिक एसिड पाउडर 1 बड़ा चम्मच चीनी 1 बड़ा चम्मच दही और 1 बड़ा चम्मच गेहूं के आटा के मिला के गोली बनाई। अब ये गोली के अलमारी या फ्रिज में रखी, इसे कॉकरोच ना आई। दोस्तों अब उस समय आ गई बा जेमे दीपाली लिए रउआ से जाए के विदा। ता एगो प्यारा सा मुस्कान के साथ आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। आ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
13: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
14: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
15: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
16: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
14: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
14: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
16: कॉल करें 87-894-18744।
17: ठक ठक।
18: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा मिला ही नहीं।
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
20: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
20: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
21: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा।
22: ओ गॉड, इस देश का कुछ नहीं हो सकता।
23: क्या ऐसे बोलता रहते रहे तू?
22: इस देश में लोगों को सच में तमीज ही नहीं है, जहाँ चलते हैं वहीं रास्ते में थूक देते हैं, गंदगी मचाते हैं।
23: हाँ यार सही कह रहा है, मैं तो डिस्गस्ट हो जाती हूँ यार ऐसे लोगों को देखकर।
22: वो देख वो चिप्स खा रहा है, अभी देखना ये चिप्स का रैपर खा के यही पार्क में फेंकेगा।
23: देख देख फेंका देख।
22: वो उस आदमी को देख जो जॉग करते करते च्युइंगम चबा रहा है।
23: वो भी च्युइंगम यही फेंकेगा। यू
0: एक्सक्यूज मी, आई होप यू डोंट माइंड, बट कैन आई आस्क आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं?
22: हम यहाँ बैठकर लोगों को देख रहे हैं कि कैसे हमारा देश, हमारी दुनिया बर्बाद हो रही है। कैसे लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे कि वही है जो इस दुनिया को खराब कर रहे हैं। लेकिन आप कौन?
0: मैं नील। मैं बहुत देर से आप लोगों को देख रहा था, सोच रहा था कि आप लोग कर क्या रहे हैं। कैन आई जॉइन यू?
23: या श्योर।
0: अच्छा एक बात पूछूं आप लोगों से?
22: हाँ हाँ।
0: यहाँ दूर बैठ के बस देखने से क्या होगा?
22: होगा तो कुछ भी नहीं, पर सच कहता हूँ, लोगों को देखता हूँ ना ये सब करते हुए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है।
0: गुस्सा करने से क्या होगा? अगर गुस्सा आ रहा है तो आप इसे बदलने के लिए कुछ करते क्यों नहीं?
23: हम करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम कचरा डस्टबिन में ही डालते हैं।
22: हाँ भाई, हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन सबको थोड़ी रोक सकते हैं।
0: अरे साथ मिलकर तो कुछ भी हो सकता है।
23: कहना आसान होता है नहीं, इंडियन इंडिपेंडेंस के अलावा कोई एग्जाम्पल दो जहाँ साथ मिलकर कुछ किया हो।
0: ठीक है, मेरे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तुम सबने तारकासुर के बारे में सुना है?
1: नहीं तो।
0: तारकासुर एक राक्षस था, उसे शिव और पार्वती के बेटे कार्तिकेय ने मारा था। उस राक्षस तारकासुर के तीन बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर के वध के बाद तारकासुर के तीनों पुत्र देवताओं से बदला लेने के लिए हजारों वर्षों तक ब्रह्मदेव की साधना में डूब गए, घोर तपस्या करने लगे। फिर एक दिन उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए।
3: ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः।
17: पुत्रों आंखें खोलो, तुम्हारी वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। खोलो पुत्रों, अपनी आंखें खोलो।
24: ब्रह्मदेव, प्रभु,
17: तुम्हारी तपस्या घोर थी पुत्रों, मैं यहां तुम्हें वरदान देने आया हूं। कहो क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए?
24: ब्रह्मदेव, हमारे पिता का वध कर दिया गया है ब्रह्मदेव, और हम कुछ नहीं कर पाए।
25: यदि आप सच में हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें अमर होने का वरदान दीजिए।
26: हमें वरदान दीजिए कि हम तीनों भाई अमर हो जाएं।
17: असंभव।
24: असंभव? आप हमें हमारा मांगा हुआ वरदान नहीं देंगे ब्रह्मदेव?
17: पुत्रों मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा अनुसार वरदान देने ही आया था, किंतु अमरत्व का वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अमरत्व के सिवा तुम तीनों जो चाहे मांग सकते हो, मैं अवश्य प्रदान करूंगा।
26: ठीक है ब्रह्मदेव, यदि ऐसा है तो आप हम तीनों भाइयों के लिए तीन ऐसे नगर बनाइए कि हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी में आकाश मार्ग से घूमते रहे।
24: 1000 वर्षों पश्चात हम अपने नगरों के साथ एक जगह मिले।
25: उस समय यदि कोई देव हमें एक ही बाण से नष्ट कर सके तो ही हमारी मृत्यु हो सके।
17: ठीक है पुत्रों, तथास्तु। इन त्रिपुरों में से एक नगरी सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की होगी। आयुष्मान भव।
24: ये क्या?
25: अब हमें कोई पराजित नहीं कर सकता।
26: अब हम इन देवताओं का ऐसा हाल करेंगे,
24: तीनों लोगों पर अधिकार करेंगे। आक्रमण।

0: हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हमारी सहायता करें।
1: महादेव, ये राक्षस हमें बहुत पीड़ा दे रहे हैं। इन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। बस अब आप ही हमें बचा सकते हैं महादेव।
0: महादेव, ये राक्षस त्रिपुर में विराजमान है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी शक्तियों से भी इनका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें वरदान प्राप्त है।
1: हमें बचा लीजिए महादेव, हमें बचा लीजिए।

0: आप लोग चिंता ना करें, साथ मिलकर हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं?
1: हम सब आपके साथ हैं महादेव, आप बस आदेश दीजिए।
0: देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, एक रथ का निर्माण कीजिए। सूर्यदेव और चंद्रदेव, आप इस रथ के पहिए बनेंगे, और इंद्र, वरुण, यम और कुबेर, आप इस रथ के घोड़े बनेंगे। हिमालय, आप धनुष बने, और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा।
2: महादेव, मैं विष्णु स्वयं आपका बाण बनूंगा,
3: और मैं अग्नि बाण की नोक बनूंगा।
4: इसके बाद जब महादेव उस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरों के नाश के लिए निकले, तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। देव और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में ही 1000 साल पूरे हो गए, और जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए,
0: त्रिपुरो, तुम्हारे पापों का युग समाप्त हुआ, तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने है। सभी देवों के साथ 1000 वर्ष पूरे होने पर तुम त्रिपुरों के अंत का समय आ गया है। मुझे ज्ञात है तुम तीनों ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान चाहते थे, जिससे कि तुम सभी देवताओं से अपने पिता के वध का प्रतिशोध ले सको। ये जानते हुए भी कि तुम तारकासुर पुत्र हो, ब्रह्मदेव ने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान दिया, किंतु तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं और प्रतिशोध की भावनाओं के कारण तुम्हारा अंत निश्चित है। त्रिपुरों, ये लो तुम्हारा अंत।
5: बोलो जटाधारी त्रिपुरारी की, बोलो शिवशंकर महादेव की।
6: प्रभु, हमें इस विपदा से सिर्फ आप ही बचा सकते थे, आपकी शरण में आकर हम सभी देव धन्य हो गए प्रभु।
0: त्रिपुरों का अंत निश्चित था देव, आज इस अवसर पर मैं आप सभी को एक बात का स्मरण कराना चाहता हूँ। इस संसार में हर हाल में अंत में बुरे के विरुद्ध अच्छाई की विजय होती है, किंतु उस जीत की शुरुआत प्रयत्न से आरंभ होती है। कहने को तो मैं महादेव हूँ, किंतु मैं भी एकाकी ये युद्ध ना जीत पाता, किंतु आप सभी का साथ पाकर मेरी विजय निश्चित हो गई। इस संसार में अत्याचारी अभिमानी भी जन्म लेंगे, किंतु स्मरण रहे, सब एकजुट होकर अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो विजय निश्चित है।
7: वाह, क्या स्टोरी है।
8: साथ मिलकर अगर कुछ करने की ठान लें, तो कुछ भी हो सकता है। ये बात एक बार नहीं, बहुत बार प्रूव हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक बार फिर से प्रूव करूंगा।
7: वो कैसे?
8: एक काम करते हैं, कुछ ट्राई करके देखते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं।
9: मतलब
8: देश भर में अभियान चल रहे हैं, सफाई करो, पर लोग तो वो समझ नहीं पा रहे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं ना, देखते हैं जो भी इंसान यहाँ गंदगी मचाते हुए दिखेगा, हम सब मिलकर एक साथ उसे रोकेंगे नहीं, उसके लिए चीयर करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे उसकी, ठीक है?
7: अरे बंदा एम्बैरेस हो जाएगा यार।
8: वही तो करना है, साथ मिलकर एम्बैरेस करके देखते हैं। तो रेडी?
9: हाँ, वो देखो वो बंदी चॉकलेट खाकर अपना रैपर वहीं फेंकेगी। 3, 2, 1।
8: वो देखो, उसने रैपर उठा लिया, अब देखते हैं।
7: लेकिन क्या वो रैपर डस्टबिन में डालेगी?
8: चीयर्स कंटिन्यू रखो गाइस।
10: वेरी गुड, वेरी गुड।
8: लेट्स सी, 3, 2, 1।
9: है? उसने अपना रैपर डस्टबिन में डाल दिया।
8: गुड जॉब गाइस, देखा यूनिटी में बहुत पावर होती है। सब लोग एक साथ मिलकर किसी चीज के खिलाफ या किसी के साथ खड़े हो जाएं, तो कुछ भी बदल सकते हैं।
9: हाँ नील, थैंक यू यार, अब तक तो हम सिर्फ दूर बैठकर देखते थे और गुस्सा करते थे मन में,
7: बट कुछ करने का, कुछ बदलने के बाद जो दिल को सुकून मिलता है नील, मैं बता नहीं पा रही कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे।
8: बहुत अच्छी बात है, अब साथ मिलकर दुनिया को बदलिए, मैं चलता हूँ।
7: अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुको ना हमारे साथ, कितना मजा आ रहा है।
8: मुझे अमरनाथ जाना है, अंधेरा हो जाएगा तो रुकना पड़ेगा।
9: तुम अमरनाथ क्यों जा रहे हो?
8: भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूँ।
7: हम भी बनाते ना वहाँ का प्लान। तुम कब तक हो वहाँ अनिल?
8: मैं तो वही हूँ, तुम सब जरूर आना। हर हर महादेव।
11: क्रिकेट देखते हो? अरे मैं भी क्या पूछ रहा है, इंडिया है भाई, इंडिया में तो सभी देखता है। तू सिर्फ मेरे को एक बात बता, टीम में अगर सिर्फ विराट अच्छी बैटिंग करे तो क्या हम मैच जीत पाएंगे? नहीं ना, अपने को बुमराह की बॉलिंग चाहिए, धोनी की विकेट कीपिंग चाहिए, जडेजा की फील्डिंग भी चाहिए, तब जाकर अपन गेम बजाता है, मैच जीतता है। इसे कहते हैं टीम एफर्ट, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का। बॉस लाइफ में, सोसाइटी में अपने को कभी भी चेंज मांगता है तो मिलकर करना पड़ता है। बिड़ू बिड़ू, अगर भीड़ में एक जन ने आवाज दिया तो कोई नहीं सुनेगा, अगर भीड़ ने साथ मिलकर आवाज दिया तो बाबा आवाज कहां तक जाएगा तुझे मालूम है? बिड़ू, एकता में शक्ति है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। शिव एकता भाव सिखाते हैं, शिव एकता सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
15: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
17: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
16: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
17: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
16: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
18: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
19: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
18: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
19: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
18: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
19: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999। खुदा

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में जुलूस के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या, जनता दरबार में जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की फरियाद, हेलमेट मैन ने बहनों को दिया हेलमेट का तोहफा, धूमधाम से थाना में सती पूजा का हो रहा है आयोजन और पूरे जिले में उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार हुआ समाप्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गुरुवार की देर रात महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान गोपालगंज शहर के पुरानी चौक में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक मेन रोड में हुई इस हत्याकांड में मृतक की पहचान श्याम सिनेमा रोड वार्ड संख्या 17 निवासी शिवजी प्रसाद के 20 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक के सिर में गोली लगी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना के कारणों और गोली चलाने वालों की पहचान के लिए शहर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आसपास के मार्गों और घटना स्थल के पास लगे कैमरों से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। जैसे ही हत्या हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेजा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल सदर हॉस्पिटल में तैनात किए गए। पूरे शहर में भी पुलिस बल को अलर्ट किया गया। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह और सदर SDPO 2 राजेश कुमार तथा नगर इंस्पेक्टर PK प्रभाकर समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और जवान घटना स्थल से लेकर सदर हॉस्पिटल तक इलाके में फैल गए। निरीक्षण शुरू की गई। FSL की टीम को भी घटना स्थल पर बुलाकर आवश्यक जांच पड़ताल करवाया गया। मृतक के परिजनों में घटना के बाद से ही कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। इसको लेकर पुलिस जल्द ही अपराधियों के गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। इस संदर्भ में आज सदर SDPO 2 राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया।
4: हाँ, आज गोपालगंज शहर में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसका अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी हम इस पे खुलासा करेंगे। स्थिति सामान्य।
3: सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता के दरबार में नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और पदाधिकारियों को इसे निष्पादित करने के लिए निर्देशित किए। बताया जा रहा है कि जनता दरबार में झीगन माझी, मराछी देवी, नग नारायण प्रसाद यादव एवं जहांगीर आलम सहित कुल 6 फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुँचे थे, जिसमें मुख्य रूप से भूमि विवाद से संबंधित मामले थे। जिलाधिकारी ने मामले को सुनने के बाद त्वरित पदाधिकारियों को निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास आने वाले प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक सुना जाएगा और उनके मामलों को निष्पादित करने के लिए काम किया जाएगा। रक्षाबंधन के त्योहार पर गोपालगंज के हेलमेट मैन के नाम से फेमस शाहिद ने एक अनोखे अंदाज में बहनों का स्वागत किया। वे सड़क पर खड़े हो गए। इस दौरान स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाने वाली बहनों को उन्होंने रोककर उन्हें हेलमेट गिफ्ट किया और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। शाहिद ने कहा कि हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। उनके इस अनोखी पहल से बहनों ने उन्हें काफी शुभकामना दी। बहनों ने कहा कि रियल में हेलमेट मैन शाहिद ने जिस तरीके से आज रक्षाबंधन के दिन बहनों को सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट का गिफ्ट दिया है, यह एक काफी अच्छा प्रयोग है और इससे लोगों में बेहतर संदेश जाएगा। साथ ही बहनों की सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा जो संदेश दिया गया, इससे दूसरी बहनें और बहुत सारे युवा भी शिक्षा लेकर हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की पूर्णिमा पर कुचायकोट थाने में सती पूजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे धूमधाम और भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं, जिसमें भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति होती है। इस वर्ष भी बहुत सारे लोग इस पूजनोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिसकर्मी पीली धोती में यजमान बनकर पूरे विधि विधान से प्रत्येक वर्ष सती माँ का पूजा आराधना करते हैं, इस वर्ष भी किया गया। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में इलाके के तमाम गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सभी लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ सती पूजनोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए इसे सफल बनाया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहीं किसी को कोई परेशानी न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि 100 वर्षों से भी अधिक वक्त से यहां सती माँ की पूजा आराधना होती रही है और थाने में चूंकि सती माँ का स्थान है, ऐसे में अब कई दशकों से थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में ही सती पूजनोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता है। हालांकि इसमें इलाके के सारे लोग और गणमान्य लोग भी शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं और इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ संपन्न कराने में अपना योगदान देते हैं। आज पूरे जिले में पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही सड़कों पर बहनों का आवागमन दिखाई दिया। बहनें पूरी विधि विधान से अपने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने के लिए निकल पड़ी थी। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक चहल पहल दिखी, बाजारों में रौनक दिखा, मिठाई और राखी की दुकानों पर भीड़ भाड़ रही। पुलिस ने भी जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए थे। लगातार पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसके वजह से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में रक्षाबंधन का त्योहार संपन्न हुआ है। पूरी आस्था के साथ बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लंबी उम्र की कामना की है। जिले के गंडक नदी में एक अज्ञात शव तैरता हुआ दिखा, हालांकि इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई। इस दौरान MIM के नेता अनस सलाम भी गंडक नदी में पहुंचे हुए थे। उन्होंने तैरते हुए शव की तस्वीर खींचकर जिला प्रशासन को भेजी। जिला प्रशासन अब इस मामले में आवश्यक अनुसंधान करने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो शव पानी में दिख रहा था वह किसी महिला का शव प्रतीत हो रहा था। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु अनस सलाम ने जिला प्रशासन को यह तस्वीर और वीडियो भेजकर इसमें जांच करने के लिए जानकारी दी है। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, जो शांति समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने रक्षाबंधन और महावीरी झंडा के अवसर पर गोपालगंज में आयोजित मेला और जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए गोपालगंज वासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि सभी सम्मानित सदस्यगण भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अपना योगदान दें। गोपालगंज में आयोजित महावीरी अखाड़ा जुलूस में सदर विधायक सुभाष सिंह का भी अलग अंदाज दिखा। वे महावीरी अखाड़ा के दौरान अखाड़े में पहुंचे और लाठी भाजते हुए नजर आए। सदर विधायक के इस अंदाज को देखकर लोगों ने काफी प्रशंसा की। बहुत सारे उनके समर्थकों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाया। गोपालगंज शहर में महावीरी झंडा और जुलूस को लेकर विद्युत सप्लाई बाधित किया गया था। जुलूस के दौरान भी रात में विद्युत की सप्लाई बंद की गई थी और झंडा के दौरान भी शाम से लेकर लगभग रात 11:30 बजे तक या जुलूस की समाप्ति तक सभी शहरी फीडरों की विद्युत आपूर्ति को बंद किया गया। टाउन 1 से टाउन 5 तक सभी विद्युत खंड इसको लेकर प्रभावित रहा। जुलूस वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी संबंधित फीडर को बंद किया गया था, जिसके वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। विद्युत विभाग का कहना है कि झंडा और जुलूस के दौरान बहुत सारे लोग सड़कों पर वाहन गाड़ियां झंडा इत्यादि लेकर चलते हैं और ऐसे में सड़कों पर बिजली का तार भी गुजरता है। किसी को कोई हादसा न हो इसको लेकर एहतियातन विद्युत की सप्लाई बंद की जाती है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने 88 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि लगातार शराब के विरुद्ध पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने सिपाया खास गांव में वाहन जांच शुरू किया। इस दौरान पुलिस को देखकर शराब तस्कर गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान इसके मोटरसाइकिल से 80 लीटर से अधिक शराब मिली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया अभियुक्त मुन्ना कुमार पिता हरेंद्र यादव साकिन चतुर्बगा थाना जादवपुर का निवासी है। अब इस पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर महावीरी अखाड़ा से पहले जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। SDM प्रेरणा सिंह और सदर SDPO 2 राजेश कुमार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मौनिया चौक, घोष मोड़, अम्बेडकर चौक समेत प्रमुख इलाकों में पुलिस बल ने मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि उपद्रवियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। साथ ही स्थिति पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम का गठन कर पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई, जिसके वजह से महावीरी अखाड़ा को संपन्न कराया गया। जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव और जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल गोपालगंज में रक्त से प्लाज्मा निकालने की मशीन का जल्द ही संचालन होगा। इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने को लेकर पोर्टल के माध्यम से सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन आवेदन भी किया गया है। लाइसेंस प्राप्त होते ही मशीन का संचालन शुरू किया जाएगा और इससे जरूरतमंद मरीजों को प्लाज्मा संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। गंडक नदी का जलस्तर करीब 1 मीटर तक घटा है, परंतु अब कटाव का खतरा लोगों को सता रहा है। जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार बंधे की निगरानी की जा रही है। वरिष्ठ पदाधिकारी भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोबारा से नेपाल के रास्ते बाढ़ आने का खतरा फिर से मंडराया है, क्योंकि चीन और नेपाल की सीमा पर फिर से एक दूसरी झील फटी है, जिससे भारी मात्रा में जल नेपाल में प्रवाहित हो रहा है और इसके भारत में भी आने की संभावना है। इसको लेकर फिर से गोपालगंज जिला प्रशासन और बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। बढ़ती जलवायु और बढ़ती मौसमी अनिश्चितताओं के बीच पशुधन के लिए वर्ष भर पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसको लेकर एल नीनो जैसी जलवायु घटनाएं एवं चुनौती को और बढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि इनके प्रभाव से वर्षा की कमी, तापमान बढ़ने और सूखे तथा लंबे समय तक शुष्क परिस्थितियों की संभावना बढ़ जाती है। इसका सीधा असर हरे चारे की उपलब्धता, चारागाहों की वृद्धि और चारा फसलों की उत्पादकता पर पड़ता है। भारत में यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुधन का मुख्य पोषण मौसमी हरे चारे, फसल अवशेष और चारागाह संसाधनों पर ही निर्भर करता है। देश में चारे की उपलब्धता में पहले से ही अंतर बना हुआ है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के आकलनों के अनुसार देश में लगभग 11% हरे चारे और 23% सूखे चारे की कमी है। सूखे और लंबे समय तक खुश्क मौसम में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में जुलूस के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या। जनता दरबार में जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की फरियाद। हेलमेट मैन ने बहनों को दिया हेलमेट का तोहफा। धूमधाम से थाना में सती पूजा का हो रहा है आयोजन और पूरे जिले में उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार हुआ समाप्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-097-06-575।
14: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
15: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
14: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
15: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
14: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो पर। दिल्ली स्थित स्मार्ट संस्था के सहयोग से आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम आपके लिए ला रहा है एक ऐसी नई कड़ी, सेहत सही लाभ कई, जिसके माध्यम से आप हो पाएंगे मालामाल। आपको लग रहा होगा कि यह कोई स्कैम है, बिल्कुल नहीं, यह कोई स्कैम नहीं है और ना ही यह कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आपको मेंबर बनने पर नंबर मिलेगा या कुछ बेचना या खरीदना है।
1: हमारा रेडियो आपका अपना विश्वसनीय रेडियो है जो आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। लेकिन नंदनी, आप क्या बोल रही हैं?
0: पड़ गए ना चक्कर में? अरे घबराओ नहीं, हम तो अपने सभी श्रोताओं को बहुत ही सहज और सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप सब कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। अभय क्या कह रहे हो धीरे धीरे मेरे कान में? नहीं भाई, हम इंश्योरेंस एजेंट नहीं हैं और ना ही हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। यह तो हमारा काम नहीं है, हम तो आपके अपने सामुदायिक रेडियो के कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ अपने समुदाय के भले में सोचते हैं। हम सटीक बात बोलते हैं और सही जानकारी देते हैं।
1: दोस्त, अगर तुमने बात पैसे की कर ही दी है तो क्यों ना आप मेरा और हमारे श्रोताओं का सस्पेंस खत्म करें और कुछ सीधी बात करें।
0: मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ इस श्रृंखला सेहत सही लाभ कई का शुभारंभ करने के लिए। अब बिना किसी देरी के मैं आपको राज की बात बता देती हूँ, लेकिन रुकिए, उससे पहले मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाना चाहती हूँ जो हमारी इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ रहेंगे। और हाँ, सिर्फ सेहतिया सिंह जी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी टीकन देवी और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे स्वास्थ्य सिंह और लाभांत्री भी हमारे साथ समय समय पर जुड़ेंगे।
1: नंदनी, तुम्हारी यही बात तो अच्छी नहीं लगती। तुमने कहा था कि पैसों की बात करोगी, माला माल कर दोगी, और अब बात कर रही हो सेहतिया सिंह और उनके परिवार की।
0: तुमने सुना है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। हम यहाँ टॉफी की बात नहीं कर रहे जिसे जल्दी जल्दी चबा लो, मजे लो और फिर स्वाद भी भूल जाओ। हम यहाँ जीवन में थोड़े से बदलाव लाने से जीवन भर पैसे की बचत कैसे कर सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो धैर्य तो रखना होगा।
1: मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है।
0: चलो समझाती हूँ। अभी कुछ महीने पहले तुमने मुझसे क्या कहा था, याद है?
1: मैं तो बहुत कुछ बोलता रहता हूँ।
0: तुमने कहा था कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, 70 साल के ऊपर उम्र हो गई है, सारे टाइम डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। थोड़े दिन पहले माँ स्नान घर में गिर गई थी तो कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, सरकारी अस्पताल में जाने से मना कर दिया, तो 2 FD तुड़वा कर प्राइवेट में इलाज करवाया, महीना भर अस्पताल में रहना पड़ा। और कल ही तो तुम कह रहे थे कि माता और पिता दोनों का ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है। साथ में बड़बड़ा रहे थे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पैसा भी ठीक ठाक कमाता हूँ, लेकिन सारा पैसा दवाई, अस्पताल के खर्चे, मेडिकल टेस्ट और चेकअप में चला जाता है। बोलो, बोले थे कि नहीं?
1: बिल्कुल बोला था। मुझे तो लगता है कि एक तरफ से मेरी तनख्वाह आती है और दूसरी तरफ मेरे और मेरे परिवार की सेहत के चक्कर में खर्च हो जाती है। अब तो लगने लगा है कि या तो माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता कर सकता हूँ या फिर अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा सकता हूँ।
0: इसीलिए तो सेहतिया सिंह जी को मैंने हमारे स्टूडियो में बुलाया है। उनसे जानेंगे कि वो अपनी माँ और अपनी परिवार की देखभाल कैसे करते हैं और साथ ही पैसे भी बचाते हैं। अरे ये लो, आ गए सेहतिया सिंह भाई। स्वागत है आपका हमारे सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम में।
2: नमस्ते नमस्ते, माफी चाहूंगा आने में देरी हो गई। वो क्या है कि बगल वाले ब्लॉक में आज आपकी भाभी को सम्मानित किया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, उसी चक्कर में मैं लेट हो गया।
1: सेहतिया भाई, भाभी कहाँ रह गई?
2: उनको मीडिया वालों ने रोक लिया, लेकिन मुझे तो यहाँ आना था इसलिए मैं वहाँ से जल्दी निकल लिया।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड क्या होता है और इससे क्या लाभ मिलते हैं?
2: बिल्कुल, देखो भैया, सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका मकसद हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन कई बार इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। जागरूकता की कमी के कारण लोग इनका पूरा लाभ ही नहीं उठा पाते। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसमें बड़े ऑपरेशन, अस्पताल में भर्ती रहने की सुविधा, 15 दिन की दवाई और कई अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। अगर आपका नाम इस योजना के सूची में है तो आप किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में बिना पैसे दिए इलाज करवा सकते हैं। आपके एरिया में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, वो आपको इस योजना का लाभ देंगे। यह बिल्कुल निशुल्क होगा और कहीं भी पैसे का लेन देन नहीं होगा।
3: भर्ती करवाने पर, एक्सरे और टेस्ट करवाने पर भी नहीं?
2: कहीं नहीं, पेमेंट का मामला अस्पताल और सरकार के बीच निपट जाएगी। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, भर्ती होने पर ही इसकी सुविधा मिलती है।
0: तो क्या मैं भी अपने माता पिता दोनों का कार्ड बनवा सकती हूँ?
2: क्यों नहीं, यह तो मैं अभी बनवा दूंगा। लेकिन ध्यान दें, एक परिवार को अधिकतम 5 लाख तक का ही लाभ मिल सकता है।
0: आप तो कोई हेल्प वर्कर नहीं है, फिर आपको ये सब काम करने की क्यों और कैसे सूझी?
2: कहते हैं ना, जब अपने पर गुजरती है तब सब सीख जाते हैं। जब तक कोविड ने लोगों की अपने घरों पर वार नहीं किया था, तब तक ना तो मास्क पहने लोगों ने, ना हाथ धोए और ना ही वैक्सीन ली। लेकिन जब कोविड का प्रहार हर घर पर पड़ने लगा, तो हम सब ने सारी बातों का पालन किया और वैक्सीन भी लगवाने के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था, थोड़ी जमीन, अपना छोटा घर और कुछ एकड़ खेत, एक खुशहाल परिवार था हमारा। पर एक दिन मेरे पिताजी को खांसी शुरू हुई और वो 1 महीने तक चलती रही। वजन कम होने लगा, खाना भी नहीं खा पाते। गांव वालों ने कहा नजर लग गई है, झाड़ फूक करवाओ। वो भी करवाया। अम्मा और मैंने कई झोला छाप डॉक्टरों और पीर फकीरों को दिखाया, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। कहां कहां नहीं गए हम, लेकिन सही डॉक्टर के पास नहीं गए। फिर क्या था, खांसी बढ़ती गई। बाबा की दवाई के लिए हम दिन में 3 से 4 हजार रुपया खर्चा करते थे, लेकिन उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता था। गांव में कुछ दिनों बाद पता चला कि बाबा को तो टीबी हुआ है और अम्मा का तो रो रो का बुरा हाल हो गया था। गांव वालों से और समाज के डर से हम तो बाबा को शहर ले गए। वहां हमने एक प्राइवेट अस्पताल में बाबा को भर्ती करवा दिया। बाबा के खर्चे और हमारे शहर में रहने के खर्च ने कमर तोड़ दी। हमें अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी, लेकिन बाबा के सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर से पूछते तो कहते कि कोशिश कर रहे हैं, आपने देर कर दी। यूं ही 1-1.5 महीना निकल गया, सब कुछ खो दिया, लेकिन बाबा को हम बचा नहीं पाए। पिता भी चले गए और सारी जमा पूंजी भी। हम सड़क पर आ गए, बैंक खाली, मकान गिरवी, जमीन खेत सब बिक गया। समझ में ही नहीं आ रहा था हमने कहां गलती की। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि टीबी जानलेवा बीमारी नहीं है, और जानकारी पाने पर पता चला अगर हम 2 हफ्ते की खांसी पर ही उनका टेस्ट करवा लेते तो आज हमारे बाबा हमारे साथ होते और हम अपनी जमीन भी बचा लेते।
0: इतनी छोटी गलती का इतना बड़ा नुकसान, जान और पैसे दोनों ही चली जाए।
2: गलती तो बहुत बड़ी की, या झोला छाप डॉक्टर के चपेट में आ गए। सरकारी अस्पताल पर विश्वास न करना हमारी भूल थी। हम इधर उधर भागते रहे। मेरे अपने अनुभव ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे या मेरे परिवार जैसे कितने लोग हैं जो मेरी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज न करवाकर दर दर भटकते हैं। ये झोला छाप या प्राइवेट डॉक्टर आपका केस बिगड़ने के पश्चात छोड़ देता है। जब तक आप उन्हें पैसा देते रहे, वे आपको उम्मीद देते रहते हैं। जब आपका केस बिगड़ जाता है और पैसे भी खत्म हो जाते हैं, तो वो कहते हैं सरकारी अस्पताल ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते।
1: यह तो आप सही कह रहे हैं, असल में जो चीज मुफ्त में मिलती है हम उसकी कीमत नहीं समझते।
0: आपकी बात सुनकर तो मैं भावुक हो गई, लेकिन आपने टीवी को इतने करीब से देखा है, आप हमें और हमारी श्रोताओं को ये बताएंगे कि आखिर टीवी के लक्षण क्या है, किन लोगों के संक्रमित होने की संभावना होती है?
2: देखिए, जब कोई टीवी से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में मौजूद बैक्टीरिया से यह बीमारी फैल सकती है। लेकिन अगर समय पर दवाई ले ली जाए तो टीवी पूरी तरह ठीक हो सकती है। याद रखें कि अगर लगातार खांसी, वजन घटना या रात में पसीना आने जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
1: लेकिन सेहतिया भाई, लोगों में यह भी धारणा है कि टीवी छूने से फैलती है और यह लाइलाज बीमारी है।
2: यही तो समस्या है, समाज में टीवी को लेकर बहुत सी गलत फहमियां हैं। इसलिए हमने गांव-गांव जाकर लोगों को सही जानकारी दी। टीवी का इलाज मुफ्त होता है और अगर दवाई को सही तरीके से 6 महीने तक लिया जाए तो यह पूरी तरह ठीक भी हो जाता है।
0: मैंने सुना है कि सही पोषण टीवी के इलाज के लिए जरूरी है।
2: आपको पता है कि अगर आपका पोषण सही हो तो आपको टीवी होने की संभावना कम होती है। नियमित भोजन सेहत के लिए जरूरी है। यदि आप बंद, बिना खिड़की दरवाजा वाले कमरे में रहते हैं जहां धूप हो या हवा नहीं आती हो, तो आपको टीवी होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में टीवी होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: महिलाओं को भी टीवी होता है?
2: टीवी तो किसी को भी हो सकता है, आप, मुझे, किसी को भी टीवी हो सकता है। लेकिन महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके लिए सामाजिक कलंक और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने की चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। समाज और परिवार की ओर से भी उनको कोई मदद नहीं मिलती है।
1: कई बार महिलाएं अपनी बीमारी को छुपाती हैं, जिससे उन्हें तो नुकसान होता ही है लेकिन पूरे परिवार के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि महिलाएं मुख्य रूप से देखभाल करने वाली होती हैं।
3: यह बात तो सही है, अगर आप देखें तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देती।
2: हाँ, वो सबके लिए खाना बनाती हैं और खुद आखिर में खाती हैं। पूरा समय परिवार की चिंता करती हैं, लेकिन अपने बारे में भूल जाती हैं। हमें अपने व्यवहार, खान पान और स्वास्थ्य को लेकर सोच में बदलाव लाना पड़ेगा।
3: लेकिन टीवी से जल्दी मुक्ति पाने के लिए दवाई के अलावा मरीज को क्या खाना चाहिए?
2: टीवी के मरीज को दूध, अंडा, दाल, हरी सब्जी और फल जरूर खाने चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया, लेकिन अब डिजिटल जमाना है, क्या हम टीबी की स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन भी देख सकते हैं क्या?
2: बिल्कुल, आप टीबी के मरीज हैं तो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और निक्षय मित्र के माध्यम से पोषण की पोर्टली भी पा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ और समृद्ध हैं तो आप निक्षय मित्र की तरह रजिस्टर करके किसी टीबी मरीज को गोद भी ले सकते हैं।
1: यह तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सेहतिया भाई, अगर लोग इस योजनाओं के बारे में जानेंगे ही नहीं तो उनका लाभ कैसे मिलेगा?
2: सही कहा आपने, जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। जब तक गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक लोग इन योजनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी बेहद जरूरी है।
3: सेहतिया सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद बाद में करना, सेहत के कार्यक्रम और हम अपने श्रोताओं के साथ मिलकर सेहत की शपथ ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम को अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
4: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
5: माँ जी, मुझे टीबी है।
4: टीबी और छुपा कर रखा?
5: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
4: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए सुनते हैं गोपालगंज के सिविल सर्जन बीरेंद्र प्रसाद जी की बातों को, जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 दिनों के सघन टीबी अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
6: भारत मुक्त टीबी प्रोग्राम जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का है कि देश को टीबी से मुक्त करना, इसी के अगले कदम में इसके सफल सफलता का रूपक इसको संचालन के लिए एक नया आया है पत्र, कार्यक्रम शुरू किए हैं 100 दिन में टीबी को मुक्त करने के लिए, है ना, बढ़ चढ़ के काम करने के लिए। इसमें बढ़ चढ़ के काम करने में यही है कि सारे विभाग को इसमें टैग कर दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के शहरी विकास, ग्रामीण विकास, जितना भी पंचायत पंचायत सबका, जो सबको साथ लेकर के इसका जाँच करना है और जाँच करके टीबी को खोज करके इलाज करना है। इसके लिए सब जगह हम लोग प्रचार गाड़ी मुक्त करा दिए हैं, सब जगह प्रचार करेंगे। एक भान भी आया है जिसमें एक्सरे है और वह घूम घूम करके टीबी रोगी को खोज करेंगे, उसमें जो भी होंगे उनका वहीं बलगम जांच करेंगे, वहीं एक्सरे भी करेंगे, प्रतिवेदन देंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको दवा शुरू कर दिया जाएगा। ये खोज कर इलाज करने का ये नया आया है प्रावधान, 100 दिन का प्रोग्राम है ये, 24 मार्च तक ये चलेगा प्रोग्राम, 7 दिसंबर से प्रोग्राम शुरू हुआ है और हम लोग प्रत्येक गांव कस्बा में घर घर जाएंगे, घूम करके 2-2 सप्ताह से ऊपर दिन को खांसी हुआ है उनका जो है हम लोग बलगम जांच करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो एक्सरे भी कराएंगे और भी जांच करेंगे और खोज निकाल करके उनका इलाज करेंगे।
7: सर, बिहार के 10 जिला में ये कार्यक्रम चल रहा है?
6: एक्चुअली ये पायलट प्रोग्राम होता है, जहाँ पर अधिक जो है डीप पैकेज, जहाँ पिछड़ा हुआ जगह है, जहाँ अधिक की संभावना है, वहाँ पायलट प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ करना है। बाकी अन्य जिलों में जिस तरह प्रोग्राम चल रहा है नॉर्मल वे में, मुक्त भारत, टीवी मुक्त भारत, वो चलता रहेगा। यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले।
7: गोपालेश्वर बाढ़ग्रस्त एरिया है, नदी के किनारा है, दियर क्षेत्र है, आपको क्या क्या परेशानी हो रही है वहाँ आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता?
6: हम जाते हैं गाड़ी लेकर जाते हैं, बाढ़ तो खत्म हो गया, रोड समूचा मोटरेबल है, सभी जगह गाँव मोटरेबल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
7: अच्छा, दवा जो है वही?
6: हाँ, एकदम दवा जांच हुआ, दवा उनको दिया जाएगा, फिर बीच में फॉलो अप होता है, 2 महीना पर फॉलो होता है, फिर 2 महीना पर फॉलो अप होता है। 100 दिन का प्रोग्राम है केवल डिटेक्शन के लिए, खोज के निकालने के लिए, और निकल जाएगा तो इलाज तो 6 महीने चलेगा।
7: यानी यह कार्यक्रम लगातार चलेगा?
6: लगातार चलेगा, केवल ये अभियान एक तरफ में, अभियान स्वरूप इसको लाया गया है कि एकदम सारा विभाग, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अलावे शिक्षा है, जीविका है, सभी लोग मिलके एक साथ काम करेंगे और इसको खोज के बाहर निकालेंगे, इसको इस अभियान के थ्रू।
7: चलिए सर, आपने रेडियो रिमझिम को अपना इतना अच्छा वक्तव्य दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: थैंक।
1: कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में आइए सुनते हैं रामदयाल महतो जी को, जो एक टीबी चैंपियन है, वो टीबी से कैसे लड़े और इस पर कैसे जीत पाई, इस बारे में आइए सुनते हैं एक इंटरव्यू।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम 90.4 में गोपालगंज जिले के टीबी चैंपियन आए हैं, स्मार्ट नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के संयुक्त प्रयास से गोपालगंज में टीबी हारेगा और हमारा जिला और देश जीतेगा। इसी के संबंध में गोपालगंज जिले के टीबी चैंपियन हमारे स्टूडियो में आए हैं, उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुनते हैं। तो सर, आपका स्वागत है, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को अपना परिचय दें।
9: सबसे पहले नमस्कार, रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोता को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मेरा नाम रामदयाल महतो हुआ, मैं गोपालगंज जिला के टीवी चैंपियन हूँ। 2011 में मुझे टीवी हुआ था, टीवी से जंग जीत करके मैंने आज टीवी चैंपियन का रोल अदा कर रहा हूँ। देखिए, जब मुझे बीमारी जब हुआ था, उस समय गांव जवार आस पड़ोस के लोग मुझसे बहुत घृणा दृष्टि से देखते थे लोग, यहाँ तक कि मेरे पास तक नहीं आता था लोग, कोई मेरा दोस्त जो था लोग वो भी मेरे पास नहीं आता था लोग, ताकि उन लोगों को ये समझ में आता था कि भाई ये बीमारी इनको हुआ है, हमें भी हो सकता है, इसलिए आना जाना मेरे पास छोड़ दिया था लोग। ऐसे समय बीतता गया, जब मैं ठीक हो गया उसके बाद मेरे पास फिर से आना जाना स्टार्ट हो गया लोगों का, लेकिन उस समय मुझे बहुत घात लगा था।

0: ज्यादा दिन खांसी हो गया और खांसते खांसते फिर भी मैंने इग्नोर करते गया, लेकिन एक दिन मुंह से ब्लड आया। जब ब्लड आया तो मुझे लगा कि नहीं, हमको टीबी हो गया है। मेरे पिताजी, मेरे घर वाले जो भी थे वो कह रहे कि नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हम नहीं लेकर के जाएंगे, प्राइवेट में ही दिखाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसका इलाज सही इलाज है तो सरकारी में ही है, मुझे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के चलिए, वहीं पर हम ठीक होंगे। वहां पर गए, वहां पर जांच में पॉजिटिव आया, सुबह का जांच भी पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद मेरा दवा स्टार्ट हुआ तो शुरू में तो थोड़ा सा दवा का मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था, उसका साइड इफेक्ट हल्का फुल्का होता था। मेरे पिताजी और गांव जवार वाले बोले कि देखिए, पैसा के चलते इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइए, सरकारी हॉस्पिटल को छोड़िए, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे, मर जाएंगे। जिसे मुझे लगा कि नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में ही हम ठीक होंगे, आप लोग जो कहना है कहिए, लेकिन हम सरकारी में ही इलाज कराएंगे। सरकारी में 6 महीना का कोर्स मैंने पूरा किया, पूर्ण रूप से, एको दिन दवा नहीं छोड़ा, और पूरा दवा खा करके कंप्लीट हुआ। आज हम टीवी चैंपियन के रूप में काम कर रहे हैं, पूरा मतलब बिहार में हमारा एक बार प्रथम स्थान आया था, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा मैं सम्मानित भी हुआ हूँ। एसटीओ सर जो है, स्टेट टीवी अफसर, कार्यक्रम पदाधिकारी बालकृष्ण मिश्रा जी, वो भी मुझे सम्मानित किए हैं। आज मैं पेशेंट को
1: एगो बात बताइए, गोपालगंज जिले में जब हम देखे हैं कि जब टीबी होता है तो धीरे धीरे अगल बगल के लोग, घर के लोग थरिया बर्तन बिछावना अलगे कर देते हैं, या गांव से बाहर ले जाके कोनो पीपर के गाछ के नीचे, पकड़ी के गाछ के नीचे मड़ई बना देते हैं और सुबह शाम खाना पहुंचाते हैं। ये हालात आपके साथ हुआ कि नहीं?
0: मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हम अपने से खुद, मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि देखिए भेदभाव इसमें नहीं करना है, लेकिन मैं अपने से खुद अपना बर्तन अलग लेकर के खाना खाता था, अपना बर्तन अलग रखता था, अपने हाथ से धोता था, खुद राख से अपना बर्तन खुद में धोता था, लेकिन उन लोगों के तरफ से ऐसा भेदभाव नहीं था। इसलिए मैं पूरे बिहार वासियों को संदेश दूंगा कि आप लोग इस तरह का भेदभाव न करें, इससे रोगी के ऊपर मानसिक संतुलन खराब होता है, जिससे बीमारी में मतलब ठीक होने में थोड़ा सा कठिनाई होता है।
1: टीबी चैंपियन बनना कोनो साधारण बात नहीं है। आपको जब बीमारी हुआ उस समय जो है आपको बहुत सारा परेशानी हो गया, उस समय जो है आप काहे जिद किए कि हम सरकारी हॉस्पिटल में दवाई कराएंगे, आप काहे नहीं किए कि हम प्राइवेटों में कराएंगे?
0: नहीं देखिए, हम जब उस समय ब्लॉक पर आना जाना लगा रहता था, पढ़ाई तो करते थे, और उस समय जानकारी था कि भाई ये इस तरह के लक्षण होता है तो टीबी का ही लक्षण होता है और इसका इलाज सरकारी में ही है, प्राइवेट में मतलब छोर बार पकड़ के खाएंगे दवा, ठीक नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने सरकारी ही चुना इसको। जब सरकारी में सही इलाज है तो हम प्राइवेट में काहे जाएं पैसा फंसाने?
1: लोग कहते हैं,
0: आर्थिक स्थिति भी उस समय ठीक नहीं था,
1: लोग कहते हैं कि सरकारी में 10 बजे आना, 3 बजे जाना, कोनो डॉक्टर से भेंट नहीं होता है, लेकिन आपको इतना भरोसा बिहार सरकार के हॉस्पिटल में आज से 15 साल पहले कैसे था?
0: देखिए, जहां तहां बोर्ड लगा था ना, तो हमको पूरा विश्वास था कि ये बात सही है, कि यहां पर ही इलाज सही होगा, समझ गए ना, प्राइवेट से अच्छा इलाज सरकारी में ही होगा। अब मैंने वो सेवन किया दवा, समय से दवा लिया, ठीक हो गया। मैंने
1: बलगम का जांच आप पहले कहाँ कराए थे?
0: वहीं पर कराए थे, पीएससी बैकुंठपुर में ही।
1: अच्छा, बलगम का रिपोर्ट कितना दिन में आया?
0: बस एक दिन में ही मिल गया रिपोर्ट।
1: अच्छा, रिपोर्ट में मालूम हो गया आपको टीबी है
0: जी,
1: तो आप घबराए नहीं, डराए नहीं?
0: घबराए, हल्का सा घबराए, थोड़ा सा घबराहट हुई थी, लेकिन उतना नहीं जितना आम आदमी को होता है।
1: जी। क्यों नहीं, आप भी तो एक आम आदमी हैं।
0: क्योंकि उससे हम उसके बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज था कि टीबी क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है।
1: कहाँ तक पढ़े लिखे हैं?
0: हम इंटर आईएससी किए हूँ बायोलॉजी से,
1: 10+2 किए हैं बायोलॉजी से, इसीलिए नहीं डे रहे। अच्छा, ये बताइए कि जब आपका बीमारी हुआ तो आपके रिश्तेदार पटीदार गांव के लोग का क्या प्रतिक्रिया था?
0: बहुत खराब प्रतिक्रिया था मेरे प्रति, वो लोग यहाँ तक कि मेरे गांव जवार के आस पड़ोस के लोग, और आस पड़ोस के छोड़िए, मेरे जो मित्रता थी ना वो भी सब भंग हो गया था उस समय। मित्र लोगों को भी लगता था कि भाई हम इनके पास जाएंगे तो ये बीमारी मतलब हमें भी हो जाएगी,
1: माने टीबी रोगी को लोग छांटना
0: शुरू कर दे, जिससे मेरे मानसिक स्थिति पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता था।
1: ओ, माने आप भी डरा जाते थे कि

0: दुनिया से हमको निकलना है।
1: ये चीज हमको लगता था ना कि देखिए आज हमको कैसा बीमारी हो गया है जिसके चलते मेरे हित संबंधी जो भी है सब लोग अलग रह रहे हैं, जिससे मेरा मतलब मानसिक संतुलन पर भी ज्यादा असर पड़ता था।
0: अच्छा, तो आप जो है टीबी रोगियों को बाद में आप दवा खाए, कितना दिन दवाई खाए थे?
1: 6 महीना कंटिन्यू दवा खाया था।
0: माने लगातार खाए?
1: हाँ, 6 महीना लगातार दवा खाए थे, बीच में छोड़ छाड़ नहीं।
0: अच्छा, सुनते हैं कि कन्म की लगातार दवा खाने के साथ पौष्टिक पदार्थ भी खाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप तो उतना संपन्न नहीं लगते?
1: उस समय उतना संपन्न, उतना जानकारी उस समय नहीं था, लेकिन अभी मैं सभी को संदेश देना चाहूंगा कि जिनके घर में अगर टीबी के पेशेंट है उनसे भेदभाव न करें, उनको खान पान अच्छा दें, सही मतलब उनके साथ मतलब व्यवहार करें।
0: खान पान का मतलब क्या हुआ?
1: अच्छा मतलब प्रोटीन युक्त खाना दें।
0: प्रोटीन युक्त माने एक दाल का साग दें?
1: नहीं, दाल की मात्रा दें, सोयाबीन दें, संभव हो तो मीट वगैरह दें। मतलब खाने में कोई कोताही नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, कोई लोग को ऐसा देखा जाता है कि टीबी का दवाई कुछ दिन ले खाए और खाने के बाद छोड़ दिए कि अब हम ठीक हो गए नहीं, ठीक हो गए नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार?
1: ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने पर एमडीआर टीबी हो सकता है।
0: एमडीआर टीबी?
1: हाँ, जिसका इलाज लंबा होता है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इलाज चलता है। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के काम न करें। दवा अगर स्टार्ट होता है तो कंटिन्यू दवा जितना दिन डॉक्टर कहता है उतना दिन दवा आप लोग खाइए, दवा छोर बार मत कीजिएगा। जितना दिन डॉक्टर अगर कहता है कि नहीं 6 महीना दवा खाना है तो 6 महीना कंटिन्यू दवा खाइए, अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं 15 महीना खाना है तो 15 महीना दवा खाइए, अगर एमडीआर होगा तो 15 महीना, 18 महीना, 24 महीना दवा चलेगा। तो डॉक्टर के हिसाब से ही खाना है, अपने मन से नहीं करना है।
0: अच्छा, आप लोगों को गोपालगंज जिला के 14 ब्लॉक 2 अनुमंडल के लोगों को रेडियो रिमझिम आपके बातों को प्रसारित करने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे टीबी रोगियों से?
1: मैं यही कहना चाहूंगा टीबी रोगियों की दवा देखिए, आपको अगर ये बीमारी हो जाता है तो घबराना नहीं है, समय से जांच कराना है और दवा कंटिन्यू 6 महीना खाना है। 6 महीना अगर डॉक्टर कहते हैं तो 6 महीना, अगर कहते हैं कि नहीं 15 महीना खाना है तो 15 महीना दवा खाइएगा, दवा एको दिन छोड़ बार मत कीजिएगा। खान पान पर अपना ध्यान रखना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विशेष कोई जरूरी हो तो मुझे फोन कीजिए, मैं आपका हेल्प करूंगा।
0: एक चीज बताइए कि जब टीबी का रोग आपका समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो आप कैसा महसूस करने लगे?
1: बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज समाज में मुझे बहुत अच्छा दृष्टि से देखा जाता है।
0: और हम भी सुने हैं कि आप टीबी चैंपियन बने तो आपको पुरस्कार मिला, प्रोत्साहन मिला, बहुत लोग आपको शाबाशी देने लगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखिए मैं अच्छा काम किया था तो पूरे बिहार में मेरा नाम रोशन हुआ था, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी द्वारा मैं सम्मानित हुआ हूँ, स्टेट टीवी अफसर डॉक्टर बी के मिश्रा जी सर द्वारा मैं सम्मानित हुआ हूँ अच्छा काम करने की वजह से।
0: तो आज
1: टीवी फोरम के मेंबर भी हूँ, जिसमें जिला समारोह में मीटिंग होता है उसमें मुझे बुलाया जाता है।
0: गोपालगंज जिले में 1,554 गो गांव है
1: जी,
0: उन गांव के लोगों को विशेष करके टीबी रोगियों से जो बहुत डर जाते हैं, गांव से बाहर मड़ई पलानी में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, घर के लोग बर्तन कर्म की दे देते हैं, सवेरे शाम खाना पहुंचाते हैं, नाक मुंह बांध कर उसके पास जाते हैं, उसका मानसिक स्थिति डामाडोल होने लगता है, वैसे लोगों से आप क्या कहिएगा?
1: वैसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की बर्ताव टीबी मरीज के साथ न करें, इससे उनका मानसिक संतुलन खराब होगा, बीमारी में परेशानी होगी। इसलिए उनको समय से खाना दें, भेदभाव न करें, एक साथ बैठने उठने से टीबी नहीं होता है। बस शुरुआती दौर में थोड़ा सा जब भी वो खांसते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है, दवा स्टार्ट होने से मतलब 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह तक 2 सप्ताह तक मतलब उसको थोड़ा सा बचाव करना है, इसके बाद से वो फैलने का डर खत्म हो जाता है।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 में आज गोपालगंज के टीबी चैंपियन को आमंत्रित किया श्री राम दयाल महतो जी ने, बीमारी से लड़कर गोपालगंज जिले में एक टीबी चैंपियन बनकर पूरे बिहार के टीबी रोगियों के बीच जागरूकता फैलाते हैं। इसके लिए हम नई दिल्ली की संस्था स्मार्ट के द्वारा, रेडियो रिमझिम परिवार द्वारा इन्हें शुभकामना देते हैं और इनके मिशन में हम अपना सहयोग देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। रेडियो रिमझिम 90.4 में आने के लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं।
2: नमस्कार। अब समय आ गया है आपसे अलविदा कहने का। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप खुद ले, सोच बदले और समय पर जांच और इलाज कराएं और पैसे बचाएं।
3: अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कई के साथ। नमस्कार।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा, मिला ही नहीं
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: You can of course also visit Dr. Ambedkar International Center at Janpath for Soundscapes of India Showcase Festival and Music Market.
1: और अगर आपको खरीदारी करनी है, हैंडमेड फेस्टिवल लगा हुआ है बाबा खड़क सिंह मार्ग पर, चलेगा 8 सितंबर तक। बहरहाल इतनी सारी जानकारी आज के लिए बहुत है। अब इजाजत दीजिए मुझे और सरबजीत को इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के UPI पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा UPI पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास फारकस को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: भारत ने अमेरिका के साथ जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जैवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है, 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
7: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेगी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
9: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
10: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
11: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, expert@airnewshindi को फॉलो करें।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
12: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा, बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, IT शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
4: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation.
14: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
15: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
15: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
16: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
15: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
16: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
15: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
17: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
18: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
17: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
18: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
17: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
19: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
15: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
16: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
15: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
20: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
21: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
19: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
22: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
19: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
20: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा।
13: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
13: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: भी जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
2: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको

0: कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: पश्चिमी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। नेपाल में आई बाढ़ के बीच काठमांडू में फंसे महाराष्ट्र के 106 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित सीतामढ़ी लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 106 तीर्थ यात्रियों को नेपाल सीमा से सुरक्षित निकाला। जिला प्रशासन की टीम तीर्थ यात्रियों को एस्कॉर्ट करते हुए सीतामढ़ी लाई। इस दौरान उनके लिए भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। सभी तीर्थ यात्रियों को आवश्यक सहयोग और सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए महाराष्ट्र के लिए रवाना किया जा रहा है। सुरक्षित वापसी पर तीर्थ यात्रियों ने बिहार सरकार और सीतामढ़ी जिला प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार।
0: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। प्रदेश में जल्द ही 21,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को 2 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इनमें 14,409 आशा कार्यकर्ताओं की ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 7,289 की शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति होगी। विभाग ने सभी जिलों को रिक्तियों का विवरण भेज दिया है। इसके अलावा 1,104 आशा पर्यवेक्षकों की भी बहाली की जाएगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए दवा, चिकित्सा उपकरण, डस्टबिन और अन्य सामग्रियों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत के निर्देश पर विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर त्यागराजन SM को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच समिति को खरीद प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों से जुड़े सभी आरोपों की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 में संगीत शिक्षकों के पदों में बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वर्ग 9 से 10 के लिए संगीत में 111 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं। इन पदों के शामिल होने के बाद TRE-4 के तहत कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 33,385 हो गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग जल्द ही इस संबंध में संशोधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगा। प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब छोटे भूखंडों पर संचालित शैक्षणिक संस्थानों को लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने योजना के लिए निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के लिए कम से कम 5 एकड़ और शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ जमीन अनिवार्य की गई है। पटना में यह मानक 2 एकड़ रखा गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। NTA ने जून सत्र में 84 विषयों के परिणाम घोषित किए हैं। हालांकि अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के परिणाम फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। इन 3 विषयों की परीक्षा 9 और 10 सितंबर को दोबारा आयोजित होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के प्रतिभाशाली पैरा खिलाड़ी सोमन राणा और झंडू कुमार को सम्मानित करेंगे। सोमन राणा ने राष्ट्रमंडल खेल में शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक और झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। सोमन राणा को 30 लाख और झंडू कुमार को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इन दोनों खिलाड़ियों को सरकार की मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत सरकारी नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी। बिहार गीत के रचयिता और प्रख्यात कवि गीतकार सत्यनारायण का पटना में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उनके निधन से बिहार के साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर है। एक श्रद्धांजलि।
1: वर्ष 2012 में बिहार के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रचा गया कवि सत्यनारायण का बिहार गीत प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
2: मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार।
1: उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुल गीत की भी रचना की थी। वर्ष 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान नुक्कड़ कविता पाठ के जरिए भी उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कवि सत्यनारायण के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बिहार गीत के अमर रचनाकार ने अपनी साहित्यिक साधना और कालजयी रचनाओं के माध्यम से बिहार की माटी, संस्कृति और गौरव को स्वर और शब्द प्रदान किए। कवि सत्यनारायण का अंतिम संस्कार आज पटना के बांस घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
2: मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार।
0: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 और बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे श्रीकांत शास्त्री को पशुपालन निदेशक और नितिन कुमार सिंह को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है। पशुपालन निदेशक उज्ज्वल कुमार सिंह को ग्रामीण विकास विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं विवेक रंजन मैत्री को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डाक विभाग ने बिहार समेत देश भर के सभी शाखा डाकघरों को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य के 8000 से अधिक शाखा डाकघर पेपरलेस हो जाएंगे। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद ग्रामीण डाक सेवकों को मैनुअल रजिस्टर और कागजी रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर के विकास, सौंदर्यीकरण और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 3000 वर्ग फीट क्षेत्र में प्रस्तावित प्रिंटिंग प्रेस के नक्शे को जल्द तैयार कर सभी आवश्यक अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बांका, बेगूसराय, गोपालगंज, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
3: दिनांक 29 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के अनेक स्थानों पर जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, बेगूसराय, गोपालगंज, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में अनेक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: किशनगंज जिले के सुखानी थाना क्षेत्र के सबोद डांगी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से कार सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों में एक चिकित्सक भी शामिल है। भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के तखली टोला स्थित बिहुला धार में डूबने से तीन बहनों की मौत हो गई। मधुबनी जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग 15 साल पुराने एक मामले में चाचा भतीजे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, एक और झील फटी, बिहार सतर्क। दैनिक जागरण ने लिखा है, पुलिस अवर निरीक्षक का पीईटी और अभिलेख सत्यापन किया गया स्थगित। प्रभात खबर की सुर्खी है, पटना से गया जी जाने के लिए एक और सुगम तथा शॉर्टकट रास्ता मिला, करवी गैया, मीठापुर फ्लाईओवर तथा मीठापुर सिवारा सिपारा एलिवेटेड पथ का सीएम ने किया लोकार्पण। दैनिक भास्कर ने लिखा है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की कार्रवाई, बिहार के 40 कॉलेज की मान्यता रद्द, कहीं दो कमरों में चल रहा था कहीं शिक्षक नहीं। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, एनटीए में दो डायरेक्टर और एक ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बिहार गीत के रचयिता सत्यनारायण के निधन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर एक और झील टूटने की आशंका के मद्देनजर वाल्मीकिनगर गंडक बराज और सारण तटबंध की निगरानी बढ़ाई गई। प्रदेश में 21,000 आशा कार्यकर्ताओं और 1,104 आशा पर्यवेक्षकों की होगी नियुक्ति। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता बिहार के सोमन राणा और झंडू कुमार को करेंगे सम्मानित। और मौसम विभाग ने आज बांका, बेगूसराय, गोपालगंज, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
16: आज ही आए चंद्रगोकुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
17: Pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम, प्रणाम।
2: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: गाना सुनेगा
2: जी, बता दी कौन सा गाना सुनेगा?
1: बस वाला मैडम। बस वाला मैडम, भोजपुरी गाना था।
2: गाना के बोल एक बार और बोले, सुनाई नहीं के देता।
1: बस वाला मैडम, भोजपुरी गाना था। जी
2: हेलो, सुना होगा बाकी उसके?
1: हाँ सर, हुआ सुने मौका बाद हम सुने।
2: अच्छा, तो गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4
1: जी। मधुमाशा आज सुन रहे हैं?
2: हाँ हाँ, आज सब गाना सुना ले।
1: कितना बजे?
2: 5 से 7 बजे के बीच में।
1: अच्छा सुना दे, वो दिन फरमाइशी कर दे रहे इंटरनेट सुन पानी की, तो हाँ सुना दे।
2: ठीक बात।
1: अच्छा सब ठीक है ना मैडम?
2: हाँ,
1: रक्षाबंधन हो गए?
2: हाँ, रक्षाबंधन हो गए।
1: हमने के यहाँ तो सब हो गए
2: जी। तो चलिए गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैडम, धन्यवाद
2: जी।

0: हेलो नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैं कमरान नसीब।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: जी अच्छा हूँ, आप कैसे?
1: मैं भी अच्छी हूँ।
0: बढ़िया है
1: जी, बिल्कुल।
0: हाल तो बंद था, अभी लगाता हूँ, लग भी गया।
1: तो आज कौन सा गाना? इधर का मौसम तो ठीक है, आप बताइए आपके तरफ से कैसा है?
0: हाँ इधर भी ठीक है, धूप है, हवा चल रहा है हल्का हल्का। खाना वाना हो गया आपका?
1: हाँ हाँ खाना हो गया है। तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: राखी का कोई अच्छा गाना सुनाइएगा। राखी का कोई अच्छा गाना?
1: जी बिल्कुल बता दीजिए, आप अपने फरमाइश।
0: गाना हमको ध्यान नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। राखी का गाना सुने बहुत दिन हो गया।
1: जी
0: ये सुना दीजिएगा, डेडिकेट सुन लीजिए। डेडिकेट है सबसे पहले आपको और रमन सिद्दीकी और करी, मोहम्मद अली, शाहजहाँ, दिलीप राम, समीर आलम और आयशा भाकर, बर्जू, मुकेश, उत्तम सोनी, अन्यासी रंजन बाबा, रानी हरकुआ, सजदा अंसारी, बीना, सब्बा सिद्दीकी, हेना आगरा, रोशनी कुमारी, ये लोग सुन रहे हैं सबके साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो हेलो,
13: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: जी नमस्ते
13: नमस्ते,
12: पचपरा से भोला जी बोलते नहीं।
13: हाँ, क्या हाल चल रहा?
12: ठीक सब, रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं।
13: जी जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
12: जी आज शो तुम्हारा लेट से चालू भइल।
13: कहीं कह जाओ, राखी बावे तो भैया लोग घर पे लेट से पहुँचल है, राखी कौन से ही निकलता
12: नहीं। जी आज रक्षाबंधन का गाना बाजी।
13: बता दी कौन सा?
12: बहना ने भाई के कला में प्यार बांधी है, यही गाना को बजाइएगा। आज बाजी नू?
13: हाँ आज बाजी।
12: जी तो आज बजा देवे, इसे की रक्षाबंधन का गाना ज्यादा फरमाइश आ जाए, रक्षाबंधन का गाना बाजे चाहिए।
13: काल
12: तक काल बाजी तो अच्छा ना लगी, इसे की आज बाजे जाए। जी
13: ठीक बा, और गाना क्यों कितना हो के बाद?
12: रेडियो रिजन के पूरे पूरे सुनने वाला भाई भैया बहन जितना लोग बात सभी को सुनी।
13: तो गाना प्ले करे।
12: जी जी दम खुशी
13: सुनत रहे रेडियो रिजन 90.4 FM।
12: नमस्ते
13: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू। हाँ जी मैडम जी, गाना सुनना है हमको।
1: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
0: ओ बाबुल प्यारे हिरोए पायल की सरगम। गाना सुनना है।
1: गाना सुनाना भी है।
0: हाँ गाना तो सुनाना है पूरा अपना रेडियो रिमझिम का जितना भी श्रोतागण है जो एफएम सुनते हैं उन सब भाई बहन को सुनाना है, आप सभी स्टाफ लोगों को सुनाना है।
1: जी तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी जी जी। ये गाना कभी सुनने को मिल जाएगा?
1: आज मिल जाएगा आपको सुनने को।
0: कितना शाम वाला समय में? 5 बजे वाला में?
1: हाँ हाँ 5 बजे वाला में।
0: ठीक है,
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो, नमस्ते
7: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: कैसी हैं मैम?
7: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
8: मैं भी अच्छी। हैप्पी रक्षाबंधन।
7: हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी।
8: और क्या मैम,
7: आपकी आवाज कट कट
8: गाना का
7: बता दीजिए, कौन से गाने की फरमाइश है?
8: तो मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए आपको है, तो मुझे थ्रिलर क्या मूवी का ही सॉन्ग है।
7: और कौन सी मूवी का है?
8: मूवी का नहीं आ गया, बॉलीवुड मूवी है ना, उसी का।
7: अच्छा ठीक है फिर।

0: हेलो मैडम जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बस मैडम जी खाना खा रहे थे तो अभी याद आया, तुम्हारे फोन लगाना है मैडम, तो लग भी गया।
1: अच्छा
0: जी जी,
1: तो आज कौन से गाने की फरमाइश है?
0: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम।
1: और
0: गाने के बोल है जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: जी आपको साथी में
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी आज आएगा, कल आएगा? ये
1: आज ही आएगा।
0: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
1: जी जी, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-75।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम, हमारे तो ठीक बार हुआ, बताए रहो कैसन बान?
13: ठीक बने हम
12: तो, कहा होता अभी
13: बस
12: ना ना तनी हम लेट से पहुँचने ना, हम लोग के राखी बांध के रह लवे तो भैया लोग लेट से घरे पहुँचल तो बांध के निकलने है तो अनी है तो तुरंत कॉल रिकॉर्ड में लाग गई है। राखी बनवा गई और सब ठीक बा।
13: कल फोन फोन आवाजे बराबर ना सुना,
12: आवाजे ना सुनाते, गाना कहत रही तो सुनाते ना रहोगे। कबो कबो न मानिए स्टूडियो के अंदर बन नेटवर्क तनी कम रहेला।
13: बोल दे व्हाट्सएप नंबर बोल देती तो बनवा लेती हम अपने हस्बैंड जी के मोबाइल से, तो दिक्कत ना हो।
12: तो बता दी आज कौन सा गाना सुने
13: राखी से तुम्हारे भाई भाई बजा दी अपने।
12: अच्छा गाना सुना हूँ की बाकी ओके
13: जितना लोग रेडी
12: चलिए तो गाना प्ले करता नहीं सुना रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: सुबह से मेहनत करत करते मेरे पकड़ लो।
0: अच्छा,
1: लास्ट बेरा।
0: चलिए, कोनो बात नहीं है।
1: और कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: सर ठीक बा, हम ठीक है बनी। टाइम खत्म हो गया, आप ज्यादा बात कर ठीक नहीं। हेलो
0: जी, तो बता दी कौन सा गाना सुने
1: परवरदिगार आलम मौलाज है रे, इसको सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी है
1: जी, आपको सुनाएंगे और पूरे अपने टीम को और यासुद्दीन भाई को। हेलो।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, यही सुनाना है
0: जी। तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: हाँ ठीक है सर
0: जी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: नमस्कार मैम।
9: नमस्कार,
10: सुनना है मधुसरिया से राजी कुमार बोल रहे हैं।
9: जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
10: गाना सुनना है तेरी जवानी बड़ी मस्त।
9: कौन सा सॉन्ग?
10: तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है जीरा मौसम।
9: हाँ हाँ हाँ, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हेलो,
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम पूजा कुमारी है।
0: और कहाँ से हैं पूजा जी?
1: चौराहा से।
0: अच्छा जी, तो कैसी हैं?
1: अच्छी हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: रक्षाबंधन का सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: गाने की बोल बता दीजिए,
1: कोई भी।
0: और गाना सुनाना भी है किसी को?
1: हाँ सुनाना है।
0: बता दीजिए नाम, बता दीजिए अगर नाम बता।
1: मुनार्मा कुमारी, गुंजा कुमारी, नीतीश कुमार, विकास कुमार।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।
12: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
13: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
12: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
14: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 91.4 एफएम में।
17: हेलो मैडम,
16: नाम बता दो अपना।
17: प्रीति।
16: और कहाँ से हैं आप?
17: कोना मोड़।
16: और कौन सा गाना सुनना है प्रीति जी आपको?
17: रक्षाबंधन का कोई भी सॉन्ग मेरे भाई के लिए।
16: अपने भाइयों का नाम भी बताएंगी?
17: आदित्य राजकुमार और शेखर कुमार और गौतम कुमार
16: जी। और सब ठीक है?
17: हाँ हाँ।
16: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रूम जिम 91.4 एफएम।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी हम रमजान
0: जी, क्या हाल चाल है आपका? तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सुनवा दीजिए, चीता मूवी का गाना सुनवा दीजिए। ओम मिठन का मूवी है।
0: और गाने की बोल?
1: गाने का बोल ये वाला है, ये कुड़ी मेरा दिल ले गई, कुमार सानू वाला याद मिट्टी हमारी।
0: और गाना सुनाना भी है किसी को?
1: जी आपको, और हम भी सुनेंगे, हमारे दोस्त लोग भी सुनेंगे, ये प्रोग्राम जो सभी सुन रहे सभी सुनेंगे।
0: जी जी बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
11: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
10: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
13: Now pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है
18: रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामना पूरे टीम के लिए। मैं धनेश कुमार मित्रा दिल्ली।
17: आपको भी रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं।
18: और नहीं, आज बहुत लेट
17: ही पहुँचे आज।
18: अरे
17: तो राखी मना लिए?
18: कहाँ, हमारी कहाँ ऐसा नसीब है।
17: मानते हैं आपको,
18: कोई बात नहीं, अगर जिंदगी रही तो अगले बार भेजना।
17: जी बिल्कुल,
18: जिंदगी रही तो अगले बार जरूर भेजना, ऐसी बात नहीं है।
17: जी जी बिल्कुल भेजेंगे, ऐसा थोड़ी।
18: क्योंकि आज के दिन बहुत बुरा लगा है, क्या करें। अगर है भी तो किसी का वो नहीं है, शौक श्रद्धा नहीं है। आजकल डिजिटल जमाना है, आजकल कोई सोचने वाली बात है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है।
17: जी बिल्कुल कर सकता है।
18: आप गए थे कहीं कि नहीं?
17: नहीं, भैया लोग खुद ही घर पे हैं, आए हुए।
18: मनोरमा जी तो गई है दूसरे जगह,
17: शायद गई है। बोले आइएगा कि नहीं, तो कह रहे हैं देखिए आते हैं या नहीं। तो आज कौन सा गाना?
18: आज क्या कहें, हम तो गाना भूल ही गए। आज लगा कि फोन ही नहीं लगेगा, मैं तो ट्राई किया, देखिए कौन सी गाना दिया जाए, याद ही नहीं आ रहा है। आज अपने पसंद से हम जैसे सुनते हैं वैसे पसंद हमारी रहेगी, फरमाइश हमारी रहेगी, पसंद आती रहेगी।
17: अच्छा,
18: क्योंकि आज दिमाग पर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ट्राई किया हूँ, ट्राई किया और लग गया, इसलिए। चलिए फिर पिछले पिछले मेरा रिकॉर्डिंग बाकी है ना, आज रक्षाबंधन की जो दिया था।
17: मेरे पास तो सारा कॉल बच गया है, एक कॉल बचा हुआ था, वो भी देखना पड़ेगा।
18: तो अगर रक्षाबंधन की नहीं होता तो रक्षाबंधन के ही देते,
17: तो अभी दे दीजिए। पता नहीं उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आज अभी वाला देंगे तो मतलब ये तो तुरंत ही बच जाएगा। आज का सबका बजाना है।
18: तो आज आज अगर वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो राखी का ही गीत बजा देना, जो ये
17: कौन सा
18: तिरंगा फिल्म का नहीं है। इसे सम जो नारे सम के तार भैया, यही वाले। अगर अगर वो होगा तो ठीक है, नहीं तो ये बजा देना।
17: जी बिल्कुल। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
18: जी जी।

0: हेलो, सलाम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: जी मैम, कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं। लगता है आपका तबीयत सही हो गया।
1: हाँ हाँ सही हो गया।
0: आज बहुत लेट से सुबह स्टार्ट हुआ।
1: हम भी अपने घर पे थे, भैया लोग थोड़ा लेट से पहुँचे तो राखी बांधने में टाइम लग गया।
0: जी मैम, आपको आपकी पर्व का हार्दिक मुबारक हो। आपको
1: जी आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
0: मैम तो ये कब तक चलेगा रिकॉर्डिंग?
1: अभी तो 12:30 बजे तक चलाऊंगी।
0: अच्छा, तो आधा एक घंटा।
1: हाँ बताइए।
0: जी गाने का बोल है, दिल लगानी जितने बेर।
1: कौन सा?
0: दिल लगानी जितने बेर है गाना का। कुछ
1: किसका है ये बता सकते हैं?
0: उदित नारायण का आवाज है और पवन सिंह का मूवी का सॉन्ग है।
1: अच्छा, मूवी पता है कौन सा है?
0: हाँ, मूवी का नाम है दुल्हन सही है, दुल्हन डोली करके सही कुछ है। अच्छा तो नाम याद नहीं है लेकिन गाना का नाम याद है। वैसे तो हम भोजपुरी फरमाते नहीं है लेकिन आज सोचे कि भोजपुरी सुन ले, हमेशा तो हिंदी ही सुनते हैं।
1: कोई बात नहीं, कभी कभी सुन लेना चाहिए।
0: जी मैम,
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: जी आपको, रेडियो दो सभी को।
1: अच्छा।
0: सभी आदमियों को। जी मैम, तो ये दूसरा कॉल है ना मेरा?
1: हाँ दूसरा कॉल है।
0: देखते मैं अंदाज से बता भी दिए कि दूसरा कॉल है। जी मैम, तो आज तो चलेगा ही?
1: हाँ चलेगा।
0: चलिए एक नंबर में बजाइएगा तो अच्छा लगेगा।
1: जी
0: क्योंकि एक नंबर में कॉल तो नहीं लगवाया, बच जाएगा तो और ही अच्छा लगेगा।
1: कोशिश करेंगे।
0: कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत दिन हो गया मेरा पास में बजा हुआ। चलिए मैम, तो और भी लोग हैं इसलिए पहले से धन्यवाद देते हैं गाने के लिए।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ओके मैम, बाय बाय।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
9: हम थाना से बोलते हैं, रामाज प्रसाद।
8: हाँ जी, का हाल चाल बा?
9: हाल चाल ठीक बा, बाहर लेट से कॉल उठा था।
8: ना ना, तो अभी शुरू है, कोई नहीं है, पहले के कॉल है, हम आज लेट
9: से बताओ। हमारा मशीन खराब लगा हमारा।
8: ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है,
9: गाना सुना दी
8: बता दें।
9: राशन बंधन आज बढ़ रहा है।

0: गाना आज नहीं बना
1: बता दी सुना दी हल जाइए आज हुए
0: ये रखिया लग सुना दी रखिया बंद आला भैया सावन आये
1: गाना सुना होगा कैसे
0: आये बलो अमर बेटी लो विमल कुमारी नीलम कुमारी नीतू कुमारी हमको भाभी वाली अनुराधा देवी जी लोग सुना जाये
1: जी जी चले ठीक बात गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो रंजीत 90.4 FM
0: नमस्ते
1: नमस्ते
0: लेकिन गाना आज सुना बना चल जाये तो फिर सुनना पाई लो
1: ना आज ये सुनाया जब चले लगे साथ में वही जरा बाजू नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
0: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरफ से। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी
0: और पूरा टीम को।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तब आज रक्षाबंधन का सॉन्ग चला दीजिएगा मैम।
1: तो सॉन्ग बता दीजिए कौन सा।
0: तिरंगा पिक्चर का।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना है।
0: जितने रेडियो दोस्त सुन रहे हैं, भाई बहनों, उन सभी लोगों के साथ में सुनना चाह रहा हूँ।
1: जी तो गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम।
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: your entertainment. Log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: घुटना एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8669 73।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: सेवा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277166596। तो दोस्तों, बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारी तरफ से आप सभी के लिए गाना प्ले करेंगे और गाने की बोल है हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं। जब तक हमारे सारे लिसनर अभी जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए गाना प्ले करते हैं। एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी आप लोग सुन रहे थे मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, और गाने की बोल थी हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं नमस्कार सलाम अलैकुम भारती मैम, कुवैत से जौहर आलम, और हम भी 3 दिन पहले वॉइस भेजे थे गाना फरमाइश के लिए, अब बजा दीजिए और कृपया करके बजाए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल है मैम, नाइस सॉन्ग मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संजय जी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, और मैं भी आ गया हूँ, और कैसी हैं आप, और आप ही का सॉन्ग है मस्त है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी उत्तम जी, जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हाय भारती जी, राधे राधे, मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है, दुबई से बोल रहे हैं, और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो मैम, सरफरोज अली गोपालगंज से, गाना तो बहुत अच्छा है मैम, लेकिन आपको आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा तबीयत ठीक ही है, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गाने की भूल पहुंची हुए विकास गुप्ता जो कि भूरे गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की भूल है गजब के रोग जवानी में दे गई अखिया, और प्लीज़ जल्दी से जी गाना प्ले कर दीजिए, पिछली बार आपने गाना नहीं सुनाया, अपना गाना नहीं सुने थे और नहीं सुन पाए थे। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मन के महफिल से मस्ती निकल ना सके,

में राखब दिल के अरमान बना के, तोहके दिल में राखब दिल के अरमान बना के, अरे जान जबले रही कसम से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब। धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल

ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचे हुआ है लिख रहे हैं मैम नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं और रेडियो रंजन से सुनील कुमार मैहर MP से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ। और रोहित UP 36 अमेठी जिला उत्तर प्रदेश, और मैं अपने गांव आया हूँ भारती जी इसलिए मैं अपने गाँव के एड्रेस से जुड़ रहा हूँ शो में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम सुनील कुमार पूर्वी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से जुड़े हुए हैं भारती जी गुड आफ्टरनून। और मुझे एक गाना सुनना था और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और डेडिकेशन भी पहुँचा हुआ है, तो जब गाना प्ले करना होगा तो मैं बताऊँगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पर जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं भारती दी नमस्कार, उत्तम भाई को भी नमस्कार और मैं भी जुड़ गया हूं योर वॉइस योर चॉइस में, और मैं बिरजू जिला रांची झारखंड से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहां मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम बद्रापुर दिल्ली से, और नूर आलम मुझे भी एक गाना सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे साथ सन्यासी रंजन जी भी जुड़ चुके हैं जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पे भारती जी किस दिन बिना मैसेज का भी

और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सरिया वार्ड नंबर 1 से, गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा मैम, और कल मेरा गाना नहीं बजा था मैम, आज तो बजा दीजिए, लिंक भेजे हैं वही बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे, और मेरी बहना सॉन्ग है और मूवी का नाम है अंधा कानून, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे मेरी बहना प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अहमद अली जी की तरफ से वॉइस मैसेज पहुँच चुका है फीडबैक में, तो चलिए सुनते हैं।
1: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। राखी तो अभी तक गया, लेकिन आज ही मेरे तरफ से सभी को रक्षाबंधन का बहुत सारा बधाई। ठीक है, गाना बजाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
0: और जो कि यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहा है धनी जी की, भारती जी किसी दिन बिना मैसेज का भी याद कर लीजिए। मैम आपका शो ओपनिंग से सुनता हूँ, टाइम ना मिलने के कारण मैसेज नहीं कर पाता हूँ। और लिख रहे हैं कि हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि बिरजू भैया, उमा शंकर भैया, मुकेश भैया और सन्यासी रंजन बाबा और सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, उत्तम सोनी हरपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती मैम जी, न्याय पारा विरई से वसंत कुमार ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि निकेश कुमार, मेरा घर इजरा वार्ड से थाना संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि अर्ज किया है कि नफरत ऐसी हुई कि हमने उसके सामने आना छोड़ दिया, अपनी मोहब्बत जताना छोड़ दिया, क्योंकि जिनकी हंसी पर मरते थे हम, उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराना छोड़ दिया। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, सुनील कुमार पूर्वी चंपारण अरेराज बाबा की नगरी से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, गाने की बोल है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, और डेडिकेट करना चाहते हैं साहू जी मंटू यादव जी को। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8940 या 9198-8669-73।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, ग्राम पंचायत जरा जई छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से, और मुझे भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी गाने सुनवाए जाएंगे। और उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिलसाद भाई मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, पहली बार आपके प्रोग्राम से जुड़ रहा हूँ और मेरे गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। उससे पहले जो कि गाने की फरमाइश पहुंची हुई है उसको प्ले करेंगे। और यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं दुनिया चांद पर पहुंच गई, पर हमारे यहाँ तो आज भी वही हालात है। फलाने की बहू लेट उठती है और फलाने की बहू सिर पर पल्लू नहीं रखती है। बात तो बिल्कुल एकदम सही है आपकी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं नमस्कार सलाम अलैकुम भारती मैम, कुवैत से जुड़े हुए हैं जौहर आलम, और 3 दिन पहले वॉइस भेजा था गाना फरमाइश के लिए, बजा नहीं, तो कृपया करके आज गाना बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने की फरमाइश को पूरा करेंगे, और वॉइस नोट पहुंचा हुआ है तो प्ले करते हैं, क्या है देखते हैं वॉइस में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, तुमसे मिलने को दिल करता है, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनाने के लिए भारती मैम को थैंक यू, धन्यवाद सही में दिल से।

आपने गाने को एंजॉय किया ये सुन के अच्छा लगा। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हाय मेरा भी गाना बजाइए भारती जी। और विकास कुमार चौधरी जुड़े हुए हैं दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं सन्यासी यूं ही नहीं बने हैं सन्यासी बाबा, सन्यासी वाले पूरे गुण हैं, मुकेश यादव अहमदाबाद से। तो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं वाओ सुपर सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत तो हार्ट टचिंग सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है दीनानाथ यादव कुवैत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं यहाँ की गुड आफ्टरनून मैम, सत्येंद्र यादव सत्येंद्र कुमार इराक से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश से दिलसाद भाई जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं, और मेरा गाना भी फरमाइश है पूरा कर दीजिए। और वक्त गाने की भी बोल है, वक्त ने हमसे कैसा लिया इम्तिहान, हमने रोका नहीं तुम रुके भी नहीं। और मेरे फ्रेंड हैं अली, उन्होंने मुझे बताया रेडियो रिमझिम सुनो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को, और आपके गाने को चलिए बिना देरी किए प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM में ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:55 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नूर आलम जी की, वाह हार्ट टचिंग सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं, मैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, और थैंक यू भारती जी मेरे फ्रेंड दिलशाद अली की फरमाइश पूरा करने के लिए, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि यहाँ गाने की यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, ससुर आए थे अब घर जा रहे हैं रायपुर से, ससुराल आए थे और बालोद न्यायपारा विरही से प्रमोद कुमार साहू, लीला साहू, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि मेरे भी गाने की फरमाइश है जो कि लिंक के माध्यम से भेज दिया हूँ, प्लीज़ प्ले कर दीजिए। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश को पूरी की जाएगी। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, लोगों के रिश्ते होते हैं, लोगों के रिश्तेदार होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील इत्यादि, और वहीं दूसरी तरफ मेरे रिश्तेदार काला जादू करने वाले षड्यंत्रकारी, चुगलखोर, जलनखोर, कामचोर और हरामखोर है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि दिल से दिल लगाकर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बनाकर तो देखो, लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे एक बार, किसी अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। और लिख रहे हैं नमस्ते, नमस्कार डियर भारती जी, कैसी हैं? मैं तो हमेशा मस्त बिंदास और झकास रहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके घर परिवार में सभी सदस्य सकुशल पूर्वक होंगे, मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान, फ्रॉम शारजा सिटी UAE दुबई से। तो लिख रहे हैं कि मर्यादा लांघकर चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, सुकून तो तब है जब संस्कारों की सीमा में रहकर किसी के दिलों में जगह बना ली जाए। और मेरा भी वेलकम कर लीजिए भारती जी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी वेलकम कर दिए हैं। और इससे यहाँ पे हमारे पास गाने की फरमाइश जो कि पहुँच हुई है डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा जी की तरफ से, और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है, लिख रहे हैं, मोहब्बत वो करेगा जो दीवाना होगा। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है कुमार शानू की आवाज़ में है। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे डॉक्टर अमोद कुमार जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, अमोद जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और यहाँ पे जो कि अमोद जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली जी की, सन्यासी रंजन जी एकदम मस्त मौला आदमी है। और यहाँ पे उत्तम सोनी जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन बाबा ये नमूना कहाँ छुपाए थे इतने दिनों से बाबा। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं हाय भारती दी गुड आफ्टरनून का हाल बा, मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से और सब बढ़िया बा दीदी और सब बढ़िया बा बताएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप सब कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, हम भी जुड़ गए हैं अनूप कुमार खरवा खरवार हजियापुर गोपालगंज बिहार से, और आज मुझे भी गाना सुनना है और गाने की बोल पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले करेंगे। और उससे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं इधर भी नज़र नियायत कीजिए। तो जी बिल्कुल, आप सभी पे हमारी नज़रें हैं और सभी के गाने की फरमाइश को देख रही हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजा सिटी से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, टटोल कर देखो अपने दिल को हर फासला वजह नहीं होता। और लिख रहे हैं कि हजारों गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देते हैं रेडियो पर तमाशा कौन करे। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि गाना है दीवाना मूवी से तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और यहाँ मोहम्मद इरफान जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया डियर भारती जी, इतना खूबसूरत अंदाज में मेरी शायरी को पढ़ने और इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो इन्जॉय कीजिए गाने को अपने।

0: से कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इम्पोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धनेश कुमार जी की। एक महिला ने शनिदेव से पूछा, हे शनिदेव, स्त्री को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं देते? शनिदेव बोले, मैंने तुम्हें एक देव दिया है, पति देव, उसे परेशान करो, मुझे नहीं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से है, और लिख रहे हैं ये चार लाइन सन्यासी रंजन जी के लिए। सच्चा प्यार तो सिर्फ वोडका की बोतल में है, लड़कियाँ तो बस दिमाग का दही करने में एक्सपर्ट है। जो कहते थे तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आजकल वो बाजार में सब्जी का थैला उठाए घूमते हैं। और ये लाइन सन्यासी रंजन जी के लिए था। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसन बानी मैम?
0: ठीक बानी रवा, बताइए रवा कैसन बानी?
1: ठीक बानी हम।
0: कौन सा गाना सुने को?
1: सैफ अली खान के।
0: गाने के बोल बता दी।
1: मैं प्यार तुमसे ही करते तुम गवाही दो।
0: और गाना सुना हो के बा?
1: और अगला सुन ले गाना, जितना लोग सुनता सब से सुनी।
0: तो चली रहा और गाना प्ले कर दिल बनी, एंजॉय करी रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: ठीक बा।

अभी हम लोग सुन रहे थे रेशमा जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मैं प्यार तुम्हें ही करता हूँ तुम गवाही दो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि विजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और नाम तो पता है पर अपना कहाँ से हैं आप जरूर बताएं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं शो से, हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा और सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बधाई। कपिल कोटा राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जौहर भारती जी न्यायपारा विरई से, लीला साहू प्रमोद साहू गाना सुना दे। और इन सब की गाने को सुना दे, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और आपके गाने को भी प्ले करेंगे, पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती हैं। और बाय बाय टू ऑल फ्रेंड्स, सी यू टुमारो डेफिनेटली एट ऑन टाइम। और मैसेज करने वाले मोहम्मद इरफान जी जो कि लिख रहे हैं, और आपको भी बाय बाय। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती मैम, दिलीप शर्मा खेम मठियानी सिपाया से, और मुझे गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहा है, यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहा है, हेलो मैम हम शिवम यादव लकड़ी दरगाह से, और अभी सैलून में हूँ और गाना सुन रहा हूँ, कैसी हो आप? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है नूर आलम जी की तरफ से, और बादरपुर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है यारा ओ यारा, और सिंगर देवी की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रमझम 90.4 FM में।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रुमझिम 90.4 FM में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी की गर्लफ्रेंड को बीबी समझने वालों दोस्त जरा ध्यान से, बचपन में हम भी यूरिया को चीनी समझते थे। ये शायरी जो मेरे लिए भेजे थे उनके लिए है। और यहाँ पे जो कि और सन्यासी जी का ये लाइन शमशाद अली जी के लिए है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सागिर आलम अंसारी फ्रॉम असम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि विजय सिंह गुरमहा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि अर्ज किया है गुजर रहे हैं आज हम उस मुकाम से, लोग छोड़ रहे हैं साथ जरा से जुकाम से। और मैसेज करने वाले हैं, लिख रहे हैं हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, राजसो लाल से लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत

स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, नाम है अखिलेश मेहताब, इसरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं और हमारा मैसेज लग रहा हमारा मैसेज लागा था भीड़ में खो गई बात, तनी खोज के पढ़ देम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका मैसेज खोया नहीं है और आपके मैसेज को शामिल कर लिए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए लिख रहे हैं, मैम मेरा नाम दिलीप शर्मा है और खेम मटिहानी सिपाया से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, और पहली बार जुड़ा हुआ है, प्लीज़ गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपके भी गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, न्याय पारा विरई जिला वालों छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज कुमार, सरोज भाई ठाकुर, इसर राज पप्पू ठाकुर, इंकलाब मुंबई मूवी का गाना सुनना है। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि, गुड आफ्टरनून सोनी जी, और मुझे गाना सुनना है, अनूप कुमार खरवार हजियापुर गोपालगंज बिहार से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है तुम दिल की धड़कन में रहती हो, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग धड़कन मूवी से, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। और लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, अनूप कुमार खरवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि ग्राम बिरई से मुरली साहू, आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप लोग एक ही नंबर से कितने लोग जुड़ते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, और कंफ्यूज कर देते हैं मुझे, और इसमें परेशानी भी होती है कि किन का गाना बजाई हूँ किन का नहीं बजाई हूँ। अगर अलग अलग नंबर से करते तो ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुंची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो
0: नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। लंच हो गया?
0: जी अभी नहीं, मेरा 2:15 के बाद ही लंच होता है।
1: मुझे एक गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: ये पागल दिल मेरा हर पल तुमको आवाज दे।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ सुनूंगी ना, सभी लोग मिलकर सुनेंगे, इतने रेडियो के लोग सुनते हैं।
0: तो आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक्स।
0: वेलकम।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।

0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मत सताओ हमें, सताए हुए हैं हम, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं हम, खिलौना समझकर ना खेलो हमसे, हम भी इस खुद के बनाए हुए हैं। और हम नाइस सॉन्ग और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी। तो यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो मैम, मैं लकड़ी दरगाह से, और एक गाना बजा दीजिएगा मेरा भी अपने पसंद से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो मैं अपने पसंद से तो रोज़ गाना प्ले करती हूँ ना, फर्स्ट सॉन्ग मेरा ही बजता है। तो आप ही बता दें अपनी पसंद से कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्ते भारती मैम, मैं जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार शो से जुड़ गया हूँ और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जो कि जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि महंगी है तू कोहिनूर से भी, खूबसूरत है तू हूर से भी, दूर से दिखते हैं चांद में दाग मगर बेदाग है तू दूर से भी। भारती जी आप सब आरजी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइन के लिए आपको भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से और लिख रहे हैं कि बच्चा रामायण देख रहा था, ताड़का राक्षसी को देखते बच्चा बोला ये कौन है, मम्मी बोली बेटा तुम्हारी बुआ, पापा बोले बेटा तुम्हारी मौसी, बस रामायण खत्म और महाभारत शुरू। बात ही कुछ ऐसी है कि रामायण खत्म करने के बाद महाभारत तो जरूर शुरू होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है दिलीप शर्मा जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और खेसारी लाल की आवाज़ में गाना सुनना है और गाने की बोल है डोली में गोली मार दे, और सुनवाना चाहते हैं दोस्तों को पप्पू यादव, समर कुमार, बिपिन, अक्षय, अभय, शशिकांत को, और मेरा भी गाना सुनवा दीजिए, पहली बार जुड़े हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग गाना सुन रहे थे दिलीप शर्मा जी की तरफ से, जहिया आई बरात डोली में गोली मार दे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेज पहुँच गया, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं कि दर्द भी वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो कहा लगाने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। और दिलीप शर्मा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मोतिहारी से एमडी मीनू जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्ते मैम, सूर्यभान सिंह सुंदरी घुरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, और पहली बार जुड़े हैं और मुझे भी गाना सुनना है। आकाशवाणी वाराणसी का नियमित श्रोता हूँ और गाना यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अली भाई, मेरी ज़िंदगी में रौनक की वजह हो तुम, मेरे ख्वाब में परियों की जगह हो तुम, जिस आईने में खुद को रोज संवारती हो तुम, उस आईने की खूबसूरती की वजह हो तुम। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है शमशाद अली जी की तरफ से, और यहाँ पे जो कि अगली गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और काफ़ी आज खूबसूरत खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है हमारे पास, और 90s के सारे सॉन्ग बज रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज आप सबके बीच जुड़ के। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गाना सुनना है सागिर आलम अंसारी जुड़े हुए हैं आसाम से, और गाना सुनना चाहते हैं, गाने की बोल है सुन साहिबा सुन, और डेडिकेट करना चाहते हैं दिलीप राम सन्यासी जी को, सन्यासी रंजन बाबा को और उत्तम सोनी जी को। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि दिलीप राम जी की तरफ से पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं कि मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जगती आँखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं, जरूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले, मुस्कुराती आँखों में भी सैलाब होते हैं। भारती जी नमस्कार, हम भी प्रेजेंट हो गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और भी काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है इनकी तरफ से, और लिख रहे हैं कि मुंह की बात सुनकर कोई दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ के बाजार में खामोशी पहचाने कौन, सदियों सदियों वही तमाशा, रास्ता रास्ता लंबी खोज, लेकिन जब हम मिल जाते हैं खो जाते हैं जाने कौन। भारती जी आपके लिए दिलीप राम दिल्ली से। और लिख रहे हैं कि कोई छुपाता है कोई बताता है, कोई रुलाता है तो कोई हंसाता है, प्यार तो हर किसी को ही किसी ना किसी से हो जाता है, फर्क तो इतना है कि कोई अजमाता है और कोई निभाता है। सागर भैया सॉन्ग सुपर दिलीप राम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी। और यहाँ पे हमारे पास गाने की जो कि फरमाइश पहुँची हुई है सूर्यभान सिंह जी की तरफ से, और गाना सुनना चाहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि गाने की बोल है घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: श्रोताओ आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: Tribute to Major Dhyanchand and salutes dedication of sports persons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज़्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज़्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज़्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित

0: किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88718, 011-230-88719 और 011-230-12113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31-6807, +977-970-910-7500 और +979-81-032-6117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86-18-51-42-84-905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुनी से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमरीकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमरीका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
4: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
6: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
7: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
6: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे
11: घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
12: संपर्क करे 9939365923।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम।

0: सजन जाए लेकर जिया ले सुई लगे तो निकले पिया हाय रे बंगले के पीछे तेरी फेरी के नीचे हाय रे पिया।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे हर शुक्रवार को है फ्री OPD तो देर किस बात की आज ही संपर्क करें।
2: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा क्या करूँ।
2: अब चिंता छोड़िए गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक जहाँ दांत जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत रूट कैनाल चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765

0: 7:50।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, इज्जत के बिना मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, रेडियो रंजन फैन क्लब मुरादाबाद के, मुरादाबाद से शमशाद अली, और लिख रहा है कि पुलिस पप्पू तूने एक ही दुकान में 3 बार चोरी क्यों की? पप्पू साहब, चोरी तो बस 1 बार की थी, बाकी 2 बार गर्लफ्रेंड के कहने पर कलर और साइज बदलने गया था। पुलिस तो फिर 4थी बार क्यों जा रहा था? पप्पू क्या बताओ साहब, अब उसे दुकान का मालिक ही पसंद आ गया है, अब उसे ही चुराने जा रहा था। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं फिर से शमशाद जी, तो बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हर हर महादेव, सोने जी हम शंभू यादव पुलिस लाइन से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मेरे साथ ही हैं दिलीप जी सना जी और ममता जी, प्रतीक्षा जी, रीना जी, वुवर रंजन जी, और हर हर महादेव भारती जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, राधे राधे पाजी यूपी चौवन से जुड़े हुए हैं, मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं, हेलो भारती जी राम राम, मैं दिलीप कुमार गुप्ता पगवारा पंजाब से, और मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, और काफ़ी दिन हो गए गाना सुने मुझे तो। और यहाँ काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और गाने की बोल है आपके प्यार में हम सवरने लगे, और बहुत ही खूबसूरत गाना है।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे डिंपल जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अलका याग्निक की आवाज में राज मूवी से, और गाने की बोल थी आपके प्यार में हम सवरने लगे। और यहाँ पे डिंपल जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहा है थैंक्स गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग। और संजय यादव दुबई से जुड़े हुए हैं, इनके तरफ से भी मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मैम।

और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है रोहित जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, दर्द देना उसका दस्तूर हो गया है, उनकी चाहत में एक दिल मजबूर हो गया है, कसूर उनका नहीं हमारा ही था, हमने चाहा ही उनको इतना कि उनको गुरूर हो गया है, आपके प्यार में हम सवरने लगे, सुपर सॉन्ग लाजवाब मस्त सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, राज फिल्म के गीत की फरमाइश करने के लिए डिंपल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यह बहुत ही प्यारा गीत है, सूर्यभान सिंह विशुंधरी घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी गुड आफ्टरनून, हम श्री राम सासाराम टू दिल्ली से जुड़ गए हैं और मेरा भी फरमाइश है, प्ले कर दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, बंजारी बजाजी रोड लालगंज

0: और इसी के साथ हमारे बीच जुड़ चुकी है मनोरमा जी, जो कि यहाँ पे और बजाजी रोड लालगंज से एमडी नौसाद और एमडी सदाम और भी गाना सुनना चाहते हैं, और एमडी निसार और एमडी रिजवान और अभिनंदन टेलर भी जुड़े हुए हैं साथ में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ये सारी गिफ्ट मिलल बा हमके पवन सिंह की आवाज़ में, भारती मैम हमरा के गाना बजवा दी, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और आपका भी गाना प्ले होगा, और उससे पहले यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम गोल्डन टेलर, हर हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा, हमको एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: गुड आफ्टरनून मैम, हम गोल्डन टेलर तीन फेड़िया से, हम भी शो से जुड़ गए, हमको एक गाना सुनना था, तो फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, टाइटल सॉन्ग भी वही है, पहली पहली बार मिलाता है कोई, सीने में फिर आग लगाता है कोई, और ये गाना जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले सोता है सबको सुनवाना चाहता हूँ।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, भारती जी मेरा फरमाइश कितना बजे तक बजेगा। और मैसेज करने वाले हैं

मैसेज करने वाले हैं श्री राम सासाराम से, और इन्होंने मैसेज किया भारती जी गुड आफ्टरनून, और इनका गाना है, गाने के बोल है ये सच है कि भगवान है। तो चलिए गाना एंजॉय करते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे श्री राम जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ ये मैसेज पहुंच गया इनकी तरफ से जो कि लिख रहे भारती जी गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपको। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि मेरे कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ और जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, और डिंपल कुमार गुप्ता जी की तरफ से मैसेज आया हुआ है, और ग्यास सा और महेश सा, संदीप, हरिलाल और मोनू जी जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मनोरमा जी शामिल करेंगी।
1: और यहाँ पे अगला मैसेज है जो कि लिख रहे हैं संजय यादव जी दुबई से, और लिख रहे हैं मनोरमा मैम नमस्ते जी, तो नमस्ते आपको भी। और यहाँ पे बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। जो कि ये अगला मैसेज है गणेश कुमार जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया हाय हाय भारती दीदी गुड आफ्टरनून, मेरा नाम करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, क्या हाल बा दीदी जी, तो बिल्कुल बढ़िया बा। और इन्होंने मैसेज किया है कहाँ रनी है मनोरमा जी, तो अपन अपन काम में लगा रनी है सन। और यहाँ पे अगला मैसेज है धर्मेंद्र कुमार जी की तरफ से, और इन्होंने लिखा है हाय मैं धर्मेंद्र कुशवाहा, और मुझे सॉन्ग सुनना है। ये धर्मेंद्र जी हैं देवरिया यूपी से, और इनको सॉन्ग सुनना है एक दिल है, तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं।
2: फिल्मी गाने

0: टू एंजॉय।
1: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, मैं राहुल कुमार, मैं भी जुड़ चुका हूँ आपकी शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी फिर आपके पास जुड़ गए हैं, सो कैसा चला बताइए ज़रूर। और लिख रहे हैं कि दोस्ती वो नहीं जो जान देती है,

अभी हम लोग सुन रहे थे निकाह मूवी से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और मैसेज करने वाले थे नौशाद लालगंज से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए। और साथ में एमडी मोहम्मद केरला से भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

0: और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सूरज के सामने रात नहीं होती, सितारों से दिल की बात नहीं होती। सूरज के सामने रात नहीं होती, सितारों से दिल की बात नहीं होती। जिन दोस्तों को हम दिल से चाहते हैं, न जाने क्यों उनसे मुलाकात नहीं होती। और बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुंचा हुआ है हमारे पास धनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, उससे पहले कॉल लेंगे। और कॉल की तरफ से भी फरमाइश पहुंची हुई है। हेलो,
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: गाना सिंह है मैम।
0: जी नाम बता दीजिएगा अपना। जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: कंकड़िया मार के जगाया वो तालिमा।
0: कौन सा?
1: कंकड़िया मार के जगाया, पुराना सॉन्ग है मैम।
0: कंकड़िया मार के
1: जगाया वो तालिमा।
0: और गाना सुनाना भी है
1: सभी श्रोता को।
0: तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं
1: जी मैम, थैंक
0: यू। तो एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में अपना गाना।
2: शिमारू फिल्मी गाने के सारे अब

0: लोग सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, कंकरिया मार के जगाया बालमा, तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि रफ़ीक जी की तरफ से पहुँचा हुआ है, और हाय लिख रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पाजी की मैम टाइम है, मेरा भी गाना बज जाएगा, तो स्वागत है आपका भी। और आपका गाना आज नहीं बजा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: हाँ।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: प्रीति कुशवाहा।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: ब्रॉली से।
0: जी जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: ताल से ताल मिलाओ।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ।
0: तो बता दीजिए
1: क्या
0: गाना, अगर किसी को सुनाना भी चाहती हैं तो बता दीजिए।
2: नाम बताओ।
1: किसको सुनाना है? सुनना है।
0: अच्छा जी, तो चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

अभी हम लोग सुन रहे थे प्रीति कुशवाहा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और सिंगर है उदित नारायण, और अलका याग्नि, और गाने की बोल थी ताल से ताल मिला, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं पाजी कि मुझे पता था आप नहीं बजाइएगा, तो आपको जब पता था तो फिर पूछ ही क्यों रहे थे, और आपके गाने को उसी दिन बजाएंगे जिस दिन बजता है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शिवम यादव लकड़ी दरगाह से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना सुनना चाहते हैं मेरी। लिखे हैं कि मैडम जी आप अपनी पसंद से गाना प्ले कर दीजिएगा, तो चलिए आज अपनी पसंद से गाने को प्ले करते हुए आज लूँगी आप सभी से विदा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7276196। तो चलिए आप सभी के लिए आज बस इतना ही, और आप सभी से लूंगी विदा, और आप सुने ये मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग, और गाने की बोल है अगर तुम मिल जाओ। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
7: All right.

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर अपने

0: घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: 9.4
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: रेडियो रिमझिम
1: सुनो दिल से ना pick it up
2: hello
1: ना pick your phone up
2: hello
1: pick it up
2: hello
1: ना pick your phone up

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: पठानपट्टी सुपर गेम खुशी।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक हूँ, आपने बताइए।
1: हम सब भी अच्छे हैं।
2: नाश्ता वास्ता हो गया?
1: हाँ, नाश्ता करके आते हैं। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं?
2: कुछ मोनी लगा रहे थे।
1: अच्छा, कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: शाहरुख खान का बता दीजिएगा, हिंदी सॉन्ग।
1: शाहरुख खान का तो हिंदी सॉन्ग बहुत सारा। अच्छा अच्छा है, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: तूने जो परफॉर्म मेरी जान, तुझे मर मिट जाऊंगा, वही वाला।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है,
2: हाँ वही।
1: ओके, तो गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या खैरियत है?
1: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। खाना पीना हो गया?
1: जी, खाना पीना तो हो गया है, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ मैम, एक गाना सुनना था।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: ये जो नहीं है दिल के और मासूम बह गए, नया अगर निकला है।
1: नया सॉन्ग दिल के और मासूम बह गए?
0: हाँ
1: ये तो मतलब पुराना सॉन्ग है, फिर से इसको नया किया गया है?
0: हाँ नया सॉन्ग है।
1: अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी और इसी को बजा लूंगी। ओके,
0: हाँ
1: और गाना सुनाना भी है?
0: हाँ, सबसे पहले आपको और जितना रेडियो भी सुन रहे हैं सबको।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं,
0: ठीक है मैम।
1: सुनते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।

0: में?
1: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
0: बिल्कुल मैम, बता दीजिए गाने की।
1: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ, वेस्ट मुंबई से। मैं गोपालगंज के रहने वाला हूँ।
0: आज बहुत दिनों बाद।
1: जी मैम, थोड़ा टाइम नहीं मिलता था इसी के लिए।
0: अच्छा जी,
1: मुझे गाना सुनना है। कोई भी गाना अच्छा देखकर सुना दीजिए।
0: अच्छा, कोई भी गाना आज?
1: अच्छा ये गाना सुना लीजिए मैम, रब जैसा रूप तुम्हारा देता है दिल को सहारा, ये गाना।
0: और गाना सुनाएंगे भी किसी को?
1: हाँ जी, सबसे पहले आपको, मासूम, कौशर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौशाद भाई, साकी भाई, फरहान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लकी भाई, रुबीना जी, दीदी जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी, गुलशन जी, रोशनी जी, सलेहा जी, अफरीन जी, अरीसा को।
0: अच्छा जी, तो गाना प्ले करें
1: जी।
0: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: भारती मैम बोल रही था मैम?
0: हाँ
1: जी मैम, बहुत अच्छा
0: जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमिशन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: वर्मा कुमार बोल रहे हैं कलामटिया से।
0: हाँ जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है जी, हालचाल अपना सुनाई।
0: मेरा भी ठीक है।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा था?
0: गोपालगंज के तो मौसम अभी ठीक बाबे।
1: गर्मी कैसे हो? मेरे तो बहुत धूप निकल रहा है पंजाब में अंदर।
0: अच्छा ना, इन्हें तनिक धूप नहीं है और थोड़ा थोड़ा गर्मी बा।
1: अच्छा जी। गाना सुनने के बाद गाना कॉल लगाओ तनिक गाना सुना दी हमने को
0: बता दें।
1: अपने पसंद के सुना दे
0: हम तो रोज सुनाबे करने रहो लोग इनके आपका पसंद दिन भर तो हम
1: फरमाइशी तो हमको बना करी ला रहे सुना दे।
0: अच्छा तो कर दिया आज
1: गाना अपने पसंद से सुना दे।
0: आज हमारा रघु पसंद के सुने के बाबे।
1: हमारा पसंद के सुने के बा नहीं रघु अपने पसंद के सुना दे। भोजपुरी बजा दे
0: भोजपुरी।
1: हाँ जी
0: रघु बताई ना आज हम कहा तो बनी रहुआ बताए तब हम सुना।
1: आज हम मतलब तो रहुआ सुना है।
0: हाँ
1: भोजपुरी में बजा दे कौनो हमारा कौनो सब अच्छा बात है उतना खराब भी ना।
0: अच्छा
1: खेसारी लाल के गाना बजा दे।
0: खेसारी लाल के ठीक बा।
1: और भारती के नंबर नहीं लगा लगा तो उठाओ नहीं हुआ के नहीं का प्रोग्राम में
0: हम तो भारतीय बोला था।
1: अगर रवि नंबर तो एक नंबर बाई 6516 वाला जो कॉल के माध्यम से तो नंबर बा का नाम बा
0: वो हम ही चलावे।
1: अगर रवि चलाई ली तो कॉल के माध्यम से लगा देता तो कॉल रिसीव नहीं करो
0: तो कॉल
1: तो प्रोग्राम तो रोज रोज चलेगा प्रोग्राम न। अच्छा जी इतना तो हम रेडियो सुन नाम भी नहीं मालूम राहुल नाम बा की केकर नाम बा इसीलिए हमारा नाम मालूम चल रहा है। नहीं जी
0: ना इसमें हम कबू कबू मतलब हम रिकॉर्ड करें नहीं लेकिन ज्यादातर उसमें हम ही रहे।
1: अच्छा जी। अच्छा वहाँ के छुट्टी बा
0: ना? वहाँ के छुट्टी नहीं है वहाँ के ही जीवन।
1: ठीक है तो गाना सुना दे खेसारी लाल के रेडियो सुनने वाला के सबके रघुरा खातिर तीन आदमी के।
0: ठीक बाबा तो गाना प्ले करते नहीं।
1: हाँ जी कब तक सुना शाम के बाजी की कल बाजी?
0: आज ना तो कल तो बजबे करी यही दो दिन में बाजी।
1: अच्छा खेसारी लाल के बजाये गाना।
0: ठीक बा
1: ठीक बा
0: सुना रही रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
6: जी मैं सुधीर कर रहा हूँ, कोरी निवाज जिला देवघर झारखंड से मैम।
5: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
5: हम भी ठीक हैं।
6: और आप रेडियो रंजीम के जितने आरजे सर हैं कैसे हैं?
5: सब कुछ अच्छा
6: है। आज सुना दीजिए मैम, रक्षाबंधन का गाना।
5: गाने की बोल बता दीजिए।
6: भोजपुरी फिल्म का एक गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, इसके बोल हैं रखिया बंधा ले भैया सावन आइल, इसके बोल हैं।
5: और गाना सुनाना भी है
6: जी। सबसे पहले मैं आपको रेडियो रंजन के जितने भी लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
5: बिल्कुल जी, तो गाना प्ले करते हैं
6: जी मैम।
5: सुनते रहिए रेडियो रंजन 91.4 FM।
6: थैंक यू मैम।

0: नमस्ते
1: मैम, राधे श्याम रसिया, रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं हमारा तरफ से पकिया।
0: जी जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी तो कदम बढ़ाते हैं फरमाइश की तरफ।
0: बिल्कुल,
1: वो तिरंगा फिल्म का गाना है, इसे समझो न रेशम के तार भैया, यही गाना सुनना है।
0: जी और गाना सुनाना भी है।
1: जी सबसे पहले आपको और रेडियो रिमझिम के सुपर स्टार फैन है हुस्नियारा मलिक है, संतरा कुशवाहा जी है, और सभी गोपालगंज जिला वासियों को, सिवान जिला वासियों को, और हम अपने पूरे परिवार के साथ सुनेंगे।
0: ओके जी, तो गाना प्ले करते हैं।
1: बिल्कुल प्ले कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार भारती जी।
3: नमस्कार।
2: समाचार बा?
3: समाचार सर ठीक है बा।
2: काहे आवाज बोछा लेता नहीं दी?
3: थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है।
2: एगो गाना बाटे फोटो छलिया के, अलग मिठैया बा, अलग अलग बा मिठैया, अलगे बाटे रखिया बहिन हमारा, ऐसे ही कुछ गाना बाटे। कर द्वारा गाना बाटे राखी
3: छोटो
2: छोटो छलिया।
3: अच्छा, गाना सुना बा?
2: गाना तो सबसे पहले रुआ का सुनावे के बा, ओकरा बाद बानी सोनू भाई, सभी भाई बानी महबूब वाला मुस्तफा गुलाम जी, राम कुमार पांडे भैया जी हैं और अक्सरी जी हैं, अमर भाई हैं, कुशल जी, सभी अंसारी जी, तो तमाम श्रोता का गाना सुनिए उन सभी को। गाना देते
3: नमस्कार। नमस्कार, गाना सुनते रहें रेडियो रेंज 91।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, ग्राम सामरबो तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। आज ही का दिन है, बोल रहा था कार्यक्रम। जी पहली बार लगाया हूँ फोन, आज ही सुना हूँ मैंने ये कार्यक्रम।
0: अच्छा,
1: कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
1: जी जी,
0: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
1: ब्लैकमेल का है, पल पल दिल के पास।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: गुनगुनाना नहीं आता वैसे, मगर फिर भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। जी जी,
0: इतना अच्छा तो गा रहे हैं।
1: ठीक है, ऐसे ही आ जाता है थोड़ा सा।
0: आप अच्छा गा रहे हैं सच्ची में।
1: जी
0: अच्छा गा रहे हैं आप।
1: अच्छा अच्छा जी, थैंक यू।
0: और गाना ये सुनवाना चाहते हैं किसी को?
1: जो रंजन में जो सुनते हैं उन सभी के लिए रहेगा बहन जी, और आपके लिए।
0: जी जी बिल्कुल, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: जी जी, थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, सलाम मैम।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम, कैसे हैं? हम सफरोज अली गोपालगंज से।
5: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: जी हम भी अच्छे हैं, लेकिन आपका आवाज कुछ चेंज लग रहा है, लगता है आपका तबीयत सही नहीं है मैम।
5: हाँ थोड़ा सा तो है,
6: लेकिन ये बता सकते हैं कि भारती मैम बोल रही है? फिर भी आप ही रिकॉर्डिंग कर रही है, मनोरमा मैम नहीं है आज?
5: है मनोरमा मैम।
6: आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गए मैम, हम लगाते लगाते कॉल
5: आधा घंटा लेट है,
6: तो आज तो नहीं चलेगा।
5: देखिए आज नहीं तो कल चल ही जाएगा, क्योंकि सारा कॉल मैं ही रिकॉर्ड करूंगी।
6: अच्छा, आज सब आप ही करेंगी? मैम उस सोमवार वाला वो मनोरमा मैम रिकॉर्ड की थी क्या आधा के बाद, क्योंकि सुन रहे थे और रात में 12 बजे चलता है रिपीट हेलो माय चॉइस का, सुन रहे थे हम, 12 बजे चल रहा था।
5: अच्छा,
6: तो आज हमें 11 सा गाना सुनवाइए।
5: बता दीजिए
6: जी, गाने का नाम है मोहब्बत से ज्यादा।
5: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
6: गाना है
5: बोल रहे हैं, गाना सुनाना है।
6: सुनाना है आपको, सभी आरजे को, जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को।
5: तो अब अभी क्या?
6: अभी तो मैम हम स्टेशन जा ही रहे थे, तब तक सोचे कि बात कर ले आपसे।
5: अच्छा, तो छपटा से निकल रहे हैं कि?
6: जी मैम हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो सोचे कि इसी टाइम में मिल रहा है तो टाइम में बात कर ले और गाना का फरमाइश कर दे।
5: चलिए, वहाँ का काम खत्म हो गया?
6: जी मैम काम तो खत्म हो गया, इसलिए सोचे निकल जाए। अपना गोपालगंज का बहुत ज्यादा याद आ रहा है, गोपालगंज जैसा तो कोई मतलब जिला ही नहीं है,
5: कहीं लगता ही नहीं। अच्छा
6: जी मैम, कहीं अच्छा नहीं लगता है गोपालगंज के अलावा, गोपालगंज तो बात ही अलग। कहीं भी रहते हैं मैम, रेडियो को सुनते रहते हैं और आप लोगों से बात करते रहते हैं। जी मैम, तो गाना फुल सुनाइएगा, बहुत अच्छा गाना है।
5: जी बहुत अच्छा गाना है, सुना दूंगी।
6: आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं।
5: अच्छा लगेगा क्यों नहीं, गाना ही अच्छा है इतना।
6: जी मैम एडवांस धन्यवाद, आज मनोरमा मैम से बात हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रहा है आजकल।
5: होगा फिर कभी।
6: जी मैम धन्यवाद, बाय बाय मैम।
5: ओके बाय बाय, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
6: ओके मैम।

0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करे 87894 18744।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
16: नमस्ते दीदी।
15: नमस्ते, क्या हाल चाल?
16: क्या हाल चाल?
15: हमारा बढ़िया, आप बताइए।
16: हम ठीक बाटे, यार सब ठीक बा ना?
15: हमारा ठीक बा है। खाना हो गया का?
16: हाँ, रात हो गई।
15: हम तो खाना खा के आए नहीं अब घर से, अब एज लेके आए नहीं सन, तो 1-2 बजे के आसपास खानी सन।
16: ठीक है, तो नहीं हम कहाँ से बोलते हैं?
15: करिश्मा बोल रहे हैं।
16: अच्छा, चीन गए? हाँ,
15: पहचाना तो नहीं।
16: चलिए, पहचाने की चाहिए। चल, गाना सुना पड़े हमारे।
15: बता दी कौन सा गाना?
16: मिल्खा सिंह ये कौन सुना दी?
15: अपना पसंद से तब नो।
16: अच्छा, रहुआ पसंद से सुने?
15: अच्छा, भोजपुरी में तो उतना हम सुन ले नहीं की, तो हमारा बुझेबे ना कर ला रोल
16: बताए। कौन में बजा दी? चाहे भाई कौन बजा दी?
15: अच्छा,
16: भैया फोन करे रहे हम का। ठीक बा,
15: डेडिकेट भी बा।
16: हाँ, डेडिकेट सबसे पहले दरवा के रह, हमारा जितना सुनते ही लग
17: से जान पहचान हो
15: गई
17: पूछे खूब बढ़िया से जानता नहीं।
15: और सब घर में सब क्यों ठीक बानो?
16: हाँ, सब क्यों ठीक में, घर में
15: हमने ठीक बनी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं डॉक्टर अमोद मरवाहा, ग्राम जय क्षेत्र जिला उत्तर बोल रहा हूँ
1: जी। क्या हाल चाल है आपका?
0: क्या है मैम?
1: मेरा भी अच्छा है।
0: और मौसम है आप उधर का?
1: मेरे यहाँ का मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
0: हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, अभी सुबह में बारिश हुई है।
1: अच्छा, इधर भी हुआ है हल्का हल्का बारिश सुबह में 9 बजे से।
0: जी जी, हमारे यहाँ उस समय ही बारिश हो रही थी 9 बजे करीब। इस समय थोड़ा सा बारिश बंद है, मौसम ऐसा सुहाना बना हुआ है।
1: जी जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना सुनवा दिए तुम्हें देखे मेरी आंखें अमेरिका।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: बस आपको और पूरे रिंजिम के जितने भी श्रोता है सभी को, रिंजिम और पूरे परिवार सभी को सुना दीजिए।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87-894-18744।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: Pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हाँ हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
17: हेलो,
18: हाँ जी बोलिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
17: हाँ ठीक है मैम, अपना सुनाइए।
18: मेरा भी ठीक है।
17: गाना सुना दो।
18: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
17: नदिया के पार का कोई सॉन्ग बजा दीजिए।
18: नदिया के पार का कौन सा सॉन्ग?
17: बबुआ हो बबुआ।
18: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है? बता दीजिए किसको।
17: हमारे यहाँ काम करते हैं हमारे वीरेंद्र जी है, राजू जी है, मनोज जी है, विजय जी है और भी सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी भाई बंधु।
18: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: हम थावर से रामाजी प्रसाद, राजन मार्केट से।
1: जी जी,
0: आज देखो बारिश भइल है कि ना?
1: हाँ हाँ, बारिश से ना भइल है, 9 बजे
0: से भइल है बारिश, नगर पानी गिरल है आज। फिर तो हाउस हो गई, बारिश गिरा बाद फिर बुझाते अंदर से हाउस बा।
1: अभी तो पूरा तरह से धरती गीला नहीं है ना भइल, अभी तो उमस होखबे करी।
0: हाँ हाँ, गाना सुना दी।
1: बता दी कौन सा गाना सुने?
0: झूमे जैसे मनवा नाचे मोर।
1: अच्छा, और गाना क्यों के सुनाहूं के बा?
0: जितना लोग सुनते सब कुछ सुने, हम सुने, रवा सुने।
1: चले ठीक, और सब ठीक बा नो?
0: हाँ सब ठीक बा।
1: तो फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे
0: सुनते। 5 बजे तो सुनते रहला।
1: हाँ हाँ।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 99393-65923।
7: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: जी मैडम नमस्कार।
9: नमस्कार,
10: कमलेश बोल रहे हैं हरक कुमार।
9: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
10: ठीक है मैडम, आप लोग का आशीर्वाद अच्छा है मैडम, लेकिन आज काम उम नहीं चल रहा है, ठंडा मौसम है, बारिश हुआ है थोड़ा सा।
9: मौसम तो ठंडा हुआ है।
10: हाँ बहुत ठंडा हुआ है। अच्छा है
9: तो नाश्ता हो गया है आपका?
10: जी मैडम हो गया है, बैठे हुए हैं, गाना सुनना चाहते हैं।
9: अच्छा बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
10: वो गाना नहीं है बिटवा भूल ना जाना, कोई गाना सुनना चाहते हैं मैडम।
9: किसको डेडिकेट भी है?
10: हमारे साथ में पवन जी है, धनंजय पासी है, उनको सुनाना चाहता हूँ, जितना लोग सुन रहे हैं सब किसी के साथ और आपको भी।
9: अच्छा जी, लगता है कहीं किसी पेड़ के पास बैठे हैं, चिड़ियों की बहुत चहचहाट आ रही है,
10: ठंडा मौसम है, अभी जामुन के पास में बैठे हैं।
9: तो गाना प्ले करते हैं?
10: जी मैडम।
9: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
10: नमस्कार।
9: नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम 90.4
1: एफएम। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, हेलो,
1: क्या हो रहा है मैम?
0: जी कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं?
1: कुछ नहीं मैम, बस बैठे हैं।
0: अच्छा, तो नाश्ता हो गया आपका?
1: हाँ मेरा हो गया। आपका हो गया? मैम गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: मैम विदेशी मैम के गाना सुनना है।
0: कौन सा गाना?
1: काहे करे लो फोन यारो।
0: एक बार और बोल दीजिए, आवाज कट रहा है आपका।
1: विदेशी मैम का गाना सुनना है, काहे करे लो फोन यारो।
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: आपको और सारे, मतलब सारे सुनने वाले सुनता हूँ।
0: अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना।
1: गुड़िया कुमारी।
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: ठक ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: प्रसाद क्लिनिक।
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन।

0: हाँ हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
0: भाई मोहम्मद यूसुफ, अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला।
1: कैसे
0: हम
1: हो?
0: लोग हाँ, अभी तो मौसम सुबह में पानी इधर हुआ है। मौसम अभी बहुत अच्छा है, इधर सुहावना मौसम है।
1: चलिए अच्छा है।
0: हाँ, उधर गोपालगंज में
1: हाँ इधर भी हुआ है तो ठीक है मौसम अभी।
0: हाँ मौसम ठंडा है। बड़ी व्यस्त बता रहा है आपका मोबाइल।
1: अच्छा
0: हाँ, पाकिस्तान सुनिए ना, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना आसान है, आपके यहाँ फोन लगाना आसान नहीं है।
1: अभी तो कॉल
0: 1 घंटा पेड़ते रहिए तो अब जाके पकड़ता है।
1: अभी तो कॉल कटा तो तुरंत आपका कॉल आया।
0: हाँ, तो बड़ी देर से लगा रहे थे ना।
1: कॉल ज्यादा ही हो जा रहा है,
0: बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। कस्टमर इतना ना बढ़ गया है, पूरा बहुत लोग जुट गए हैं आपके साथ है।
1: जी
0: आप लोगों का जो आवाज है आपका, और तो बहुत सोनी का बहुत अच्छा आवाज है। आप भारती जी बोल रहे हैं ना?
1: हाँ हाँ
0: हाँ, तो आप दोनों अभी बेमिसाल हैं।
1: जी सब आप सबकी कृपा है।
0: हाँ, बहुत सुंदर बहुत मीठा आवाज आप लोग दोनों आदमी को, हमको समझ में ना आता है कि कौन बोल रहे हैं।
1: अच्छा
0: सेम एकदम एक आवाज में,
1: कभी कभी हो जाता है।
0: हाँ, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको गाना सुनाइएगा,
1: बता दीजिए।
0: बांसुरिया यही पुकारे।
1: अच्छा, किसी को डेडिकेट भी है?
0: अपना मेडिकल के सभी स्टाफ और खास करके आपको और कन्हैया प्रसाद जो फौजी से रिटायर किए हैं, वो आपका हरदम रेडियो सुनते रहता है, तो आ करके सुन के हमको बताते हैं दुकान पर।
1: अच्छा
0: कहते हैं कि आपका गाना, उधर हम व्यस्त हो गए थे कुछ दिन, कह रहे थे कि आपका परमेश्वर नहीं आ रहा है, अपने थोड़ा दूसरे काम में लगे हुए हैं, बिजी है, इसलिए नहीं आता है। तो बराबर सुन करके वही बताते हैं हमको, तो फुर्सत कम मिलता है, कभी सुन पाते हैं कभी नहीं सुन पाते हैं।
1: कोई तो सुनता है ना।
0: हाँ, इसलिए तो आपसे आप लोगों को और ये हमको इतना अच्छा लगता है कि हमको, इसलिए हम फोन लगाते हैं आप लोगों को।
1: चलिए
0: अब सोनी जी, और अब फिर आप अभी आ रहे हैं आप।
1: सोनी जी अब तो मतलब जाएंगी लाइव।
0: हाँ, वो लाइव में रहती हैं। उनका ड्यूटी चेंज हो गया है।
1: चलिए फिर रखते हैं।
0: हाँ ठीक है ठीक है, गाना सुनवाइएगा।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर एमपी से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस आज तो पहला ही कॉल लगता है हमारा ही शामिल हो गया मैम।
1: जी जी,
0: आज तो बहुत इंतजार भी नहीं करना पड़ा मैम।
1: हाँ हाँ, क्योंकि अभी जस्ट जैसे शुरू किया आपका कॉल आया।
0: जी जी जी जी मैम,
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: बस कुछ नहीं, आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम। वो तो काम तो अपना चल ही रहा, मशीन चला रहे थे जेसीबी, बस हम देखे अभी 11 बज गए, बस ट्राई किए, फोन भी लग गया मैम।
1: अच्छा जी, चलिए तब बढ़िया है। बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: और गाना चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

0: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
10: अचानक दौरा पड़ा और सारा माहौल अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने लगा, प्योर अंग्रेजी।
11: ओह, सीरियस, वेरी सीरियस। नर्स दिखलाइए।
10: नर्स घर पर है।
11: व्हाट?
10: आई मीन बीवी घर पर है। दरअसल डॉक्टर दौरा मुझे नहीं, मेरी बीवी को पड़ा है। शी हैज बिकम वायलेंट टू एवरीबॉडी, काटने को दौड़ रही है।
11: भौंकती भी है?
10: फिलहाल नहीं, हो सकता आगे चलकर पंजे भी मारने लगे। जल्दी कीजिए डॉक्टर, प्लीज। मैं सिर्फ निहायत खतरनाक हालत में अपनी सिस्टर के भरोसे छोड़कर आया हूँ।
11: ठहरिए ठहरिए, केस हिस्ट्री हो गई। आप केस की ज्योग्राफी भी बताइए। जी हाँ, बहुत जरूरी है।
10: आप चलिए तो डॉक्टर, मैं ज्योग्राफी क्या केस की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तक बता दूंगा। प्लीज डॉक्टर,
11: केस हाथ में लेने से पहले उसकी ज्योग्राफी जानना निहायत जरूरी है मिस्टर कुमार। इससे औजार साथ ले चलने में काफी मदद मिलेगी।
10: आप डॉक्टर नहीं है, कारपेंटर। प्लीज डॉक्टर, औजार हथियार छोड़िए, मुझे बीवी की अलमारी नहीं बनवानी, इलाज कराना है।
11: ज्योग्राफी बहुत जरूरी है।
10: तो यूं समझ लीजिए डॉक्टर, कि कपड़े तब्दील करके मेरी बीवी ने हाई हील सैंडल पहना।
11: करेक्ट।
10: जिसकी हील का एंगल 22.5 डिग्री NW है। फिर उसने कोट पहना जिसके बटनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। हमें पहले घर से 1 किलोमीटर साउथ वेस्ट मंदिर जाना था, फिर सड़क से 47 डिग्री कर्व लेकर बाजार जाना था जो समंदर की सतह से 1200 फीट ऊपर स्थित है और जहां पसीना भरी हवाएं चाड़े में भी चलती हैं। और कुछ
11: शाबाश शाबाश, कहते चलो हाँ, कहते चलो।
10: अभी मैं घर के दरवाजे को ताला लगा ही रहा था
11: हाँ।
10: कि अचानक मेरी सीधी सादी घरेलू टाइप की बीवी पर दौरा पड़ा और वो कमबख्त सब कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लगी। बोली,
12: हम कैबरे देखने चल रहे हैं ना।
10: और क्या आ? क्या कैबरे? रामकली, ये तुम क्या और फॉल बक रही हो?
12: देखो स्वीट हार्ट, जब से हम हॉलीवुड से लौटे हैं तब से इतने बिजी रहे कि कैबरिया डिनर पर भी नहीं जा सकी। मैं अपने शूटिंग प्रोग्राम में बिजी रही और तुम शिकार।
10: अरे ये तुझे क्या हो गया रामकली, तेरे बाप दादे कभी फिल्म कंपनी में नहीं रहे और ना ही मैंने कभी शिकार के नाम पर खटमल तक मारा है।
13: भैया ये मेरी भाभी को क्या हो गया? भैया
10: समझ में नहीं,
13: अभी अच्छी भली चौकी में साग छौंक रही थी, अचानक क्या हो गया?
10: अरे लगता है साग छौंकते वक्त कड़वे तेल की गैस चढ़ गई इसके दिमाग को। लौटा रामकली, हिंदी में लौटा।
12: Shut up, you brute.
10: क्यों?
12: ये लड़की कौन है? Your girlfriend.
10: अरे तेरा सत्यानाश है रामकली, ये तो क्या बोल रही है? अरे तेरी ननद है, ननद है, मेरी सगी बहन नानू।
12: ओ लवी, इंग्लिश में समझाओ ना, हम तुम्हारा डैम ननद फनंद कुछ नहीं समझते। कम ऑन स्वीटी।
13: बाप रे, भैया ये भाभी को कैसा दौरा पड़ा है?
10: अब देर करना ठीक नहीं है नू, नहीं तो डिक्शनरी खत्म होते तक ये चल बसेगी। देख तू इसे संभाल, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। दौरा भी जारी है डॉक्टर।
11: मिसेस कुमार, मिसेस कुमार नमस्ते।
12: हेलो डॉक, हाउ आर यू? ठीक से कब लौटे?
10: क्या
12: याद है ना कि न्यूयॉर्क में तुम डॉक्टरी शुरू करने से पहले भेड़े चराया करते थे?
11: भेड़े न्यूयॉर्क? बाप रे बाप, वेरी सीरियस।
12: तुम हमको भूल गए डॉक, तुम हॉलीवुड आए थे ना, हमारा तुम्हारा लव अफेयर भी चला था, फिर कुछ दिनों के लिए तुम पागल हो गए थे, हरी पत्तियां घास खा लेते।
11: लव अफेयर? बाबा रे, मेरी वाइफ सुन ले तो कितमास कर जाए। हम पागल हो गए थे, घास खाते थे? मिस्टर कुमार, शी इज वेरी सीरियस।
12: आओ डॉक्टर, हम ट्विस्ट करें। आओ भी, बरसों बाद मिले हैं। याद है ना तुम यूएनओ की बिल्डिंग के सामने रहते थे?
11: क्या कहा?
12: मैं भी वही थी।
10: अरे साहब झूठ बोल रही है डॉक्टर, यूएनओ नहीं, ये उन्नाव की रहने वाली है, इसका बाप आज भी कचहरी में नकल नवीस है।
11: करेक्ट।
10: ये आज जमाते पड़ी है। सही कह रहा हूँ डॉक्टर?
12: आई से यू शट अप डॉक्टर। डॉक्टर मेरी पिछड़ी हुई मोहब्बत है, कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट डार्लिंग। डॉक्टर के लिए जरा शैंपेन तो लाना।
10: अभी लाता हूँ।
12: रेमी केली की शूटिंग आज कैंसल।
11: रेमी केली? सारा केस इंग्लिश में है। मिस्टर कुमार, मैं खुद नर्वस हुआ जा रहा हूँ, पानी प्लीज।
10: डॉक्टर, इसका नाम रेमी केली नहीं, रामकली है।
11: यस,
10: डरो मत डॉक्टर, अपने औजार निकालो। मेरी रामकली लौटा, इतने दिमाग पर कैसी बिना सोडे के चढ़ी है, इसे देखो डॉग प्लीज।
12: आओ ना डॉग, लेट्स ट्विस्ट, कम ऑन।
11: मर गया
10: डॉक्टर,
11: ये तो मेरी तरफ बढ़ रही है, मैं चलता हूँ। इसके सिर पर ठंडा पानी डालो और कपड़े भी इसके ढीले कर दो और

0: हवा आने को खिड़की
1: खोल दो। आपके औजारों में थैला नहीं रहते डॉक्टर,
0: दवा खाने में पहुंचा दीजिएगा।
2: ओफ क्या करूं, ये अनु भी डर के मारे ना जाने कहां चली गई। ओफ क्या करूं, ये अनु भी डर के मारे ना जाने कहां चली गई। देख मांझा राम कली, देख बोनस के सारे पैसे ले ले, कोट सैंडल शॉल सब उतार दे।
3: हाँ हाँ शाबाश है, अब ले जा आराम कर, है मैं खिड़की खोल देता हूँ। शाबाश।
4: सुनो।
2: हाँ हाँ हाँ, कैबरे चलेंगे, शैंपेन भी लाता हूँ।
4: क्या कैबरे शैंपेन? हाय राम, तुम दारू भी पीने लगे
2: क्या?
4: बोनस मिलते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? हराम हनुमान जी मेरी रक्षा करो, ये न क्या हो गया।
2: लौटाई रामकली। देख अब तो तू ठीक है ना, है? तुझे क्या हो गया था रामकली?
4: मुझे क्या हो गया था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
2: ठीक
4: यूं ही जरा सा सिर चकराने लगा था चूल्हे की गर्मी से। हम लोग बाजार जा रहे थे ना, अनु भी कहाँ है? चलो ना जल्दी, नहीं तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी।
3: चलो अनु और पप्पू पड़ोस में होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू अच्छी हो गई। देख पहले मंदिर चलेंगे, हैं? ये कोट पहन ले। ठीक हाँ आओ चले। ताला चाबी उठा।
4: डार्लिंग माय लवली कुमार।
2: रामकली फिर चली गई रामकली। अरे ये तू कैसा डबल रोल कर रही है, अच्छी बली हो गई थी अभी फिर ट्रांसलेशन करने लगी।
4: सुनो हनी, आज हम क्लब में डिनर में क्या लेंगे?
2: पांच जूते और हुक्के का पानी। मैं कहता हूँ रामकली, ये कौन सी करंट रह रहकर तुझमें दौड़ जाती है?
4: कम ऑन लेट्स वॉल्स।
5: राम मारो दम, भूतनाथ बोले बम बम बम, आ गए स्वामी, ओझा धर पटक आ गए। भूत चुड़ैल पेत आत्मा का पूर्ण पलायन, बोल बोल डंकनी तू किधर से आई है?
2: आपकी तारीफ
5: जितनी भी करो कम है। बम बम बम जय काली, बकरा बजाए ताली, मंगाओ लाल मिर्चें, सफेद कौवे की चोंच, अरे पुराना जूता अभी छींकने लगेगी।
4: डार्लिंग हाउ इज दिस चिंपैंजी, हमारी नई फिल्म का एक्स्ट्रा है क्या? ओह इट्स अ फाइन मेकअप,
5: प्यार मोहब्बत मठा रही है बच्चा। सफेद कौवे की चोंच का धुआं देते हैं अभी, जा कन्या जा सामग्री ले आओ।
6: भैया ये पिछली गली की ओझा है, वर्मा आंटी ने भेजा है, भाभी के सिर से चुड़ैल पाली, मैं अभी मरती।
5: दम मारो दम, बैठ जा पालती मार कर, भोले नाथ अभी तेरी अंग्रेजी उतार देते हैं। ओम नुम नुम नुम नुम नुम, बिना पासपोर्ट भागती नजर आएगी।
4: छोड़ो भी डालिंग इस मंकी को, कम ऑन हम पॉप म्यूजिक का एलपी रिकॉर्ड सुने। आओ ना।
5: समझ गया बच्चा समझ गया। बम बम बम बम बम बम बम, अंग्रेजी गायिका की चॉइल मालूम होती है।
2: हे भगवान, हिंदी गाने गाती तो रेडियो का ही खर्च बच जाता। ओझा जी ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकती।
5: घबराओ मत बच्चा, अभी ध्रुपद धमाल भी सुनाएगी, माई से तानपुरे की भस्म फमाऊंगा, मिर्च की धुनी दो।
4: You rascal, मैं तेरी चुटिया का एक लोड़ा दूंगी। जा हमारा गन तो लाना। I will shoot him.
2: क्या हो रहा है?
5: बेना शक हो रहा है। मारो बच्चा, मैं अभी कौवे और बगलों का बच्चा लेकर आता हूँ।
4: Oh shut up.
2: तुझे तो हो।
5: इस पर मेरी प्रेत की धारा बच्चा, अंग्रेजी ढंग से उतार रही होगी। मैं गमछा धोती उतार कर फूल पहन कर आता हूँ।
2: क्या करूं, कहां जाऊं? रामकली लौटा।
4: कम ऑन डार्लिंग, हाँ अपनी कार में घूमने चले।
2: ओ मत भूल रामकली की अपनी साइकिल भी पंचर पड़ी है, ये कार कहाँ से तेरे सिर पर सवार हो गई?
6: भैया ओझा जी कहते हैं कि विदेशी चुड़ैल है।
2: अरे विदेशी कहाँ से आई, अपने घर में सब कुछ देसी है, देसी घी को छोड़कर। ठहरा नू मैं सोचता। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अनु मिल गया
6: क्या? मिल गया भैया
2: मिल गया

0: मिल गया। तू झटपट हिम्मत करके इसका कोट उतार दे। शाबाश, पकड़ पकड़, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। खींच, आते घसीट। देख देख देख देख, उड़ने लगी। रामकली रामकली रामकली।
1: अरे अनु बीबी, हम लोग अभी यही हैं, मंदिर नहीं गए। आखिर बात क्या है?
0: मैं कराची से कार निकालने जा रहा हूँ।
1: हराम, अनु बीबी, ये तेरे भैया को क्या हो गया? कैसी बैग की बातें कर रहे हैं? मर गई, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ कोई।
2: मगर भाभी, भूत तो तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा था।
1: भूत? हाँ, कैसा भूत?
0: कैसा भूत? डार्लिंग, डियर, स्वीट हनी, इस कोट का भूत। कम पैसों में ये फॉरेन का पुराना माल फुटपाथ से खरीद लाया। सोचा करीब के चाड़े कट जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि पुराने कोट की गर्मी इस कदर चढ़ जाएगी कि एक ही छलांग में ये हॉलीवुड जा पहुंचेगी। ओ डियर, लेट्स वॉल।
1: चुप भी रहो जी, शर्म है, सब बेच खाइए क्या? अन्नु बीबी का तो कुछ लिहाज करो।
3: मैं क्या करूँ, आज पहली बार ये कोट पहना। और
2: भैया, इस कोट को कहीं दूर फेंकाओ, मेरी अच्छी भली देसी भाभी विदेशी चोंच में बोलने लगती है।
0: चलो अच्छा हुआ, नई नई बातें तो मालूम हो गई। डॉक्टर रतन सिंह पहले भेड़ा चराते थे, 6 महीने पागल भी रहे, हरी पत्तियां और घास चरते रहे। क्या बात कही है?
1: हायरा, मैं मर गई। मैंने ये सब कुछ रतन सिंह डॉक्टर से कहा? मैं माफी मांगने जा रही हूँ।
3: मेरे बाबूजी के बड़े अच्छे दोस्त है।
2: मैं कहती हूँ भैया, तुम ये कोट फौरन फेंकाओ, नहीं तो अगली बार भाभी सारे मोहल्ले को घास चरा देगी।
0: अनु, ये कोट इसी घर में रहेगा। ये ले, मैंने इसे बात से काफी ऊंचा टांग दिया है, इससे हमें फायदा है।
2: सो कैसी भैया?
0: अरे सीधी सी बात है, हमारा पप्पू इंग्लिश में जरा वीक है, मास्टर का खर्च कम हो गया। तेरी भाभी को कोट पहना दिया करेंगे बस, वो पप्पू के टीचर तक को इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे। इस कोट के सहारे मेरी इंग्लिश ड्राफ्टिंग भी सुधर जाएगी।
1: मैं कहती हूँ तो तुम जो भी रहोगे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल त्रासदी के बीच काठमांडू में फंसे महाराष्ट्र के तीर्थयात्रियों को बिहार सरकार की मदद से रेस्क्यू कर उन्हें गृह प्रदेश रवाना किया गया। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अब 15 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा पर एक और झील के टूटने की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने वाल्मीकि नगर, गंडक बराज और सारण तटबंध सहित सभी महत्वपूर्ण तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों को लगातार सतर्क रहने का निर्देश दिए गए हैं और गंडक नदी के डिस्चार्ज की जानकारी ली जा रही है। संभावित संकट की स्थिति के मद्देनजर वाल्मीकि नगर, गंडक बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे बराज से 99,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने आज सुबह पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड में गंडक नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए पश्चिम चंपारण बेतिया से आशीष कुमार।
0: नेपाल में आई बाढ़ के दौरान काठमांडू में फंसे महाराष्ट्र के 100 तीर्थयात्रियों का सकुशल रेस्क्यू कराकर उनके गृह प्रदेश रवाना कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज रेलवे के सहयोग से पटना पुणे एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था कर इन्हें रवाना किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय कर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने 28 अगस्त को इन तीर्थयात्रियों को प्रभावित क्षेत्र से सकुशल बाहर निकाला था। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल में बाढ़ त्रासदी के कारण राज्य के सीमावर्ती जिलों के कई विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो गया है। कई विद्यालयों में पानी भर गया है, जबकि कई का सड़क संपर्क टूट गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए जल्द निर्णय लिया जाएगा।
2: बात हुई है और हम लोग उसको प्राथमिकता के आधार पे बाढ़ वाले समय में उन विद्यालयों में हम क्या व्यवस्था करें जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, और जल संसाधन विभाग से बातचीत करके वैसे विद्यालयों की सूची भी हमने मांगी है अपने विभाग से, और उसको पटना में बैठ करके इसकी हम व्यवस्था।
0: मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया जिले के मोहरा और अत्तरी में सबसे अधिक 138.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने आज बांका, भागलपुर, गया, कटिहार और नवादा जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 30 अगस्त को राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों के अनेक स्थानों पर, जबकि शेष भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। पहले यह 31 अगस्त निर्धारित थी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दलितों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार के आरोप को एनडीए नेताओं ने खारिज किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कांग्रेस के समय में भी दलितों का अपमान हुआ है।
4: जगजीवन राम जी भी गए थे विश्वनाथ मंदिर में, उस समय भी मंदिर को धोया गया था, ये बात को राहुल जी याद नहीं करते हैं। जगजीवन राम किस पार्टी के लोग थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और वो विश्वनाथ मंदिर में गए थे, मंदिर धोया गया था। कहने का मतलब हमारे समाज में कुछ कठमूल्य लोग हैं, इसमें न आरएसएस का मामला है, न एनडीए का मामला है, न बीजेपी का मामला है। मामला है कि समाज में कुछ लोग हैं जो गलत बात सोचते हैं, वैसे लोगों को हम जरूर कंडेम करते हैं।
0: लोजपा रामविलास के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है।
5: आज भी अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है, यकीनन ये चिंता तो हमारी सरकार के लिए है ही, और इसीलिए हम लोग अलग अलग विषयों पर मजबूती से अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं। पर जो लोग आज इस बात की चिंता कर रहे हैं, देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका तो उन्हीं को ही दिया था ना, आज किस मुंह से वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है।
0: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टल गया है। इस मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष लालू यादव की वर्चुअल माध्यम से पेशी हुई। अदालत ने दलीलों और दस्तावेजों पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत अपना फैसला 30 सितंबर को सुनाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार कई गंभीर प्रयास कर रही है। कटिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि बच्चों में नकारात्मक भाव नहीं आए, इसके लिए उनके प्रमाण पत्रों में फेल की जगह इलिजिबल फॉर स्किल लिखा जाएगा।
2: देखिए, बच्चों में कोई भी नकारात्मक भाव ना आए, बच्चे हमेशा सकारात्मक दिशा में सोचें। अगर कोई बच्चा अगर फेल शब्द उसके जीवन में आ जाता, उसे लगता है कि मेरा जीवन ही खत्म हो, इसीलिए हमने तय किया है कि एलिजिबल फॉर स्किल हम उसको ऐसा लिखेंगे उसके सर्टिफिकेट में कि बच्चा जान जाएगा जरूर कि हमारी क्या स्थिति है, लेकिन उसके अंदर नकारात्मक भाव नहीं आएंगे। और हम कभी भी बच्चों के ब्रेन की भी मैपिंग हम कराने वाले हैं कि रिफॉर्म से ही परफॉर्म हो, इसीलिए हम शिक्षा विभाग में कंप्लीट रिफॉर्म की में काम कर।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा।
1: श्री मेघवाल ने कहा, खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोक सेवक आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले राज्य के पैरा खिलाड़ी सोमन राणा और झंडू कुमार को सम्मानित किया। सोमन राणा को 30 लाख और झंडू कुमार को 15 लाख रुपए की इनामी राशि का चेक दिया गया। सोमन राणा ने राष्ट्रमंडल खेल में शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक और झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। बिहार गीत के रचयिता और प्रख्यात कवि सत्यनारायण का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना के बांसघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बिहार पुलिस की महिला बटालियन के सदस्यों ने दिवंगत कवि को सशस्त्र सलामी दी। उनके पुत्र संदीप स्नेह ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर विधान पार्षद संजय मयूख, पूर्व मंत्री श्याम रजक, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार गीत के रचयिता और हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। अपने शोक संदेश में श्री कुमार ने कहा कि उनकी रचनाओं में आम लोगों की आवाज, सामाजिक सरोकार और जनचेतना दिखाई देती है। उन्होंने बिहार गीत के माध्यम से प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को अमर कर दिया है। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सवनही गांव में जहरीली गैस के चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। शौचालय की टंकी का सेंटरिंग खोलने के दौरान कई मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए, बाद में उनकी मौत हो गई। मंत्रिमंडल सचिवालय के उर्दू निदेशालय के तत्वावधान में आज से राजधानी पटना स्थित श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 2 दिवसीय जश्न उर्दू का आयोजन शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, एमएलसी खालिद अनवर समेत अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। उर्दू परामर्शदात्री समिति के सदस्य डॉ. फिरोज मंसूरी ने कहा है कि उर्दू को आधुनिक तकनीक आधारित डिजिटल पुस्तकालय और अनुवाद की सुविधाओं से जोड़कर रोजगार परक भाषा बनाने की दिशा में ठोस पहल करने की जरूरत है। गोपालगंज जिले के भितिहरवा में जीविका सुधा बिक्री केंद्र का जिलाधिकारी समीर सौरभ ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बिहार सरकार की पहल को आगे बढ़ाते हुए जीविका सुधा केंद्र का शुरुआत की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: तो 15 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है

0: बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
2: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
3: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है। आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर थे, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने BR अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
4: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
5: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
15: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
16: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
12: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27, गोपालगंज।
12: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
18: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
17: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
19: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, जिलाधिकारी ने मध्य निषेध मामलों को लेकर की समीक्षा। महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या में एक आरोपी गिरफ्तार। आपदा से पहले तैयारी और सुरक्षा को लेकर बच्चों को दी गई जानकारी। सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत से मचा हाहाकार। कुचायकोट में चाकू मारकर एक अधेड़ की हत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने कई मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शराबबंदी और मद्य निषेध से संबंधित मामलों की समीक्षा कर जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ते हुए आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में शराबबंदी के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी दें, साथ ही थाना स्तर पर लंबित शराब से संबंधित कांडों, जब्त शराब के विनिष्टीकरण और शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहनों के राजसात की कार्रवाई के संदर्भ में भी उन्होंने विस्तृत समीक्षा की और स्पष्ट कहा कि मद्य निषेध सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए शराब के अवैध कारोबार, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, साथ ही किसी भी स्तर पर शिथिलता ना बरतें। समीक्षा के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से 26 अगस्त 2026 तक जिले के विभिन्न थानों में शराब से संबंधित लंबित मामलों में कुल 2,76,293,070 लीटर शराब का विवरण दर्ज है। इसमें स्प्रिट, चुलाई शराब, देशी शराब और विदेशी शराब की मात्रा शामिल है। साथ ही 256 वाहनों से संबंधित मामले भी लंबित दर्शाए गए हैं, जिनमें अधिग्रहण की कार्रवाई की जानी है। जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि न्यायालय एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लंबित शराब मामलों के निष्पादन में तेजी लाए, जब्त शराब के विनिष्टीकरण और वाहनों के राजसात की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करें। गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गोपालपुर के ग्राम शाहपुर पकड़ियार में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस मामले में पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए मृतिका के पोस्टमार्टम के लिए शव को गोपालगंज सदर अस्पताल में भेज दिया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने महिला के परिजनों के आरोप पर उसके पति को गिरफ्तार किया है। महिला के मायके वालों ने कहा कि परिवार के लोग लगातार गाली गलौज और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। न्यायालय के आदेश के पश्चात भी मृतिका को अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी। आरोप है कि इस दौरान ससुराल पक्ष द्वारा पुनः दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था। इसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के नामजद आरोपी सुग्रीव शाह पिता स्वर्गीय परमा शाह साकिन शाहपुर पकड़ियार थाना गोपालपुर को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा आपदा से पूर्व तैयारी, जन जागरूकता तथा सुरक्षित समुदाय के निर्माण की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत आज सिधवलिया प्रखंड के UHC डुमरिया ईस्ट में NDRF की 9T टीम एफ कॉपी के द्वारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान सुरक्षित रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, विशेष रूप से प्राथमिक उपचार, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, रक्त स्त्राव को नियंत्रित करने, सर्पदंश की स्थिति में आवश्यक सावधानियां बरतने, आंधी तूफान एवं वज्रपात से बचाव तथा बाढ़ के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षित बचाव तकनीकों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर उपलब्ध संसाधनों का सुरक्षित उपयोग और त्वरित निर्णय किस प्रकार जीवन रक्षक साबित हो सकता है, भूकंप, बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के साथ साथ क्या करें और क्या ना करें, इस संबंध में भी बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। आज गोपालपुर थाना क्षेत्र के सवनही पट्टी गांव में एक भीषण हादसा हो गया जिसमें चार लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यहां एक सेफ्टी टैंक में सेटरिंग खोलने के दौरान चार मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि शटरिंग खोलने के दौरान एक मजदूर सेफ्टी टैंक के अंदर फंस गया। उसे बचाने के प्रयास में एक एक कर तीन और मजदूर अंदर चले गए और दम घुटने से चारों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। सेफ्टी टैंक से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल में भेजा गया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम और हाहाकार मच गया। मृतकों की पहचान बंटी बैठा उर्फ राकेश, जावेद आलम उर्फ टीपू, उमेश यादव और शब्बे आलम के रूप में हुई है। घटना के बाद प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने एसडीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है जो इस पूरे कांड का बारीकी से जाँच करेगी। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि बंद टैंक में उतरना क्यों खतरनाक है, इसके बारे में जो जानकारी दी जाती है वह सेफ्टिक टैंक, सीवर और दूसरे बंद स्थानों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जहरीली गैस जमा हो जाती है। ऐसे स्थानों में किसी व्यक्ति के बेहोश होने पर उसे बचाने के लिए बिना सुरक्षा उपकरण अंदर जाना दूसरे लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर बिना सुरक्षा उपकरण के अंदर नहीं जाना चाहिए। आज कुचायकोट में भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुचायकोट गांव में ही आज सुबह सो रहे एक अधेड़ किसान नरेश बैठा का मोबाइल छीनकर अपराधी भागने लगा, जिसके बाद किसान ने उसका पीछा कर उसका विरोध करना शुरू किया तो अपराधी ने उसे चाकू गोद दिया। पेट में चाकू मारकर अपराधी फरार हो गए। इस दौरान परिवार के लोगों ने अधेड़ को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर किया गया और रास्ते में किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक कुचायकोट गाँव के ही 55 वर्षीय नरेश बैठा बताए जा रहे हैं। नरेश बैठा को शनिवार की सुबह करीब 2:30 बजे जब वे अपने घर के बाहर सो रहे थे, इसी दौरान कुछ बदमाश पहुंचे और उनका मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे। उन्होंने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गए, गिर गए, बदमाश फरार हो गए। पुलिस अब बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र के द्वारा बैठक की गई। विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस उप महानिरीक्षक गोपालगंज आए थे, जिसमें पुलिस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में समीक्षा बैठक करते हुए कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, अभिलेखों के समुचित संधारण और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विधि व्यवस्था संधारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, पंचायत सरकार भवन, महादलित सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र भवन तथा कब्रिस्तान घेराबंदी सहित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर भी विस्तार पूर्वक मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन योजनाओं की स्थिति पर ध्यान दिया जिनका निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से धीमी गति से चल रहा है या लंबित है। प्रतिवेदन में कई योजनाओं में आवंटन की कमी, भूमि विवाद, अतिक्रमण, सीमांकन तथा स्थानीय ग्रामीणों के विरोध और न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर भी आवश्यक निरीक्षण करते हुए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। भूमि अतिक्रमण, आवंटन अथवा अन्य प्रशासनिक समस्या के कारण लंबित कार्यों का भी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ समाधान करें और योजनाओं को निर्धारित प्रक्रिया तथा समय सीमा के अंदर शीघ्र पूरा करें। इस दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज जदयू पार्टी ने व्यवसायिक प्रकोष्ठ को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसकी अध्यक्षता प्रमोद पटेल जिला अध्यक्ष ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विधायक विशाल कुमार का जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संगठन को और मजबूत करने के लिए हो रहे प्रयास और आने वाले समय में करने वाले प्रयासों पर भी विधिवत बैठक कर आवश्यक निर्णय लिए गए। वाराणसी रेलखंड पर हो रही नॉन इंटरलॉकिंग और प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर थावे रेलखंड पर कई गाड़ियों को निरस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 सितंबर को रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण करने के बाद गाड़ियों का निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन इत्यादि किया गया है। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाली गोरखपुर कैंट सिवान सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी। सिवान और थावे से 31 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने 55037 और 55038 सिवान थावे सिवान सवारी गाड़ी को भी निरस्त किया गया है। वहीं 31 से 4 सितंबर तक चलने वाली 55035 सिवान गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी को भी निरस्त किया गया है। वहीं थावे से 3 सितंबर को चलने वाली 75105 थावे नकहा जंगल डेमू गाड़ी को भी निरस्त किया गया। खातीपुरा से 1 एवं 2 सितंबर को चलने वाली 19725 खातीपुरा दरभंगा एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग बाराबंकी अयोध्या कैंट शाहगंज मऊ भटनी सिवान थावे कप्तानगंज के रास्ते चलाया जाएगा। गाड़ी का ठहराव गोंडा गोरखपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा। थावे से 30 और 31 अगस्त तथा 2 सितंबर को चलने वाली 75105 थावे नकहा जंगल डेमू गाड़ी भी थावे से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी। गोरखपुर से 3 सितंबर को चलने वाली 75106 गोरखपुर थावे डेमू गाड़ी भी गोरखपुर से 180 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी। महावीरी अखाड़ा में झंडा के दौरान भी विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि लाठी लगने के बाद दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया। यह युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। आनंद फानन में इसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के हरकुआ ढाला के पास शुक्रवार की देर रात का बताया जा रहा है। इसमें घायल युवक थावे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर निवासी परमेश्वर बैठा का 19 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज शहर में गुरुवार की देर रात जुलूस के दौरान हुई एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में एक आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में नगर थाना की पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार हत्याकांड के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस मामले में एक SIT का गठन किया गया था। SIT की टीम ने लगातार अनुसंधान करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्त गोलू उर्फ राजकुमार पिता स्वर्गीय कृष्णा राम साकिन श्याम सिनेमा रोड थाना नगर जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने पूरे घटना के संदर्भ में जानकारी दी और अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। अभियुक्त ने बताया कि महावीरी अखाड़ा मेला के दौरान मोटरसाइकिल तेज गति से चलाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पकड़ा गया आरोपी फोन कर रोहित राम उर्फ लवकुश एवं अन्य लोगों को वहां बुलाया। इसी दौरान रोहित राम उर्फ लवकुश के द्वारा मृतक के दाहिने गाल में गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शरीर से गोली के आगे का हिस्सा भी बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद और इसमें फरार चल रहे रोहित राम उर्फ लवकुश को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी कार्रवाई जारी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
20: जिलाधिकारी ने मध्य निषेध मामलों को लेकर की समीक्षा। महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या में एक आरोपी गिरफ्तार। आपदा से पहले तैयारी और सुरक्षा को लेकर बच्चों को दी गई जानकारी। सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत से मचा हाहाकार। कुचायकोट में चाकू मारकर एक अधेड़ की हत्या।
19: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
21: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
21: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा मिला ही नहीं।
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
25: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
23: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
26: रियाज रेट्रो।
27: फिर आ गया घूमते घामते 8th March, जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी और साहिर लुधियानवी की सालगिरह भी। सच बताऊं तो इन दोनों बातों को जोड़कर जो एपिसोड किया था सीजन 2 में, उसके बाद इस विषय पर कुछ और बोलने को था ही नहीं मेरे पास। और फिर मैं अचानक सोचने लगी कि अगर मैंने विमेंस डे पर एक एपिसोड किया भी तो गाने कौन से चलाऊंगी। सोचती रही और फिर लगा, अरे पिछली बार तो साहिर साहब ने बीड़ा उठा लिया था, पर उनके बिना अगर मेरे दिमाग में 1-2 के आगे गाने ही नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तभी मैंने ट्वीट किया, मेरा हैंडल @MissRiyaMukherjee MSRIYAMUKHERJEE, जहां पर जाकर आप ये थ्रेड देख सकते हैं जो बहुत ही फैसिनेटिंग बनता गया। सच में मैंने लिखा था, ऑन माय माइंड टुडे, क्या पुरानी हिंदी फिल्मों में औरत की ताकत और इंडिविजुअलिटी को लेकर गीत ही नहीं है? सिर्फ उसकी खूबसूरती और मोहब्बत भरी नजरों के परे क्या कुछ है ही नहीं? मेरे दिमाग में आज फिर जीने की तमन्ना है, इसके आगे तो कुछ आ ही नहीं रहा। और आपके? और क्या कमाल के रिप्लाइज, कमेंट्स, सॉन्ग सजेशंस आए, बात और बहस छिड़ गई, बड़ा मजा आया। सबको ना मैं ट्विटर पे जवाब दे पाऊंगी और ना यहाँ वक्त मिलेगा सारे मैसेजेस शामिल करने के लिए, पर आपको ये यकीन मैं दिला सकती हूँ कि मैंने हर एक मैसेज को पढ़ा जरूर है और उस पर गौर भी किया है। पर शुरुआत करें उस गीत के साथ जिसका जिक्र सबसे ज्यादा ट्वीट्स में आया, और मैं सोच रही हूं कि ये गर्व की बात होनी चाहिए हमारे लिए या शर्म की बात कि विमेंस एम्पावरमेंट पर जो गाना सबके दिमाग में सबसे पहले आया वो एक 1950s का गीत है।

पंछी बनूं उड़ती फिरूं फिल्म चोरी चोरी, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, आवाज लता मंगेशकर, स्क्रीन पर वेरी एप्टली वो हीरोइन जो हमेशा मुझे अहेड ऑफ हर टाइम्स लगी हैं, नरगिस जी। रियाज रेट्रो। विमेन्स एम्पावरमेंट के नाम पर रेट्रो गाने की बात हुई तो इस गाने का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ। एज आई सेड, अमीना, तेजस, संगीता, महेश, पूनम, सोनाली, इन सब के जहन में ये गीत आया। पर ये तो सच है कि हिंदी रेट्रो फिल्म में जब हम फीमेल लिबरेशन और एम्पावरमेंट के गीत ढूंढने निकले तो इवेंचुअली वी वर स्क्रेपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल। एक अंतरा इधर, एक मुखड़ा उधर, एक हिंट, एक खास इंटरप्रिटेशन कि इन लाइनों को ऐसे नहीं तो वैसे पढ़ सकते हैं। स्ट्रगल कर रहे थे हम सब के सब, लेट्स फेस इट। मिड 90s और मिलेनियल फिल्म्स में शुक्र है माहौल बदला है, चाहे वो शीला की जवानी जैसा आइटम नंबर हो, कंगना रनौत का मूव ऑन, दंगल से धाकड़, अस्तित्व से मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी, स्वानंद का ओरी चिरैया, आजकल के बहुत सारे गीत मुझे भी याद आए और आपको भी। हम रेट्रो भक्त नई फिल्मों के गीतों को कोसते हैं ना अक्सर, पर इस एक मामले में तो पूरे नंबर न्यू सिनेमा को ही जाएंगे, है ना। जयश्री ने काफी सोचा इस विषय पर और उनके सारे ट्वीट्स में से मुझे ये मैसेज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। शी सेज, व्हाई इज दिस सच अ डिफिकल्ट टास्क। फिर उन्होंने लिखा, डिड वी जस्ट वेस्ट द टैलेंट्स लाइक स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, नूतन, श्रीदेवी एंड सच स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। रियली जयश्री, सोचने पे मजबूर हो तो गए हम इस इंटरनेशनल वीमेंस डे पर। हाउ लॉन्ग एंड लोनली एंड टफ द जर्नी हैज बीन। आफ्टर ऑल हिंदी सिनेमा को तो प्रतिबिंब मानते हैं ना हम समाज का, तो फिर दिस टेल्स अस अ लॉट, डजंट इट। और जयश्री, इस हाहाकार से पहले आपने एक कमाल के गाने का जिक्र भी किया, फिल्म दिल दिया दर्द लिया, लता जी की आवाज, स्क्रीन पर वहीदा जी और साथ श्यामा जी, संगीत नौशाद, बोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट शकील बदायूनी। सच कहा आपने जयश्री, टू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट ईच अदर, पर उसमें भी घूम फिर के बात खूबसूरती की और दिल वालों के दिल थामने की आ ही जाती है। बट स्टिल कम से कम हम इसको सिस्टरहुड का गाना तो कह सकते हैं ना, फीमेल बॉन्डिंग, टू वुमेन अपलिफ्टिंग ईच अदर। और बाकी बातों के अलावा गाना है भी कमाल।

0: छोड़ो। मजरू एसडी आशा किशोर, फिल्म तीन देवियां। अब जिन्होंने इस गीत को ट्वीट किया उनको क्या बुलाऊं मैं? ट्विटर पे नाम है द डैपी और हैंडल है बिंदास। यार नाम लिख दिया करो ना ट्वीट के नीचे जब हैंडल इतना क्रिप्टिक हो तो। मैं थोड़ी ओल्ड वर्ल्ड हूँ ना, नाम से पुकारना अच्छा लगता है मुझे।
1: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो।
0: और मेरा नाम है रिया। मजेदार गीत था ये वाला फीमेल एम्पावरमेंट के नाम, क्योंकि मेल काउंटर पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। और पुश बैक लड़की की तरफ से, जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों ना फिरूं झलकी झलकी। ओह ऑफ कोर्स, मूवी के कॉन्टेक्स्ट में वो इसलिए था क्योंकि कल्पना एक फेमस मूवी स्टार है इस फिल्म में, और गाने के इस सीन में मॉब उसे पहचानने वाली है। बहरहाल लिरिक्स को इंडिपेंडेंटली देखें तो काफी जेंडर टासल है इसमें। सो देन व्हाट नेक्स्ट? राशिद ने भी इस अगले गाने का जिक्र किया, और लाबोनी आपने भी ट्वीट किया ये गाना किस्मत फिल्म से आशा भोसले की आवाज में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, चेंज ऑफ गियर्स इन पावर डायनामिक्स टू द वुमन व्हेन इट कम्स टू लव एंड सिडक्शन। पर देखिए तो घूम फिर के बात फिर से सिडक्शन और मोहब्बत पर ही आती है, जैसे इसके बिना कोई वजूद ही नहीं हो लड़की का अपने बलबूते पर। और मनमोहन देसाई को फुल्ली ड्रंक दिखाना पड़ा बबीता जी को इससे पहले कि वो ये भी गा सकें। एक प्लॉट डिवाइस, सती सावित्री हीरोइन का एक भटका हुआ लम्हा, बट देन नो डाउट उस जमाने के लिए बहुत ही बोल्ड और पावरफुल गाना था। चलिए सुनाती हूँ, पर एक शर्त पर, हर हिचकी के साथ आपको भी हिचकी तो लेनी पड़ेगी ऑन द बीट।

आहा भरत, आपने बहुत सोचा मेरे इस सवाल पर, बहुत बहुत सारे गीत सजेस्ट किए। आप भी मेरी तरह खोज पर ही निकल गए थे और आपके सारे सॉन्ग सजेशंस में से मुझे ये वाला सबसे बेहतरीन लगा जो अभी चलाया। रात और दिन फिल्म से लता जी की आवाज में आवारा है मेरे दिल, शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। नरगिस जी वन अ नेशनल अवार्ड फॉर रात और दिन, हालांकि इस वाले गाने में तो वो नहीं है, शायद लक्ष्मी छाया नाम की एक एक्ट्रेस हैं। अक्सर जब हम बोल्ड इंडिविजुअलिस्टिक फीमेल सॉन्ग्स की बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि इसी तरह वो मेन हीरोइन पर नहीं पर साइड लीड, वैम्प, कैबरे डांसर पर पिक्चराइज हुआ करते थे। ये बात शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फेमिनिज्म का सारा भार तब हेलेन, शशिकला, बिंदु वगैरह के कंधों पर ही रख दिया जाता था। ऑल्दो रात और दिन फिल्म में ऐसा नहीं था, बहुत ही अनयूजुअल और अहेड ऑफ इट्स टाइम्स मूवी थी वो तो। रियाज रेट्रो। नीलम किधर हो यार तुम? तुम मेरे सामने होती तो सच में गले लगा लेती मैं। क्या गीत चुना तुमने, सिर्फ इस एपिसोड की थीम के लिए बेहतरीन ही नहीं, म्यूजिकली भी क्या गाना है। उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत और इस गीत के बोल लिखे हैं अमृता प्रीतम जी ने। नीलम, आपने इस गीत की लाइंस कोट की हैं। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर, घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। और फिर आपने कहा नीलम, मेरे नजरिए से नायिका का बेहद निजी जहनी स्वच्छंदता को दर्शाता है खास तौर पर ये बोल, मांग के अपनी मौत के हाथों ये जो जिंदगी ली है हमने, बात कुफ्र की है हमने। सच में सब्लाइम अल्फाज अमृता प्रीतम जी के। मेरे लिए ये गाना तोहफा है, इस एपिसोड का मुकुट है। आशा जी की आवाज में इसे सुने कितने साल हो गए थे मुझे अंदाजा भी नहीं है। प्रिविलेज टू हियर इट अगेन।

0: फिल्मों में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स और गीतों की बात हो और मदर इंडिया का ये गाना ना चले, शायद ये मुमकिन ही नहीं। ऑलमोस्ट एक राइट ऑफ पैसेज है ये तो। इस गीत को रेकमेंड किया रेशमा ने भी और रिधि ने भी। हालांकि इसकी अंदरूनी लाचारी पर भी बात तो हुई उसके बाद रेशमा और जयश्री के बीच में, और मैं भी काफी दुविधा में थी। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ताकत कम मजबूरी ज्यादा है, एक लाचारी है तो स्ट्रेंथ से ज्यादा सैक्रिफाइस झलकता है। पर फिर भी नौशाद और शकील बदायूनी का बनाया ये गाना एक ऐसी फिल्म से है जो एक माइलस्टोन है स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल में, और गाया भी तीनों बहनों ने मिलकर, लता, उषा और मीना मंगेशकर।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3092 या 97-65-65-750।
5: रियाज रेट्रो।
0: मैं आपके साथ रिया। ख्याल आया पिछले हफ्ते कि एपिसोड 8 इंटरनेशनल वीमेन्स डे के आसपास आएगा। 8 मार्च है इंटरनेशनल वीमेन्स डे, और मैंने प्रिटी मच मन बना लिया था कि मैं इस पे कोई एपिसोड करूंगी नहीं, क्योंकि ये एक दिन मेरी समझ में पूरी तरह से आता नहीं है। वैसे ही जैसे कुछ हफ्ते पहले वर्ल्ड रेडियो डे पर बड़ा शोर मच रहा था मेरे टाइमलाइन पर, और मैं सोच रही थी वन डे, एक दिन, बाकी दिन क्या है मेरे लिए फिर। कमिंग बैक टू हिंदी फिल्म सॉन्ग्स जो औरतों को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वॉइस दी। ऐसे कई गाने आपके और मेरे दोनों के जहन में आए जिनसे मुझे एक खास दिक्कत है, वो ये कि उनमें जब फीमेल वॉइस स्ट्रॉन्ग हो तब भी वो एक काउंटर पॉइंट है या विथ रेफरेंस टू मेन है कि देखो मैं तुम्हें सिड्यूस कर रही हूँ, या मैं पहल कर रही हूँ, या मैं छोड़ के जा रही हूँ, या मैं तुम्हारे गम आंसू दुख दर्द को अपने में समा रही हूँ, या मैं तुम्हारी माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, और कुछ नहीं तो मैं आज खुश हूँ, आजाद हूँ, मदमस्त हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार मिला है। Even to be strong, I need you as a reference point. चाहे वो मेरा साया साथ होगा हो, या आजकल पांव जमी पर, या जिस गीत का जिक्र बहुत लोगों ने किया, मैं चली, सब में एक रिश्ता है औरत का एक आदमी से या बच्चे से। बट वेयर आर द मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, या फिर रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। इस टाइप के गाने इन फीमेल प्लेबैक कहाँ हैं जो सिर्फ अपने ही वजूद की बात करें बिना किसी और को मापदंड बनाए। और इसी बात पर ऋतु और श्रीनाथ, आप दोनों ने मेरा दिल बिल्कुल खुश कर दिया। आप दोनों ने जिस गीत की लाइंस ट्वीट की वो गीत इसी वजह से मुझे बेहद पसंद है। एक बहुत ही मॉडर्न प्रोग्रेसिव लुकिंग नादिरा पर पिक्चराइज्ड, आवाज मीना कपूर, संगीत अनिल बिस्वास की और बोल शैलेंद्र। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और जिद है मेरे दिल की, मैं बात जमाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की।

0: झुमरी, आपने ये गाना सजेस्ट किया और उसके साथ कोई और बात लिखी नहीं। आई गेस आपका लॉजिक ये था कि कम से कम इस गाने में लड़की रोते बिलखते सर फोड़ते तो नहीं नजर आ रही। शी इज एंग्री एंड शी इज स्ट्रॉन्ग। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। अ बिट लाइक जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू ही तरसे, है ना। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसको स्ट्रॉन्गली फीमेल एम्पावरिंग सॉन्ग कहूंगी या नहीं, पर सच बताऊं झुमरी, आपके ट्वीट ने मुझे मुबारक बेगम के इस गीत को चलाने का बहाना दे दिया। एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। केदार शर्मा का लिखा, स्नेहल भटकर का संगीत, फिल्म हमारी याद आएगी। अब बद्दुआ कोई ऐसे दे तो हम सर झुका कर कबूल कर लें, है ना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से। रियाज
0: रेट्रो। तस्नीम, थैंक यू कैफी आजमी के रेवोल्यूशनरी कलाम औरत का ट्रांसलेशन भेजने के लिए। उठ मेरी जां, मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। इसकी उर्दू इतनी मुश्किल है कि ओरिजिनल पढ़ने की हिम्मत नहीं और ट्रांसलेशन पढ़ने की इच्छा नहीं, पर उसी ट्वीट के थ्रेड पर आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं जिस पे मैंने ये बात छेड़ी थी। बहुत खूबसूरत है और ये साल है भी कैफी आजमी की बर्थ सेंटेनरी। आज के एपिसोड में इस पोयम का जिक्र तो लाजमी था। रथ चक्र ने भी कैफी आजमी की बात की। भीगी भीगी फजा, आशा जी की आवाज में शशिकला पर पिक्चराइज, सच में एक बहुत लिबरेटिंग गीत है फिल्म अनुपमा से। बहुत सारे और ट्वीट्स और मैसेजेस और गीत जो मैं चला नहीं पा रही हूँ आज। रेखा का गाना सारे नियम तोड़ दो, आकांक्षा ने भी कहा, उनके हस्बैंड का सजेशन है, और दीक्षा ने भी कहा सारे नियम तोड़ दो एंड होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। स्निग्धा, आपका जब छाए मेरा जादू का इंटरप्रिटेशन काफी कमाल लगा मुझे। आपने लिखा ये गाना आपको बहुत अपलिफ्टिंग और एम्पावरिंग लगता है क्योंकि आप बुद्धि, मेधा, दिमाग, इंटेलेक्ट का जादू मानकर सुनती हैं इस गीत को। आई लव इट, सुपर्ब। पूनम, रातों के साए घने फिल्म अन्नदाता से बहुत अच्छा सजेशन था। इसमें भी वही बात है कि किसी और के साथ ताल्लुक नहीं है, इसमें खुद अपने लिए स्ट्रांग होना है। संगीता, फिल्म प्रतिघात से एस जानकी की आवाज में दुर्योधन, ये गीत इतना अनयूजुअल पिक था, आपके जहन में आया भी कैसे? आई वॉज रियली क्वाइट अमेज्ड। आशु और अमित, आप दोनों ने कोमल है कमजोर नहीं गीत ट्वीट किया फिल्म आखिर क्यों से। अमित ने ये भी बताया वो इस गीत को अपनी माँ को सुनाते थे चढ़ाने के लिए जब जब उनकी उनके पिताजी से बहस होती। सो क्यूट, इमेजिन समबडी सिंगिंग अ मार्शल सॉन्ग बिहाइंड योर मदर, कम कोमल है कमजोर नहीं तू। कोमल है कमजोर नहीं एक स्कूल प्रेयर या मोटिवेशनल सॉन्ग था फिल्म में, जैसे कि है हमको मन की शक्ति देना। भरत ने इस प्रेयर की बात की कि जेंडर न्यूट्रल है गुलजार साहब की ये प्रेयर, पर बहुत ताकत तो है इसमें। भरत, आपके दो और सजेशंस मुझे बहुत पसंद आए, इन्हीं लोगों ने और मुड़ मुड़ के ना देख, वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉइसेस, आई डू अग्री दोनों गीतों में। अपनी बात रखने की ख्वाहिश, अपना नजरिया जताने का जुनून, सी द वर्ल्ड द वे आई सी इट, आई रियली लव बोथ दीज सॉन्ग्स, वक्त होता तो दोनों चला दी एक्चुअली। नेहा, आपने जो गाना चुना वो बिल्कुल ऑन पॉइंट भी है, काफी अनयूजुअल भी है, और शायद आज तक इतने सारे एपिसोड्स और चार सीजन्स में रियाज रेट्रो पर कभी भी नहीं चला है, तो जिद्दी फिल्म से ये गाना तो चलाना बनता है। लता मंगेशकर की आवाज, एसडी और हसरत जयपुरी।

ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

विनय थैंक यू इस गीत को चुपके से धीमे से सजेस्ट करने के लिए। ममता से लता जी की आवाज में, मजरू साहब का लिखा, रोशन जी का संगीत। आई थिंक ये गाना विमेंस डे और विमेंस इंडिपेंडेंट वॉइस के लिए इतना परफेक्ट है ना। रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। इस गीत के साथ मैं एक्चुअली एपिसोड को यहीं एंड ही कर सकती हूँ, इट जस्ट फील्स सो राइट। पर कुछ और मैसेजेस का जिक्र कर दूं। निचका ने बिल्कुल सही कहा कि ठंडी हवा काली घटा पोर्ट्रेज फ्रीडम इफ नॉट स्ट्रेंथ, एब्सोल्युटली। संगीता, रिधि और भरत, आप सबों ने एक इंटरेस्टिंग चीज की, यू मेंशन्ड सॉन्ग्स जो मेल प्लेबैक में हैं, बैकग्राउंड में हैं, पर औरत को एम्पावर या स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं और स्क्रीन पे एक्चुअली हीरोइन हैं जो किसी मुश्किल से गुजर रही हैं उस वक्त। सफल होगी तेरी आराधना फिल्म आराधना से और तपस्या फिल्म से जो राह चुनी तूने। अगर स्पेसिफिकली फीमेल प्लेबैक की बात ना कर रही होती आज तो ये दोनों गीत पक्का चलाती, बिकॉज इट्स एन अनयूजुअल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। संचारी, आपने कहा मैं सितारों का तराना है तो ड्यूएट बट विद अ स्ट्रॉन्गर फीमेल पर्सोना। रंजित, आपने ट्वीट किया तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। जस्ट लाइक राजीव जिन्होंने कहा आजा पिया तुहे प्यार दूं। दोनों गीतों में द वोमन इज द स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। जी अच्छे गीत हैं, पर फिर से वही बात आ जाती है इनमें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विद रेफरेंस टू अ मैन। खैर, और भी बेहतरीन तर्क, पॉइंट्स ऑफ व्यू, सॉन्ग सजेशंस, थॉट्स बहुत रह गए चलाने के लिए भी, बताने के लिए भी। 90s के गीत जैसे आज मैं ऊपर, या दिल में जागी धड़कन जो हमारे दोस्त अतुल ने बताया, या फिर हवा हवाई और दिल है छोटा सा, सबके नाम नहीं दोहरा पाई, मैसेजेस नहीं सुना पाई, पर यकीन मानिए मैंने सारे के सारे पढ़े हैं। अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं तो जरूर जुड़ जाइए रियाज रेट्रो फैमिली के साथ। मेरा हैंडल @MsRiyaMukherjee MsRiyaMukherjee। आज बस इतना ही। हर रोज इंटरनेशनल ह्यूमन डे मनाते रहिए, ये विमेंस डे वगैरह तो आते जाते रहेंगे, इंसानियत डे हर रोज हो वो ज्यादा जरूरी है शायद। जाते जाते ऑफ कोर्स वो गाना जो मेरे जहन में आया था जिसके साथ मैंने ये पूरी बातचीत छेड़ी, डेयर टू ड्रीम डेयर टू लव।

0: You were listening to Riya's Retro.
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: कहा आपका ये मजा ही सही के हम

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: झेला।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: इतना सवाल एक बार पूछ ले बू, पहले आपन बताओ तो हम आपन बताओ तनी।
2: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताए, इशारा के बाद इशारे में समझ ली है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: पठानपट्टी से बोल रही हूँ खुशी।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक हूँ, आपने बताइए।
1: हम सब भी अच्छे हैं।
2: नाश्ता हो गया?
1: हाँ, नाश्ता करके आते हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं?
2: कुछ फोन ही लगा रहे थे।
1: अच्छा, कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: शाहरुख खान का बता दीजिएगा हिंदी सॉन्ग।
1: शाहरुख खान का तो हिंदी सॉन्ग बहुत सारा अच्छा अच्छा है, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: तूने जो पठान मेरी जान तुझे मर मिट जाऊंगा, वही वाला।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है,
2: हाँ वही।
1: ओके, तो गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी। तो दोस्तों, आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। खाना पीना हो गया?
1: जी, खाना पीना तो हो गया है, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ, मैम एक गाना सुनना था।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ये जो नहीं है दिल के और मासूम बह गए, नया अगर निकला है।
1: नया सॉन्ग दिल के और मासूम बह गए?
0: हाँ,
1: ये तो मतलब पुराना सॉन्ग है, फिर से इसको नया किया गया है।
0: हाँ, नया सॉन्ग है।
1: अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी और इसी को बजा लूंगी। ओके।
0: हाँ,
1: और गाना सुनाना भी है?
0: हाँ, सबसे पहले आपको और जितना रेडियो भी सुन रहे हैं सबको।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone ring, they bajte hai, to kehte hai hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, सलाम अलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
7: बिल्कुल, नाम बता दीजिए गाने की।
6: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ वेस्ट मुंबई से, मैं गोपालगंज के रहने वाला हूँ।
7: आज बहुत दिनों बाद।
6: जी मैम, थोड़ा टाइम नहीं मिलता था इसी के लिए।
7: अच्छा जी,
6: मुझे गाना सुनना है, कोई भी गाना अच्छा देखकर सुना दीजिए।
7: अच्छा, कोई भी गाना आज
6: चाहिए। गाना सुना दीजिए मैम, रब जैसा रूप तुम्हारा देता है सहारा, ये गाना।
7: और गाना सुनाएंगे भी किसी को?
6: हाँ जी, सबसे पहले आपको, मासूम, कौशर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौशाद भाई, शाकिब भाई, फरहान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लकी भाई, रुबीना जी, दीदी जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी, गुलशन जी, रोशनी जी, सलेहा जी, अफरीन जी, अरीसा को।
7: अच्छा जी, तो गाना प्ले करें।
6: जी
7: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
6: मैम बोल रही क्या मैम?
7: हाँ
6: जी मैम, बहुत अच्छा।
7: जी जी

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमिशन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: वर्मा कुमार बोल रहे हैं कलामटिया से।
0: हाँ जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है जी, हालचाल अपना सुनाई।
0: मेरा भी ठीक है।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा था?
0: गोपालगंज के तो मौसम अभी ठीक बाबे।
1: गर्मी कैसे हो रही है? बहुत धूप निकल रहा है पंजाब में के अंदर।
0: अच्छा ना, इन्हें तनिक धूप नहीं है और थोड़ा थोड़ा गर्मी बा।
1: अच्छा जी, गाना सुनने के बाद गाना कॉल लगाओ तनिक गाना सुना दी हमने के कौन
0: बता दें
1: अपने पसंद के सुना दे कौन।
0: हम तो रोज सुनाबे करने रो वालों के अपना पसंद दिन भर
1: तो हम फरमाइशी तो हमको बना कर ही ला रहे सुना दे।
0: अच्छा तो कर दिया आज।
1: गाना अपने पसंद से सुना दे।
0: आज हमारा रवि पसंद के सुने के बाबे।
1: हमारा पसंद के सुने के बा नहीं, रवि अपने पसंद के सुना दे। भोजपुरी बजा दे कौन?
0: भोजपुरी।
1: हाँ जी
0: रवि बताई ना, आज हम कहा तो मानी रहुआ बताए तब हम सुना।
1: आज हम मतलब दो रोज सुना है।
0: हाँ
1: भोजपुरी में बजा दे कौन हो हमारा कौन सब अच्छा बताए उतना खराब भी ना।
0: अच्छा
1: खेसारी लाल के गाना बजा दे।
0: खेसारी लाल के ठीक बा।
1: और भारती के नंबर नहीं लगा लगा तो उठाओ नहीं हुआ के नहीं का प्रोग्राम में।
0: हम तो भारतीय बोला था।
1: अगर रवि नंबर तो एक नंबर बताई 6516 वाला जो कॉल के माध्यम से तो नंबर बा का नाम बा
0: वो हम ही चलावे।
1: अगर रवि चलाई ली तो कॉल के माध्यम से लगा देता तो कॉल रिसीव नहीं करो
0: तो कॉल
1: तो प्रोग्राम तो रोज रोज चलेगा प्रोग्राम न। अच्छा जी इतना तो हम रेडियो सुन नाम भी नहीं मालूम राहुल नाम बा की केकर नाम बा इसी हमारा नाम मालूम चल रहा है। नहीं जी
0: ना इसमें हम कबू कबू मतलब हम रिकॉर्ड करे नहीं लेकिन ज्यादातर उसमें हम ही रहे।
1: अच्छा जी अच्छा वहाँ के छुट्टी बा
0: ना? वहाँ के छुट्टी नहीं है वहाँ के ही जीवन।
1: ठीक बात गाना सुना दे खेसारी लाल के रेडियो सुनने वाला के सबके रघुरा खातिर तीन आदमी के।
0: ठीक बाबा तो गाना प्ले करते नहीं?
1: हाँ जी कब तक सुना शाम के बाजी की काल बाजी?
0: आज ना तो काल तो बजबे करी यही दो दिन में बाजी।
1: अच्छा खेसारी लाल के बजाये गाना।
0: ठीक बा
1: ठीक बा
0: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, de bajti hai, to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
6: जी मैं सुधीर कौर बोल रहा हूँ, कोरिंग जिला देवघर झारखंड से मैम।
5: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
5: हम भी ठीक हैं।
6: और आप रेडियो रंजीम के जितने आर्जे सब हैं कैसे हैं?
5: सब कोई अच्छा है।
6: जी जी, आज सुना मैम रक्षाबंधन का गाना।
5: गाने की बोल बता दीजिए।
6: भोजपुरी फिल्म का गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, इसके बोल हैं रखिया बंधा ले भैया सावन आई, इसके बोल हैं।
5: और गाना सुनाना भी है?
6: जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रंजन के जितने भी लिसनर हैं सबों को सुनाना चाहता हूँ दिल से।
5: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं।
6: जी मैम, क्लिक कीजिए,
5: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: थैंक यू मैम।

0: नमस्ते
1: मैम, राधे श्याम रसिया, रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं हमारा तरफ से पकिया।
0: जी जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी तो कदम बढ़ाते हैं फरमाइश की तरफ।
0: बिल्कुल,
1: वो तिरंगा फिल्म का गाना है, इसे समझो न रेशम के तार भैया, यही गाना सुनना है।
0: जी और गाना सुनाना भी है।
1: जी सबसे पहले आपको और रेडियो रिमझिम के सुपर स्टार फैन है हुसनियारा मलिक है, संतरा कुशवाहा जी हैं, और सभी गोपालगंज जिला वासियों को और सिवान जिला वासियों को और हम अपने पूरे परिवार के साथ सुनेंगे।
0: ओके जी, तो गाना सही करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार भारती जी।
3: नमस्कार,
2: समाचार बा?
3: समाचार सर ठीक है बा।
2: काहे आवाज बोछा लेता नहीं दी?
3: थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थे।
2: एगो गाना बाटे फोटो छलिया के, अलग मिठैया बा, अलग अलग बा मिठैया, अलवे बाटे रखिया बहिन हमारा, ऐसे ही कुछ गाना बाटे, घर द्वार गाना बाटे राखी।
3: छोटो
2: छोटो छलिया।
3: अच्छा, गाना सुना बा?
2: गाना तो सबसे पहले रुआ का सुनावे के बा, ओकरा बाद बानी सोनू भाई, सभी भाई बानी महबूब वाला मुस्तफा गुलाम जी, राम कुमार पांडे भैया जी हैं और अक्सरी जी हैं, अमर भाई हैं, कुशल जी, तहीर अंसारी, जितनी तमाम श्रोता बन गाना सुनिए, उन सभी को गाना दे देते। नमस्कार
3: नमस्कार, गाना सुनते रहें रेडियो रेंज 91.4।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, ग्राम सामरबो, तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। आज का दिन है, सुन रहा था कार्यक्रम। जी पहली बार लगाया हूँ फोन, आज ही सुना हूँ मैंने ये कार्यक्रम।
0: अच्छा,
1: कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
1: जी जी,
0: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
1: ब्लैकमेल का है, पल पल दिल के पास सुन रहे हैं।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: गुनगुनाना नहीं आता वैसे, मगर फिर भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। पल पल दिल के पार तुम रहते हो। जी बहन जी,
0: इतना अच्छा तो गा रहे हैं।
1: ठीक है, बस ऐसे ही आ जाता है थोड़ा सा।
0: आप अच्छा गा रहे हैं सच्ची में।
1: जी
0: अच्छा गा रहे हैं आप।
1: अच्छा अच्छा जी, थैंक यू।
0: और गाना ये सुनवाना चाहते हैं किसी को?
1: जो रिमझिम में जो सुनते हैं उन सभी के लिए रहेगा बहन जी, और आपके लिए।
0: जी जी बिल्कुल, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी जी, थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना

0: चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, सलाम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी मैम, कैसे हैं? हम सफरोज अली गोपालगंज से।
1: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: जी हम भी अच्छे हैं, लेकिन आपका आवाज कुछ चेंज लग रहा है, लगता है आपका तबीयत सही नहीं है मैम।
1: हाँ थोड़ा सा तो है,
2: लेकिन ये बता सकते हैं कि भारती मैम बोल रही है? फिर भी आप ही रिकॉर्डिंग कर रही है, मनोरमा मैम नहीं है आज?
1: है मनोरमा मैम।
2: आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गए मैम, हम लगाते लगाते कॉल
1: आधा घंटा लेट है,
2: तो आज तो नहीं चलेगा।
1: देखिए आज नहीं तो कल चल ही जाएगा, क्योंकि सारा कॉल मैं ही रिकॉर्ड करूंगी।
2: अच्छा, आज सब आप ही करेंगी? मैम उस सोमवार वाला वो मनोरमा मैम रिकॉर्ड की थी क्या आधा के बाद, क्योंकि सुन रहे थे और रात में 12 बजे चलता है रिपीट हेलो माय चॉइस का, सुन रहे थे हम, 12 बजे चल रहा था।
1: अच्छा,
2: तो आज हमें 11 सा गाना सुनवाइए।
1: बता दीजिए
2: जी, गाने का नाम है मोहब्बत से ज्यादा।
1: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
2: गाना है
1: बोल रहे हैं, गाना सुनाना है।
2: सुनाना है आपको, सभी आरजे को, जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को।
1: तो अब अभी क्या?
2: अभी तो मैम हम स्टेशन जा ही रहे थे, तब तक सोचे कि बात कर ले आपसे।
1: अच्छा, तो छपटा से निकल रहे हैं कि?
2: जी मैम हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो सोचे कि इसी टाइम में मिल रहा है तो टाइम में बात कर ले और गाना का फरमाइश कर दे।
1: चलिए, वहाँ का काम खत्म हो गया?
2: जी मैम काम तो खत्म हो गया, इसलिए सोचे निकल जाए। अपना गोपालगंज का बहुत ज्यादा याद आ रहा है, गोपालगंज जैसा तो कोई मतलब जिला ही नहीं है,
1: कहीं लगता ही नहीं। अच्छा
2: जी मैम, कहीं अच्छा नहीं लगता है गोपालगंज के अलावा, गोपालगंज तो बात ही अलग। कहीं भी रहते हैं मैम, रेडियो को सुनते रहते हैं और आप लोगों से बात करते रहते हैं। जी मैम, तो गाना फुल सुनाइएगा, बहुत अच्छा गाना है।
1: जी बहुत अच्छा गाना है, सुना दूंगी।
2: आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं।
1: अच्छा लगेगा क्यों नहीं, गाना ही अच्छा है इतना।
2: जी मैम एडवांस धन्यवाद, आज मनोरमा मैम से बात हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रहा है आजकल।
1: होगा फिर कभी।
2: जी मैम धन्यवाद, बाय बाय मैम।
1: ओके बाय बाय, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी नमस्कार, मैं प्रणाम
1: प्रणाम
0: राजू यादव, ग्राम उपनेगा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: कैसे हैं आप?
0: हम तो बहन बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वर्ण बिंदा।
1: जी ऐसे ही होना चाहिए।
0: गीत सुना दीजिए बहन।
1: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गीत।
0: अपनी पसंद का कोई भी रक्षाबंधन गीत चला दीजिए या किसी गीत में शामिल कर दीजिए। और भोजपुरी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, वो चलता है 3-4 बजे।
1: तो भोजपुरी केवल संडे को चलता है।
0: हाँ हाँ, भोजपुरी एक्सप्रेस।
1: हाँ हाँ
0: जी जी बहन प्रणाम।
1: रेडियो रेंजिंग में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहन प्रणाम, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM में।
5: जी नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते।
5: हेलो।
6: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
5: आपका छोटा भाई बोल रहा है, राकुमार, सिंगापुर से।
6: अच्छा, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, इसलिए मिस्टेक हो गया पहचान। कैसे हैं आप?
5: और बढ़िया मैम, आप कैसे हैं?
6: हम भी अच्छे हैं।
5: अच्छा, अब रक्षाबंधन आ रहा है ना?
6: नहीं रहा है।
5: तो आपसे राखी भी बनवाना है ना मैम?
6: बिल्कुल, आइए, बिल्कुल बांध देंगे।
5: अब मालूम ना कहाँ घर है आपका?
6: रेडियो स्टेशन में ही आ जाइए, यहीं पे बांध दिया जाएगा, और क्या।
5: रेडियो स्टेशन में?
6: हाँ हाँ।
5: अच्छा, आएंगे तो आएंगे वहाँ।
6: बिल्कुल आइए।
5: तो कोई आने देगा हम? तो
6: ये मैंने बता सकते, ये कृपा शंकर सर भी बताएंगे।
5: अच्छा, और सोनी सिस्टर कैसी है?
6: वो भी अच्छी
5: है। ये मुनारमा जी?
6: सब तो अच्छे हैं, ये भी अच्छी है।
5: अच्छा, आपसे बहुत काफी दिन हो गया था बात करने हुए।
6: हाँ।
5: मुनारमा जी से बात हो रहा था। हम उनसे पूछ रहे थे कि भारती मैम कहाँ चली गई, भारती मैम कहाँ चली गई। वो बोले कि उन लोगों का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है।
6: नहीं तो वो जो होता है ना, उसमें अभी मैं बिजी हूँ।
5: और बताइए क्या हाल चाल है?
6: ठीक है।
5: मौसम कैसा है गोपालगंज में?
6: गोपालगंज का मौसम अभी बहुत ही सुहाना है।
5: अच्छा, रक्षाबंधन से हम 2-4 दिन पहले आ रहे हैं।
6: आइए। बिल्कुल
5: आएंगे, राखियों से बनवा करके गिफ्ट उफ्ट दे करके फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे अपने नोएडा में।
6: मैंने बहुत खुश होंगी क्या इस बार आपके, मतलब आप जा रहे हैं उन लोगों के पास।
5: नहीं, मेरे को आए हुए आज 2 महीना दिन हो गया, पहुँचेगा रक्षाबंधन में तो जाना ही जाना है।
6: हमेशा कभी राखी में घर ही पे न रहे हैं कि कभी दूर भी रहे हैं?
5: नहीं, कहीं भी रहेंगे तो रक्षाबंधन में जाना ही जाना है, रक्षाबंधन में, छठ पूजा में।
6: अभी सब बढ़िया है।
5: मम्मी छठ करती है ना, तो छठ पूजा में जाना जरूरी रहता है।
6: कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए?
5: आज गाना सुनना है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, यही वाली सॉन्ग।
6: कितना अच्छा गाते हैं, फिर भी गाके नहीं सुनाते हैं कभी।
5: कितना अच्छा गाते हैं मैडम, मजबूरी में हम आए हैं ना दिल्ली में, यहाँ शौक से कमाते हैं।
6: अच्छा।
5: मेरे दो भाई विदेश रहते हैं, दुबई, एक का नाम है राजन, एक का नाम है निरंजन।
6: अच्छा।
5: छोटा वाला निरंजन है, निरंजन गुप्ता, और माझिल वाला है वो राजन गुप्ता है।
6: अच्छा।
5: मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा ही एक शादी हुआ है, उन लोग का अभी नहीं हुआ है, अभी उन लोग अभी कमा रहा है, खा रहा है, अभी उड़ रहा है, अभी अकेला मौज में रहा है। अभी घर का प्लानिंग है, अभी घर और बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको उन लोग को शादी करेंगे।
6: ठीक है, प्लानिंग के साथ काम अच्छा होता है।
5: और सब मजे में है ना मैम?
6: सब मजे में।
5: ये सॉन्ग आपको सबसे पहले आपको सुनवाना है। आज जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब श्रोताओं का, जितना हिमतापुर को रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको।
6: जी बिल्कुल। हाँ, गाना प्ले करते हैं।
5: ठीक है, ओके मैम।
6: ओके,
5: नमस्ते।
6: नमस्ते।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 में।
0: मधुर सर से राजू कुमार बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपको?
0: ठीक है, गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा
0: गाना सुनना है। शाम है धुआं धुआं,
1: हिंदी सॉन्ग है ना?
0: हाँ हिंदी सॉन्ग
1: जी बिल्कुल। और गाना सुनाना भी है?
0: अभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को।
1: ओके, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
0: ठीक है।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
2: मैं मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
3: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अपना सुनाइए।
3: मेरा ठीक है, तो आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
2: चले गए थे उमरा करने, हज करने जाया जाता है ना।
3: हाँ,
2: इसमें मक्का मदीना चले गए थे, एक महीना उसी में लग गया
3: ना,
2: इसलिए बात वहाँ का सिम अलग है ना। हमारे प्रोग्राम आपका सुनते थे, वहाँ भी परेशान होता था तो लगता था आपका। हमारे कॉल नहीं लग रहा था, वहाँ भी सुन रहे थे। मौसम तो ठीक है, वगैरह पानी वगैरह हल्का फुल्का हो ही जा रहा है।
3: हाँ, पानी हो ही जा रहा है और अभी भी थोड़ा मौसम, उतना धूप नहीं है
2: ना, हल्का धूप और छांव दोनों है। आपका कस्टमर इतना हो गया है रिव्यू जिम्मी के, बहुत देर तक करना पड़ता है तब जगह लगता है। बहुत देर से लगा रहे
3: पढ़े हुए हैं थोड़ा।
2: और सब बढ़िया है, हमको गाना सुनाइएगा।
3: बिल्कुल बता दो।
2: ये नन्हे से फरिश्ते तुमसे ये कैसे नाता।
3: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
2: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर फौजी से रिटायर है कन्हैया प्रसाद गुमनिया के हैं।
3: हाँ।
2: तो सिपाया डाला तो इधर आप आई नहीं होगी, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक स्कूल, बीटेक कॉलेज सब यहीं पर है, हमारे ही पास है। राजापुर मेला यहीं से जाया जाता है।
3: उधर रास्ते से कभी गए हुए हैं?
2: हाँ, राजापुर मेला आइए एक बार।
3: बिल्कुल आएंगे कभी।
2: हाँ, मेला लगता है तो आपको याद करेंगे कि मेला कल है या परसों है।
3: अच्छा जी, बिल्कुल।
2: हाँ, आइएगा हमारे यहाँ दुकान पर, रुकिएगा अपना मेडिकल हॉल। हाँ, यहीं पर रुकिएगा, नाश्ता पानी यहीं पर होगा, खाना भी आपको खिलाएंगे।
3: अच्छा।
2: आप लोगों से हम जुड़ गए, रेडियो हमको लगा हो गया है।
3: हम लोग हो गया।
2: हाँ, बराबर सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
3: चलिए बढ़िया है,
2: ठीक है, सुना दीजिएगा। हो सकता है कल कहीं जाना है।
3: अच्छा, आज नहीं तो कल आ जाएगा।
2: हाँ हाँ, ठीक है, शाम में सुनेगा। ठीक है, धन्यवाद
3: रेडियो रमजी में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
0: जी मैम नमस्ते, मैं ग्राम धनौती पोस्ट कटिया थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से हूँ।
1: जी जी
0: मैम कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
0: सब आप लोगों का कृपा है, हम लोग भी बढ़िया है, बस काम काज चल रहा है। अभी फिलहाल मैं पुणे में है हम।
1: अच्छा
0: जी, और अपना गोपालगंज का बताइए कैसा है मौसम वहाँ का?
1: गोपालगंज बारिश, मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है, बारिश जैसा ही मौसम हो रहा है अभी।
0: अच्छा अच्छा, यहाँ भी तो बादल छाया हुआ है, कभी कभी रुक रुक के बारिश भी हो रहा है। यहाँ पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा मौसम का हो रहता है, बारिश आता जाता रहता है यहाँ का।
1: चलिए उतना से गर्मी नहीं होता होगा ज्यादा।
0: हाँ मैम, अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म नहीं है, मौसम तो एकदम ठंडा है, सुहाना ही मौसम है लगभग मानिए तो।
1: वैसे आप क्या काम करते हैं?
0: यहाँ पे मैं फैब्रिकेशन का काम। और एक गाना सुनना था मैम,
1: बता दीजिए।
0: मुझे ला कर समझाया दिल ने मेरे, मगर मैंने दिल की न मानी, दीवानी में दीवानी सजन की दीवानी, गाना की बोल ही है। और मेरा दोस्त है प्रमोद और अमित ओम प्रकाश, इन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और खास करके रेडियो रिमझिम परिवार को और जितना भी श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी।
1: बिल्कुल,
0: मैम लगाते हैं कॉल लगता नहीं है, थोड़ा अफसोस होता है कि, लेकिन भाई अभी भी समझदारी होता है कि भाई कब अगर मेरा चांस मिल जाएगा तो देखा जाएगा, तो लगता है तो इतनी महसूस होता है कि चलिए मेहनत सफल हो गई तो कुछ अलग ही, मतलब
1: कुछ अलग ही
0: अपना। हाँ हाँ, आप लोग से बात होता है तो थोड़ा मन का सुकून मिलता है कि चलो रेडियो रंजन के माध्यम से दूर दूर तक कहाँ कहाँ जितना भी श्रोता सब सुनते हैं, एकजुट होते हैं। जब हेलो माई चॉइस प्रोग्राम जब चालू होता है तो उसका उस टाइम का पल ही कुछ अलग ही होता है कि हाँ भाई एक परिवार हो जाता है ना, सब जुड़ता है एक साथ, तो अच्छा लगता है,
1: वहाँ पे जुटते हैं सब, कोई आपस में बातें करते हैं।
0: जी जी जी, तो मैं तो बहुत पुराना हूँ रेडियो रंजन का, बहुत कॉल लगाता हूँ लेकिन कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो भी मैं जानता हूँ कि अफसोस करने की क्या बात है भाई, सभी दर्दों को सभी लोगों का मन का जितना मुझे खुशी होती होगी नहीं और लोगों को भी खुशी होता होगा ना कि भाई हम भी बात करेंगे, हम भी अपना फरमाइश चॉइस में अपना गाना सुनेंगे और सबसे हाल चाल जब मिलता है तो हम लोग पूना में भी रहते हैं तो अच्छा लगता है कि अपने गाँव का अपने जवार का जो भी हम लोग का कटिया में चाहे कहीं भी कुछ भी होता है तो उसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है, चाहे अपने जिला में कोई भी मतलब कार्य होने वाला होता है नया, चाहे कुछ नया नियम आने वाला होता है, तो रेडियो रिमझिम के माध्यम से सब मिलता है तो अच्छा लगता है। तो हम लोग पहले ही एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई अपने जिला में काम होने वाला है, ऐसा हो रहा है, यहाँ ये चीज होने वाला है, तो अच्छा लगता है कि पहले अपना यहाँ नहीं था लेकिन वो आप लोगों की कृपा थी कि हम लोग के लिए, हम लोग खातिर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है। जितना भी अगर तारीफ करेंगे हमारे लिए तो कम है।
1: आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका।
0: जी जी जी मैम, आप ठीक है ना?
1: हाँ हाँ, हम सब ठीक है।
0: खाना वाना खाई?
1: हाँ, खाना खा के आते हैं।
0: अच्छा, हम लोग भी ड्यूटी है लेकिन ड्यूटी के दौरान मेरे को याद आया कि भाई आज कॉल लगाते हैं तो फिर कॉल किया। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, लगभग एक घंटा काम छोड़ दिए थे, जब काम होता है जब ये दिन आता है तो सोचते हैं पहले कॉल लगाएंगे उसके बाद काम देखा जाएगा। बात आप लोगों से होता है तो लगता है कि हाँ मतलब कुछ सुकून दिल का मिल गया कि हाँ मेहनत मेरा जो जारी था वो सफल लग गया तो अच्छा होता है।
1: चलिए अच्छा लगा
0: आपसे भी बात करके मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पहले भी जितना भी पहले आपसे पहले जो भी आपका मनोरमा नाम है ना?
1: नहीं।
0: अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है मैम?
1: मेरा नाम भारती।
0: अच्छा भारती, ठीक है मैम।
1: गाना प्ले करें?
0: हाँ मैम गाना प्ले करिए। नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
5: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029 94 911। जी हाँ, 8029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी,
6: नमस्ते।
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: बड़ा लेट सर सोनी हम नंबर
7: ना ना सर फोन कर ले रही है तने होने ही देरी हो गई है। बोली
6: रामाज प्रसाद बोल रहे हैं सारे राधे मार्ग से।
7: हाँ हाँ,
6: गाना सुने बा
7: बता दें।
6: जा रे सुगना जा रे कह दो सजनवा से।
7: गाना सुना हूँ के बा।
6: ठाकुर बाबे हमारे सार रिकॉर्ड करे की बहुत फोन लगा होता रहे। इंग्रा सुना बा, इलेक्शन भाई बा रहे। अच्छा। जितना रेडियो सुना सब कोई।
7: अच्छा जी, चल ठीक बा रहे। सब ठीक बा नो?
6: हाँ सब ठीक बा, हवा भी बहुत रहा, ठंडा भी दिन बा।
7: हाँ हाँ, चले फिर ठीक बा। गाना प्ले करते हैं।
6: नमस्ते
7: नमस्ते, सुनते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 91.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मनोरमा मैम बोल रही है ना?
1: नहीं,
0: भारती मैम बोल रही है।
1: हाँ
0: तो मैम कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी मैम, हम भी अच्छे हैं।
1: वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
0: जी मैं पप्पू कुमार साहब पढ़ रहा हूँ ना, बड़हरिया से।
1: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपका?
0: जी मैम बढ़िया है, अपना सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं।
0: और सब भारतीय लोग अच्छे हैं?
1: हाँ सब कोई ठीक है।
0: तो मैम गाना सुना दीजिए।
1: बता दीजिए।
0: इरंगा फिल्म में जो राखी बंधन का गाना है वही गाना सुना दीजिए।
1: और गाना सुनाना भी चाहेंगे?
0: और मैम गाना जितना भी मेरे भाई बहन है सभी सुनेंगे, सभी श्रोता, आप भी सुनिएगा, सभी आधे लोग भी सुनेंगे।
1: बिल्कुल
0: जी मैम।
1: तो गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: सीधा सीधी बताएं कि स्टाइल में बताएं।
3: सीधा सीधी का बताबू, स्टाइल में बताओ।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। और

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आज विक्रम संवत 2083 भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दिनांक 30 अगस्त 2026 दिन रविवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। सूर्योदय प्रातः 5:43 पर तथा सूर्यास्त 6:17 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। तो श्रोताओं स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं, तो आइए आरंभ करते हैं आज के प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीत के साथ।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।